सुप्रभात, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 540.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज है मंगलवार, शक संवत 1948, आषाढ़ महीने की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून 2026। 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: ये आकाशवाणी रांची है, सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए

0: कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले हजार वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी रांची है। खेती किसानी कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय है मशरूम की खेती। जानकारी दे रही हैं अनीता तिर्की।
2: मशरूम का प्रयोग प्राचीन काल से ही खाद्य के रूप में अथवा औषधि के रूप में किया जा रहा है। यह एक विशेष स्वादयुक्त सुगंधित शाकाहारी पौष्टिक खाद्य है। पौष्टिकता के आधार पर यह मांस और सब्जी के बीच आता है। इसमें 70 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा ताजे मशरूम से लगभग 3% प्रोटीन और विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन सी इसमें मिलते हैं, जो कि हृदय रोग, रक्तचाप, खून की कमी, मधुमेह, आंख की बीमारी के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। मशरूम की खेती के लिए कृषि वानिकी और पशु व्यवसाय संबंधी अवशेष पर इसकी खेती आप कर सकते हैं। जमीन की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। इसके उत्पादन के बाद बचे अवशेषों को खाद के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। झारखंड में मशरूम की व्यावसायिक खेती सालों भर की जा सकती है। जिससे यह बेरोजगार नवयुवक युवतियों और कुटीर उद्योगों में लगे लोगों के लिए आय बढ़ाने का एक सार्थक माध्यम हो सकता है। झारखंड में मुख्यतः मशरूम की खेती जो करते हैं तीन प्रजातियों की करते हैं, जिसकी खेती भिन्न भिन्न तापमान में की जाती है। एक है समशीतोष्ण मशरूम, जिसे ढिंगरी के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है ग्रीष्मकालीन मशरूम, धान पुआल और सफेद बटन मशरूम। समशीतोष्ण मशरूम की खेती 20 से 30 डिग्री जो तापमान होता है उसमें करते हैं। इसमें सेलुलोज युक्त पदार्थ जैसे धान, गेहूं, बाजरा, मक्का आदि किसी एक के भूसा और सेम वर्गीय फसलों की सूखी डंठल, गन्ना का खोई इत्यादि पर इसे उगा सकते हैं। मध्यम नया सूखा और बरसात में भींगा ना हो, इस प्रकार उपलब्ध के अनुसार कोई भी माध्यम आप चुन ले, धान और गेहूं का पुआल सबसे अच्छा माध्यम इसको उगाने के लिए पाया गया है। इस मशरूम को उगाने के लिए धान का पुआल 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास के टुकड़ों में काट लिया जाता है। उसे एक ड्रम अथवा टब में 100 लीटर साफ पानी में 100 मिलीलीटर फॉर्मलिन अथवा 10 ग्राम वेविस्टिन दवा मिला देते हैं। इस घोल में 10 किलो पुआल को कटे टुकड़ों जो हैं उसको 12 घंटे तक डुबाकर रख दिया जाता है। 12 घंटे के बाद पुआल को पानी से निकालकर पक्के और साफ सुथरे फर्श और पॉलीथीन की चादर पर पतली तह में फैला देते हैं। फैलाने पर पानी की अतिरिक्त जो मात्रा है वो निकल जाती है। पुआल में पर्याप्त नमी बनी रहे इसकी जांच के लिए पुआल को मिट्टी में मुट्ठी में भरकर दबाया जाता है। दबाने से यदि पानी नहीं निकले तो समझना चाहिए कि पुआल प्लास्टिक के थैलियों में भरने के लिए तैयार है। 10 किलो पुआल की कुट्टी को भरने के लिए 6 से 7 और 40x42 सेंटीमीटर की थैली होनी चाहिए। बिजाई के लिए फर्श में फैले पुआल की कुट्टी में वजन के अनुसार 2% स्पॉन मिला दें। इस प्रकार स्पॉन मिले कुट्टी को 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पॉलीथीन की थैलियों में भरकर रख देना है। थैलियों के खुले मुख को धागे अथवा रबर से बांध देना है। हवा के आवागमन के लिए पॉलीथीन की जो थैलियां है उसमें 1 सेंटीमीटर व्यास और 10 से 15 छिद्र बना दें। इस प्रकार ढींगरी की खेती में 300 ग्राम गेहूं के बीज पर बने स्पॉन 2 थैलियों के लिए पर्याप्त होती है। बिजाई का एक और प्रचलित विधि में उपचारित किट्टी को जो कुट्टी है उसको पॉलीथीन की थैलियों में 10 सेंटीमीटर तक भर दिया जाता है और तह पर 1 चम्मच चने के सत्तू के साथ बीज बिखेर कर पुनः 5 सेंटीमीटर की दूसरी तह लगाई जाती है। पुनः इस तह पर पहले की तरह स्पॉन बिखेरा जाता है। इस प्रकार कुट्टी 6 से 7 तह में लगाई जाती है। अंतिम तह में स्पॉन नहीं बिखेरा जाता है। थैली के मुख को रबर से बंद कर दिया जाता है। बंद थैलियों में मशरूम के सफेद कवक जाल कुट्टी को पिंड के रूप में बांध देते हैं। लगभग 15 दिनों के बाद थैलियों के जो मुख है उसको खोल दिया जाता है और पॉलीथीन की थैलियों को किनारे से काटकर हटा दिया जाता है। इस कुट्टी में 65 से 70% तक नमी बनाए रखने के लिए स्प्रे मशीन से पानी का छिड़काव किया जाता है। बुआई के 20 से 25 दिन के बाद मशरूम के छत्र निकलने लगते हैं। छत्रकों के बटम नुमा आकार होने पर 3 से 4 दिनों के लिए पानी का छिड़काव बंद कर देना पड़ता है। यह बटन 4 से 5 दिन में पूरी तरह से विकसित हो जाता है। जब मशरूम का ऊपरी भाग मुड़ने और फटने लगे तब उसकी तुड़ाई शुरू कर देनी चाहिए। पहली तुड़ाई के बाद पानी का छिड़काव पुनः शुरू कर देना चाहिए। लगभग 7 दिनों के बाद उन्हीं पिंडों में से दूसरी फसल आ जाएगी। इस प्रकार 1.5 से 2 महीने के अंदर 3 से 4 फसल मिल जाता है।
1: मशरूम की खेती, खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप इसी विषय पर चर्चा सुन रहे थे। चर्चा कर रही थी अनीता तिर्की। आकाशवाणी के रांची केंद्र से अब प्रस्तुत है आज का चिंतन। संकलन और वाचन स्वर है दिनेश कुमार लाल का।

0: विश्व महामंच के जीवन महोत्सव में हम सभी जीव पात्रों की भूमिका में हैं। हमारे अभिनय की सफलता हमारी भूमिका में निहित है। हमारी भूमिका हमारी मानसिकता से संबद्ध है। मानसिकता जितनी उन्नत होगी अभिनय उतना ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए जीवन को महोत्सव बनाने के लिए विचारों को सदैव उच्च और सुदृढ़ रखना होता है। मन को न केवल नियंत्रित बल्कि ऊर्ध्वगामी संचेतना से भरपूर रखना पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रमवश हम स्वयं को ही सूत्रधार भी मान बैठते हैं, जबकि सूत्रधार परमात्मा है। उनके संकेतों पर चलने के लिए ही हम बाध्य हैं। वो बाध्यता कोई परतंत्रता नहीं बल्कि अनुशासन है। दैवीय अनुशासन विश्व की नियति है। इसलिए परमात्मा की छत्रछाया तो एक प्रकार से हमारा संबल है। श्रीमद् भागवत कथा में जीव का प्रतिनिधित्व परीक्षित जी ने किया है। उन्होंने सुखदेव जी जैसे परम संत के माध्यम से ज्ञान और भक्ति को आत्मसात कर जीवन को सार्थक किया है। जीवन मुक्त परीक्षित जी परम धाम को प्राप्त हुए हैं, यानी मुक्त हो गए। मनुष्यत्व ही मूल है। यही कारण है कि शास्त्रों ने मनोर्भव यानी मनुष्य बनो का उपदेश दिया है। मनुष्य बनने के लिए हमें सच्चाई से जुड़ना होगा और अपनी शक्ति को पहचानना होगा। नर ही नारायण है ये अनुभूति करनी होगी। अपना मनोबल बढ़ाने के लिए संयम धारण करना होगा। जप तप ध्यान भक्ति प्रायः एक रूप हैं। इनके अध्ययन से अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। जीवन की वास्तविकता का बोध ही हमारा लक्ष्य है। विवेक के माध्यम से दिव्य शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। चारों पुरुषार्थों का जीवन में सुंदर सामंजस्य हो। नैतिक मूल्यों की धारणा ही धर्म है। इस नीति मार्ग को अपनाने की बात ही शास्त्रों में कही गई है। नैतिक व्यक्ति ही धार्मिक होता है। दया करुणा सहिष्णुता के भाव उसके जीवन को अधिक उपयोगी बना देते हैं। वो लोकहित को ध्यान में रखकर ही कार्य करता है। अर्थोपार्जन दूसरा पुरुषार्थ है। ये अर्थोपार्जन भी न्याय संगत होना चाहिए। जो लोग अनीति से धन कमाते हैं अंततः उनका विनाश होता है। दाम्पत्य काम पुरुषार्थ का रूप है। संयमित प्रेम में जीवन सुख और शांति का पथ प्रशस्त करता है। फलतः व्यक्ति परम पुरुषार्थ यानी मुक्ति मार्ग का अनुयायी बन जाता है।
1: ये था आज का चिंतन। संकलन और वाचन स्वर था दिनेश कुमार लाल का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है अनूप जलोटा और साथियों की गाई इस देशभक्ति रचना के साथ।

अनूप जलोटा और साथियों के स्वर में आपने देशभक्ति रचना सुनी और अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की गाई भक्ति रचनाएं। रचनाएं पंडित नरेंद्र शर्मा की हैं और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

भरत को अयोध्या के राजपथ के साथ श्री राम को 14 वर्षों का वनवास देने की कैकेयी की वरदान याचना से अयोध्या वासी

स्तब्ध हैं। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति जग विदित है। चंद्रमा की शीतल किरणों से आग की चिंगारियां भले ही बरसने लगें, किंतु भरत स्वप्न में भी श्री राम का विरोध नहीं कर सकते। राज परिवार का हितैषी नारी समाज कैकेयी को तरह तरह से समझाने की चेष्टा कर रहा है। अनुनय विनय के साथ साथ कुछ लोग रानी कैकेयी की कठोरता की भर्त्सना कर रहे हैं, कुछ व्यक्ति कटुवचन भी बोल रहे हैं। सबके मन में आशंका है कि क्या राम की अनुपस्थिति में भरत अवध के राज्य का सुख भोगना स्वीकार करेंगे? क्या राजा दशरथ पुत्र का वियोग सहन कर सकेंगे? क्या राम, लक्ष्मण, सीता और स्वयं दशरथ जी के बिना सब कुछ उजड़ नहीं जाएगा?

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आइए अब आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:05 पर स्वास्थ्य चर्चा में आप सुनेंगे डॉक्टर अविनाश

राजकुमार झा से ली गई भेंट वार्ता, विषय होगा खट्टी डकार की बीमारी का संकेत। 7:45 पर खुला आकाश में श्री अमित कुमार ठाकुर से संजीव कुमार लाल की बातचीत प्रसारित की जाएगी। भेंट वार्ता का विषय होगा योग और मोटापा। 8:45 पर उरांव लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे अपने लोक रंग कार्यक्रम में। कलाकार होंगे रायसन उरांव और साथी। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा पंडित मोर मुकुट केडिया से सितार पर राग अहीर भैरव।

1:20 पर अनुरंजनी में आप सुनेंगे अनीता सेन को, इनसे आप सुनेंगे बंदिश और टप्पा।

0: शाम 7:15 पर आदिवासी अखड़ा में आज आप सुनेंगे खड़िया भाषा में कार्यक्रम। ये थी कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं आपके लिए। आकाशवाणी रांची आप सुन रहे हैं। अब आप सुनेंगे क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विक शक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरक शक्तिः राष्ट्र प्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विगत दशके देशस्य उपलब्धयः विश्वासे स्थिरतायां बृहत्तर वैश्विक कल्याणाय प्रतिबद्धतायां च निहिताः सन्ति।
2: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
1: सम्प्रति G7 शिखर सम्मेलने स्वस्य सहभागितायाः उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् राष्ट्रियहितं सर्वोपरि स्थापयितुं भारतस्य अविचल प्रतिबद्धतां वैश्विकनेतारः स्वीकृतवन्तः। सर्वकारस्य 12 वर्षाणां कार्यकालस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वच्छभारत, मेक इन इण्डिया, खादिप्रचारः, स्थानीय उत्पादानां समर्थनम् इत्यादयः उपक्रमाः सफलाः अभवन् येन नागरिकाः राष्ट्रनिर्माणस्य भावम् अङ्गीकृतवन्तः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् सद्यः एव केषुचित् वर्षेषु प्रायः 25 कोटिशः जनाः निर्धनवर्गात् बहिः समागताः येन विशालः नव मध्यमवर्गः

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल

0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। स्वास्थ्य चर्चा में आज की चर्चा का विषय है खट्टी डकार भी बीमारी का संकेत। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अविनाश कुमार झा। इनसे बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने।
2: मित्रों नमस्कार। मित्रों जब हम भोजन करते हैं तो डकार भी लेते हैं और जब खट्टी डकार आती है तो इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कुछ बीमारियों का संकेत दे रहा हो। जब हम खाना खाते हैं तो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि खाना हमें पेट तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो क्या कारण है? और जब डकारें आ रही हैं, जो आपका भोजन है ऐसा लगता है कि वो मुँह तक आ रहा है, तो इसका कारण क्या है? उपचार कैसे करें? सावधानियां आपने जीवन में किन किन बातों का रखें और इसका लक्षण क्या है कि कौन सी बीमारियों को ये बताने जा रहा है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं लैप्रोस्कोपी एवं गैस्ट्रोसर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार झा। डॉक्टर साहब स्वागत है।
3: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब। खाना खाने के बाद खट्टी ढकारें आना किस बात का संकेत देता है?
3: आज के दिन में अक्सर हम मरीज हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें अनपथ सा लगता है, खाना जैसे लगता है कि वापस मुंह में आ रहा है, खट्टी डकार आती है, सीने में जलन होता है, सीने में दर्द होता है। इसे साइंटिफिक टर्म में GERD GERD या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। नॉर्मल जो हम लोग खाना खाते हैं ये हमारे मुँह के बाद एक नली के रास्ते हमारे स्टमक में जाती है। इस नली को हम इसोफेगस कहते हैं और स्टमक में पहुंचने के बाद वो खाने छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं उसके बाद वो खाना छोटी नली में जाता है, तत्पश्चात

0: पश्चात वो हमारी बनील आंत में जाता है और आंत के रास्ते बाद वो मल के रास्ते बाहर आता है। जब खाना हमारे स्टमक में पहुंचने के बाद आगे न जाकर वापस हमारे खाने की नली यानी कि ऊपर वाले नली में आए, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, ऐसे कंडीशन को गर्ड कहा जाता है। इसके कई सारे कारण होते हैं। जब ये खाना जो हमारे इसोफेगस से स्टमक में पहुंचता है तो दोनों जहां मिलते हैं वहां पर एक वाल्व होता है जिसे हम लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं। कई मर्तबा ऐसा होता है कि वहां का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि स्टमक का प्रेशर बढ़ा रहता है और खाना ऊपर आ जाता है। जैसे कि आज की ज़िंदगी में लोगों को स्मोकिंग की आदत, शराब पीने की आदत, कॉफ़ी चाय पीने की आदत है, ये सब चीज़ें हमारे स्फिंक्टर वाल्व को कमज़ोर करती हैं, जिसके कारण होता है कि कभी भी हमारा प्रेशर अगर पेट के अंदर बढ़ता है तो वो खाना आगे न जाकर वापस इसोफेगस में आ जाता है, तब गर्ड की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा कारण होता है कि स्टमक जो है वो वहाँ एसिड बनता है, मेनली वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये हमारे फूड के जो भी हम खान भोजन खाते हैं उसको पचाने में काफ़ी सहायक होता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि ये एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि शराब पीने से, सिगरेट का सेवन करने से। कई बार लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, कहीं शरीर में दर्द हुआ, बुखार हुआ, तुरंत वो दवा खाते हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें एसिड का ज़्यादा बनना होता है। जैसे कि एक रेयर बीमारी है जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम या गैस्ट्रिनोमा, ऐसी बीमारियां हैं जिनमें एसिड का प्रोडक्शन या बनना ज़्यादा होता है। तीसरे चीज़ होती है कि जो पेट का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जैसे कि ओबेसिटी मोटापे के कारण, प्रेगनेंसी के कारण, या हम कहें कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, कहीं भी हम पार्टी में गए या कहीं भी किसी फंक्शन में गए तो खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, वैसे कंडीशन में पेट का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और वो खाना वापस इसोफेगस में आने लगता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि खाना आगे नहीं जाता है, पेट में वो मूवमेंट नहीं हो पाता है। जैसे कि आम जिंदगी में कहें हम डायबिटीज़ पेशेंट में अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो स्टमक का मूवमेंट नहीं होता है, उसे हम गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं, जिसमें कि खाना आगे ना जाता है, खाना स्टमक में ही जमा रहता है। ऐसे करने से स्टमक का प्रेशर बढ़ता है और वो खाना वापस हमारे इसोफेगस में आ जाता है। एक कंडीशन होता है हर्निया, हायटस हर्निया कहते हैं, जो खाने की नली होती है वो हमारे सीने के बीच से होते हुए एक परत होती है जिसे कहते हैं डायफ्राम, जो हमारे सीने को और पेट को अलग करती है। तो इसोफेगस उस वहाँ से एक छोटी से छिद्र से स्टमक में आता है। कई कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें वो छिद्र काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और ऐसे में हमारा स्टमक का हिस्सा खींच के ऊपर चला जाता है और उसे हम हायटस हर्निया कहते हैं। तो स्टमक का जो भी कंटेंट होता है, पेट का जो भी कंटेंट होता है, फूड पार्टिकल्स, वो इसोफेगस में आ जाता है और हार्टबर्न की शिकायत होती है, खाना बार बार मुंह में आता है।
1: तो ये जब बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती है तो फिर क्या क्या लक्षण दिखने लग जाते हैं, हम सावधान हो जाएं और उपचार शुरू कर दें?
0: सही कहा आपने, मोस्ट कॉमन जो लक्षण होता है वो मरीज ये शिकायत लेके आते हैं कि सर हमारे सीने में काफ़ी जलन, हमेशा जलन जैसा रहता है, कहेंगे कि खाना खा लिया, जैसे लेटने जाते हैं लगता है खाना वापस मुंह में आ गया। ये स्पेशली खाना खाने के बाद या लेटते वक्त उत्पन्न होता है। दूसरा होता है कि सीने में दर्द होना, कहेंगे वो बताएंगे कि सीने के बीच में दर्द होता है। कई बार ये लक्षण हार्ट की जो बीमारी होती है, हृदयाघात का भी होता है। कई बार होता है कि बोलेंगे कि हम जो खाना खाते हैं, खाना निगलने में उन्हें काफ़ी दर्द होता है या तकलीफ़ होती है। कई बार उन्हें बिना दर्द के ही खाना जाता है लेकिन तकलीफ़ होती है और कई बार उसके साथ साथ दर्द भी होता है, इसे हम डिसफेजिया या ऑर्डिनोफेजिया कहते हैं। अगर लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं तो पेट का, जैसा मैंने कहा कि वो एसिड बनता है स्टमक में, वो बार बार अगर इसोफेगस में आए तो वो अल्सर बना देता है। अल्सर के कारण खून का प्रसाव होता है और मरीज कई दिनों बाद ये कह के आते हैं कि सर हमें बहुत हमेशा कमजोरी लगती है, हमारे शरीर में जान नहीं लगता, हम ज़्यादा चल भी नहीं सकते, हमेशा तकलीफ रहती। और आगे चल के 10 साल 15 साल बाद अगर लोग अब इसका प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, एहतियात नहीं बरतते हैं और इसको नज़रअंदाज करते हैं तो ये कैंसर का भी रूप ले सकता है।
1: जी, कैसे इसका उपचार किया जाता है, कौन कौन से जांचें की जाती है और मरीज कितना प्रतिशत ठीक हो जाता है? क्या मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है या उसे बहुत सारी सावधानियां अपने जीवन में रखनी?
0: नहीं, आपने बिल्कुल सही जवाब कहा। जांच मुख्यतः जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है एंडोस्कोपी, यह रूटीन प्रोसेस है। इसमें हम एक दूरबीन का रास्ते पाचन क्रिया को हम देखते हैं, पाचन के लिए ये जो इसोफेगस होता है उसे देखा जाता है। यह डे केयर प्रोसेस है, आप जाके दो घंटे में सारा जांच करा के आ सकते हैं। बार बार अगर मरीज ये कहते हैं कि हमारे सीने में जलन हो रहा है, तो ये देखा जाता है कि ये स्टमक का जो एसिड है वो कितनी मर्तबा आता है आपके इसोफेगस में। इसके लिए हम 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग करते हैं। कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या कितनी देर तक वो एक्सपोज होता है, इसको हम साइंटिफिकली मेजर करते हैं पीएच से। हमारे स्टमक के अंदर जो पीएच है वो होता है 3 to 5, 3 से 5 के बीच में होता है, और हमारे इसोफेगस का जो पीएच होता है वो इनसे ज़्यादा होता है। जब बार बार गैस्ट्रिक जूस हमारे इसोफेगस में आता है तो इसको हम पीएच मॉनिटरिंग से देखते हैं कि इसमें पीएच कितना चेंज हो रहा है, और ये पीएच आमतौर 2 से 4 के बीच में पाया जाता है इस बीमारी में। तो इससे हम 100% श्योर हो जाते हैं कि मरीज को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है। तब हम उन्हें बताते हैं कि आपका इलाज कैसे कैसे हो सकता है और आपके लिए बेहतर इलाज क्या है। अगर मरीज को लक्षण बहुत कम है, प्रायः ये जो रिफ्लक्स डिजीज है मरीज की डाइट लाइफ स्टाइल से पर निर्भर करता है। आज के समय में लोग अक्सर लोग स्मोकिंग, शराब का सेवन करना, कहीं पर भी खाने पे कंट्रोल नहीं होना, मसाला ज़्यादा यूज करना, ये सब करते हैं। तो हम मरीज को पहले समझाते हैं कि आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की आवश्यकता है, आपको इन चीज़ों को, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो सिंपल एंटासिड्स या दवा होती है गैस की वो देते हैं, और उनको 15 दिन पे हम बुलाते हैं देखने के लिए कि ये सब चेंज करने के बाद उनमें कितना बदलाव आया है। जो मरीज शुरुआती लक्षण में ही डॉक्टर से संपर्क करते हैं वो प्रायः ठीक हो जाते हैं। फिर इस बात का देखना पड़ता है कि मरीज जैसे कि मोटापे से ग्रसित है या और कोई बीमारी उनको है, डायबिटीज़ है, कब्जियत की शिकायत है, तो हम उनको इनके साथ साथ जो एसोसिएटेड बीमारी हो उसको भी ठीक करने की का परामर्श देते हैं कि सिर्फ दवा खाने से ये नहीं होगा, जिस जो रूट कॉज है इसका, जो बीमारी का कारण है, उसे भी ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ये होती है। सर्जरी की ज़रूरत बहुत कम मरीजों में होती है, जैसा कि मैंने कहा कि हायटल हर्निया किसी को अगर होता है, ऐसे मरीजों को ही हम सर्जरी का सुझाव देते हैं, नहीं तो मरीज जो है सो दवा से और अपने लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक हो सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को, जो बदलती जीवन शैली है, जो बिगड़ता खान पान है और खाते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे खान पान में किन किन चीज़ों का समावेश करें और संतुलित भोजन का सेवन करें ताकि आप स्वस्थ रहें और इस तरह की बीमारियां हैं आप तक नहीं पहुंचे।
0: बीमारी को समझने के लिए या तो आपका जागरूक होना ज़रूरी है या बीमारी को ठीक होने के लिए भी आपको जागरूक होना ज़रूरी है। किसी भी बीमारी का इलाज उसके रूट कॉज में ही है। अगर हम उस कारण को दूर करते हैं तो हम बीमारी को भी अपने से दूर कर रहे हैं। आज के समय में आपका लाइफस्टाइल, खान पान का शैली, इसे अगर आप सुधारते हैं, सिगरेट पीना, शराब का सेवन करना, ज़्यादा पेन किलर खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, इन चीज़ों पर आप कंट्रोल करते हैं, तेल मसाला का सेवन कम करना और एक बार में खूब नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाएं, 2-3 घंटे के अंतराल पर खाएं, जिस हिसाब से आप खाते हैं उस हिसाब से आपका फिजिकल एक्टिविटी भी हो, आप व्यायाम करें, इन चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो आप बेहतर हो सकते हैं।
1: तो मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, संतुलित आहार जब आप खाएंगे तो आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, और आप जब खुश रहेंगे तो पूरा परिवार आपका खुशहाल रहेगा और एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अविनाश कुमार झा, लेप्रोस्कोपी एवं गैस्ट्रो सर्जन, आज आप इस कार्यक्रम में। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, कल एक फिर नई जानकारी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आज का दिन आपका शुभ एवं मंगलमय हो।
2: खट्टी डकार भी बीमारी का संकेत, इस विषय पर अभी आप डॉक्टर अविनाश कुमार झा से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंट करता थे संजीव कुमार लाल। अब आज का स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी के रांची केंद्र से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गानों का प्रोग्राम सुबह सुरीली।
3: हेरोइन कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की

0: जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: सुबह सुरीली कार्यक्रम का पहला गाना है एक बार कहो फिल्म से। येसुदास ने इस गाने को गाया है, माया गोविंद के बोल हैं, संगीत बप्पी लहरी का है।

येसुदास के गाए गाने के बाद अब आपको सुनवा रहे हैं आदमी फिल्म का नगमा, आवाज है मोहम्मद रफी की, शकील बदायूनी के बोल हैं, संगीत नौशाद का है।

मोहम्मद रफ़ी को आपने सुना। अब आपको सुनवा रहे हैं फंटुश फिल्म का नगमा, साहिर का लिखा हुआ, संगीत एस टी बर्मन का है, आवाज़ है किशोर कुमार की।

इस गाने के साथ ही आज का सुबह सुरीली कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और एफएम 110.5 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए खुला आकाश कार्यक्रम। आज का विषय है योग और मोटापा। श्री अमित कुमार ठाकुर से बातचीत की है संजीव कुमार लाल ने।

0: योग जीवन का आधार है। यह हमें स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मकता बनाए रखता है। यह एक व्यायाम नहीं, बल्कि यह एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने की एक कला है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में योग एक ऐसा विकल्प है, एक ऐसा साधन है जो हमें तनाव से मुक्त कर सुखद और स्वस्थ जीवन की ओर ले जाता है। आज देखा जाए तो हमने अपने खान पान और अपनी लाइफ स्टाइल को बिगाड़ लिया है। इस बदलती जीवन शैली के कारण एक बड़ा वर्ग मोटापा या ओबेसिटी का शिकार हो रहा है। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग सभी का वजन बढ़ रहा है और इसके कारण बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर के अंदर अपना जगह बना रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग के महत्व पर जोर दिया है और योग के द्वारा मोटापा या ओबेसिटी को कम करने का प्रभावी उपाय सुझाया है। योग के सहारे मोटापे से छुटकारा कैसे पाया जाए, आइए इसी विषय पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं योग विशेषज्ञ अमित कुमार ठाकुर जी। अमित जी, स्वागत है। अमित जी, योग के सहारे हम अपने जीवन में कैसे खुशहाली लाएं और जो आज मोटापा से हम परेशान हो रहे हैं, इस मोटापा से कैसे हम दूरियां बनाएं?
1: कुछ आसनों का अभ्यास, कुछ प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास एवं षटकर्म का अभ्यास करने से मोटापा से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम आसन में अगर जाते हैं, आप जब योग करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान भी रखेंगे। जैसे वो जगह, जिस जगह पर आप योग करेंगे वो जगह खुली होनी चाहिए। उस जगह के चारों ओर से कोई तेज आवाज़, किसी तरह की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। तारासन का अभ्यास सबसे पहला अभ्यास। इस अभ्यास को करने के लिए योग मैट के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़े हो जाएंगे, दोनों पांव आपस में सटी हुई, दोनों हथेली को आपस में इंटरलॉक करेंगे, दोनों हथेली को सर के ऊपर रखेंगे, नज़र सीधी, शरीर स्थिर। अब गहरी सांस भरते हुए धीरे से हथेली को ऊपर की ओर खींचेंगे तो आप देखेंगे शरीर का पूरा भार आपके पांव के तलवे पर आ रहा है। श्वास लेते हुए ऐसा अभ्यास करेंगे, श्वास लेते हुए हथेली को ऊपर की ओर खींचेंगे और आप महसूस भी करेंगे पांव की उंगली, तलवा, टखना, घुटना, पेट, कमर, छाती, गर्दन एवं सर का ऊपरी हिस्सा

तक अच्छा व मीठा खिंचाव हो रहा है। ऐसा अनुभव करते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे से सर के ऊपर दोनों हथेली रखेंगे। ऐसा आपको 5 राउंड करना है। सुबह सुबह जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, सुसुम पानी पीना है आपको। सर्वप्रथम गुनगुना पानी अपनी क्षमता अनुसार, और तारासन का अभ्यास 5 से 10 राउंड। फिर अगला अभ्यास तिर्यक तारासन, जो इस कड़ी से जुड़ा हुआ अभ्यास है। इस अभ्यास को करने के लिए योग मैट के फ्रंट के हिस्से में ही खड़े रहेंगे। दोनों पांव के बीच कंधा के बराबर गैप होगा। आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि गैपिंग कितना होगा। जो आपके कंधे की चौड़ाई है, दोनों कंधों के चौड़ाई के बराबर दोनों पांव को फैला लेना है। दोनों हथेली सर के ऊपर रखेंगे। अब गहरी सांस लेते हुए दोनों हथेली को ऊपर की ओर खींचना है। इसमें ध्यान रहे पांव आपका नहीं उठेगा। दोनों पांव जमीन से सटी हुई, दोनों हथेली को ऊपर की ओर खींचेंगे। दोनों बाह कान से सटा हुआ। गहरी सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर के दाईं ओर, कमर से दाईं ओर झुकना है सांस छोड़ते हुए। तिर्यक ताड़ासन, फिर सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए जस्ट उसका अपोजिट साइड बाईं तरफ कमर की ओर झुकना है। सांस लेते हुए बीच में, फिर धीरे से दोनों हथेली सर के ऊपर। ये दूसरा नंबर अभ्यास। तीसरा नंबर अभ्यास त्रिकोण आसन। इस कड़ी में अगला अभ्यास है त्रिकोण आसन। इसमें पैर के बीच की दूरी आपके कंधे के बराबर का जितना गैप था उसका डबल कर देना है आपको। दोनों पांव के बीच गैप, दोनों हथेली को, दोनों हाथों को सांस भरते हुए कंधे के समीप फैलाना है। सांस लेंगे, दोनों हथेली, दोनों हाथ कंधा के समान समानांतर फैलाना है। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं ओर, शरीर की दाईं ओर नीचे की ओर झुकना है। नजर बाईं हथेली की ओर, ऊपरी आकाश की ओर देखना है। शरीर बिल्कुल ना ही आगे की ओर झुका हो ना ही पीछे की ओर, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। फिर सांस लेते हुए बीच में, फिर सांस छोड़ते हुए अब बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बायां हथेली नीचे की ओर, नजर ऊपर की ओर दाहिनी हथेली की ऊपर, दाहिनी हथेली को देखेंगे ऊपरी आकाश की ओर। फिर सांस लेते हुए बीच में धीरे से दोनों हाथ नीचे। ये 3 मुख्य अभ्यास हैं स्टैंडिंग पोज में। फिर हम लोग ये 3 अभ्यास करने के बाद अपनी क्षमता अनुसार, अगर आप स्टार्टिंग में आप अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं तो ये 3 अभ्यास काफ़ी है। अगर आप इंटरमीडिएट हैं, आप अभ्यासी हैं, तो इसके बाद आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, जो कि बहुत ही सिद्ध कारगर हुआ है। और वैज्ञानिक भी इसे माने हैं कि सूर्य नमस्कार के अभ्यास से जो ओबेसिटी में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास कैसे करना चाहिए, मैं तो एक सलाह दूंगा, आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास एक अच्छे योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि सूर्य नमस्कार आप घर में बैठे कैसे कर सकते हैं। योग मैट के फ्रंट पर आ जाएं, दोनों पांव आपस में सटा हुआ, दोनों हथेली प्राणा मुद्रा में हृदय के समीप रखेंगे। आंखें बंद, दिशा का चयन आप पूर्व की दिशा में अगर मुख करके आप ये करते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। दोनों हथेली प्राणा मुद्रा में, आँखें बंद, सूर्य भगवान उगते भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। और सूर्य नमस्कार के 12 आसन को अच्छे से आप समझेंगे। पहला आसन बहुत ही सरल है, दोनों हाथ को प्राणा मुद्रा में हृदय के समीप रखेंगे, ये पहला आसन है। श्वास इसमें आपको बाहर निकालना है। प्राणा मुद्रा, अब श्वास लेते हुए धीरे से दोनों हथेली को पीछे की ओर ले जाएंगे। हस्त उत्थान आसन, ये दूसरा अभ्यास हो गया। तीसरा अभ्यास, श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेली से पांव की उंगली को टच करेंगे। ध्यान रहे घुटना आपका मुड़ना नहीं चाहिए। श्वास लेते हुए चौथा नंबर अभ्यास, अश्व संचालन अभ्यास। सर्वप्रथम दायां पैर पीछे की ओर जाएगा और शरीर की आकृति एक घोड़े के समान दिखती है। इसमें गर्दन ऊपरी, ऊपर की ओर आकाश की ओर देखना है। फिर नंबर 5, दोनों पांव पीछे की ओर जाएगा,
सांस छोड़।

0: करते हुए एक्सहेल करते हुए दोनों पांव पीछे और शरीर की आकृति पर्वत के समान, माउंटेन पोज, पर्वतासन बोलते हैं इसको। फिर अगला अभ्यास वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, नंबर 6 अष्टांग नमस्कार। अभी आपने श्वास बाहर निकाला है, फिर उसके बाद श्वास बाहर निकाले हुए ही आपको होल्ड करना है और अष्टांग नमस्कार, जिसमें शरीर के 8 अंग को जमीन से स्पर्श करना है, घुटना जमीन पर, चीन जमीन पर, और हिप जो शरीर का हिप हिस्सा है वो जमीन से थोड़ा उठा रहता है। फिर गहरी श्वास लेते हुए नंबर 7 भुजंगासन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए अब पोस्चर रिपीट होगा, नंबर 8 पर्वतासन, नंबर 9 अश्व संचालन आसन। इसमें ध्यान रहे अपने प्रारंभ में दायना पैर पीछे की ओर ले गया था, अभी बायां पैर आपको आगे की ओर लाना है। फिर नंबर 10 दोनों हथेली दोनों पांव के समीप पाद हस्तासन, नंबर 11 दोनों हथेली पीछे की ओर ले जाएंगे हस्त उत्थान आसन, श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए प्राणायाम आसन। ये सूर्य नमस्कार का अर्ध चक्र हुआ, यानी अभी 12 काउंट तक किए तो ये आधा चक्र हुआ, फिर इसका आधा और करना है तो वो पूरा एक चक्र मिलके 24 का सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूर्ण होता है। ऐसा आपको अगर आप इंटरमीडिएट योग के प्रैक्टिशनर हैं, अच्छे योग गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे हैं, तो 5 से 10 राउंड आपको रेगुलर इसका अभ्यास करना है। अगला अभ्यास है पीठ के बल लेट जाना है, पीठ के बल लेट के सेतु बंध का अभ्यास, जो पेट की चर्बी को कम करने में बहुत ही ज्यादा सहायक है। इस अभ्यास को कैसे करेंगे, सेतु बंध आसन को, दोनों पांव आपस में सटा हुआ, दोनों हथेली कमर के बगल में, अब धीरे से दोनों हथेली को दोनों जांघों के ऊपर रख लेंगे, गहरी श्वास लेंगे, श्वास लेते हुए दोनों पांव ऊपर की ओर और हथेली भी, हथेली से कोशिश करना है अपने पांव की उंगली को टच करने का, आपको टच करना नहीं है, कोशिश होना चाहिए ताकि आपके शरीर की आकृति ब्रिज के समान दिखे, इसलिए इसका नाम सेतु बंध आसन है, सेतु के समान दिखे। श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए फिर नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। ऐसा आपको 5 से 6 राउंड करना है इसका अभ्यास। फिर जस्ट इसका अपोजिट, अभी अपने पीठ के बल किया, इसका रिवर्स डायरेक्शन में आपको जरूर करना चाहिए अभ्यास। अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में नहीं करते हैं तो फायदा की जगह पे नुकसान होगा, कमर दर्द हो जाएगा, गर्दन में अकड़न आ जाएगी, तो आपको तुरंत इसका रिवर्स स्टाइल में करना है अभ्यास, और बहुत ही बेहतरीन अभ्यास है ओबेसिटी के लिए। अर्ध धनुरासन, इस अभ्यास को कैसे करेंगे, योग मैट पर लेट जाएंगे, पेट के बल दोनों पांव को आपस में फोल्ड कर लेंगे, दोनों हथेली से दोनों पांव की उंगली को, मोटी उंगली को पकड़ेंगे, गहरी श्वास लेते हुए पांव को फ्रंट डायरेक्शन में और हथेली को बैकवर्ड डायरेक्शन में खींचेंगे ऊपर की ओर। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बॉडी का सिर्फ नेवल रीजन, जो नाभि का हिस्सा है, वो जमीन पर टिका हुआ है और पूरा बॉडी ऊपर हवा में है। इसका भी अभ्यास आप स्टार्टिंग में 1 से 2 राउंड करना है, फिर धीरे धीरे जब आप पारंगत होते जाएंगे इस अभ्यास में तो 10 राउंड करना है। फिर धीरे से अपने शरीर को थोड़ा आराम देना है, आराम किस मुद्रा में करना है, बहुत ही अच्छा इसका एक आसन है, इसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड पोज, बाल क्रिया। चाइल्ड पोज में सब सर्वप्रथम बाईं ओर आपको पांव फोल्ड कर सो जाना है, सोना नहीं है, अर्ध निद्रा की अवस्था में रहना है, अपने ब्रीदिंग के प्रति सजग रहना है आपको। फिर यही क्रिया आपको दाहिनी ओर पांव फोल्ड करके दोनों हथेली को आपस में एक दूसरे के ऊपर रख के, उसके ऊपर सर रख के आपको चाइल्ड पोज में थोड़ा आराम करना है। फिर इसके बाद पेट के बल भुजंगासन करते हुए उठकर आपको बैठ जाना है।
1: तो यदि हम अपने जीवन शैली को व्यवस्थित करेंगे, खान पान पे नियंत्रित रखेंगे, तो हम मोटापा से दूर रहेंगे।
0: श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय, इसे ध्यान योग भी कहते हैं, कि श्लोक नंबर 17 में कहा गया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात जो भोजन को प्रसाद की तरह ग्रहण करता, नियम से सोता जागता एवं विहार करता और अपने कार्यों को पूर्ण समर्पित भाव से करता है, वो समस्त यौगिक कष्टों से सरलता पा जाता है। सूर्योदय से पहले उठकर सैर स्नान और योग किया, सूर्योदय से पहले उठकर सैर स्नान और योग किया,

0: सात्विक भोजन क्रिया प्रेम से अल्पकाल विश्राम किया। आनंदित मन रहा दिवस भर, तन भी हल्का हल्का सा। रात्रि शयन करने से पहले गुरुवर को आभार किया।
1: मित्रों, योग से आएगी एक नई रोशनी और जीवन में होगी खुशहाली। यदि जीवन में योग को आत्मसात करते हैं तो निश्चित ही निरोगी रहेंगे और मोटापा से दूर रहेंगे। बस देर किस बात की, आज से ही लग जाइए इस मुहिम में और एक स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमित कुमार ठाकुर जी।
2: योग और मोटापा, खुला आकाश कार्यक्रम में अभी आप इसी विषय पर श्री अमित कुमार ठाकुर से ली गई भेंट वार्ता सुन रहे थे। इनसे बातचीत की संजीव कुमार लाल ने।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 110.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

0: हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
2: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
2: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1 करोड़ 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
2: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
4: मैं आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
5: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
6: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद

0: आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदांबी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक शॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई। जेडी वेंस ने

0: बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया, बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए एसआईटी गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अलंकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है, और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
2: Referring to his recent participation in the G7 summit, Mr. Modi said, world leaders recognized India's unwavering commitment to putting national interests first, a philosophy that continues to shape the country's policies and development agenda. Highlighting the government's 12 years in office, the Prime Minister said initiatives such as Swachh Bharat, Make in India, promotion of Khadi and support for local products succeeded because citizens embraced the spirit of nation building.
3: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे, हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना

0: TIF amenities. The NHAI is developing vehicle repair and puncture service facilities along national highways and expressways, reports the Asian Age. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends four officials in connection with Lucknow fire incident. Four accused arrested. Four ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में प्रदान करेंगी देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार। झारखंड आंदोलन के प्रणेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण। केंद्रीय कृषि मंत्री अलनीनो और कम बारिश को लेकर आज सभी राज्यों के साथ करेंगे ऑनलाइन बैठक। झारखंड में 1 जून से अब तक सामान्य से 60% कम बारिश। रांची में एसआईआर को लेकर बीएलओ को मिला विशेष प्रशिक्षण। 30 जून से घर घर जाकर होगा मतदाता सूची का सत्यापन। प्रशासन ने जनता से की सहयोग की अपील। दुमका वन प्रमंडल के मसानजोर इको कॉटेज प्रोजेक्ट को मिला प्रतिष्ठित नेशनल स्कॉच अवार्ड। नई दिल्ली में दिया गया सम्मान। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग का फाइनल आज रांची के जेएससी स्टेडियम में छोटानागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच होगा खिताबी मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस भव्य समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड आंदोलन के प्रमुख शिल्पकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक दिवंगत नेता तिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा जाएगा। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के अनुसार शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन यह पुरस्कार ग्रहण करेंगी। इस विशेष अवसर पर उनकी बहू कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेंगी। इस बीच पार्टी नेता और राज्य के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्र सरकार से शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की है।
3: चिंता भी है कि जिनके उनके कदकाठी के अनुरूप दिली इच्छा थी पूरे राज्यवासियों की उनको भारत रत्न मिले। हम आगे भी केंद्र सरकार से अनुरोध करेंगे कि उनके कदकाठी के अनुरूप, उनके कार्यशैलियों के अनुरूप, उनकी जो त्याग बलिदान है उसके अनुरूप उनको भारत रत्न मिले।
2: अलनीनो और कम बारिश को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 10 बजे सभी राज्यों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक करेंगे। झारखंड में 1 जून से अब तक सामान्य से 60% कम बारिश हुई है। राज्य के कृषि सचिव अबुबकर सिद्दीकी ने कहा कि विभाग सुखाड़ से निपटने और वैकल्पिक खेती के लिए पूरी तरह तैयार है।
4: हम लोग हर एक जिला के लिए कंटिजेंट एक्शन प्लान तैयार कराया है। स्टेट लेवल पे भी एक्शन प्लान तैयार कराया गया है। जिस जिला में जो आइटम सूटेबल हो सकता है उस हिसाब से हम लोग एक कंटिजेंट प्लान तैयार किया गया है ताकि इनकेस पानी का शॉर्टेज पड़ जाने पर हमारा किसान का खेत खाली नहीं रहे। साथ ही साथ हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के साथ भी लाइन अप कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री भी इसका समीक्षा कर रहे हैं तो हम लोग हर लेवल पे इसको अलर्ट करके रखा हुआ।
2: रांची जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ और सुपरवाइजरों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इसके तहत 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म का वितरण और सत्यापन किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने मतदाताओं से बीएलओ

0: को सहयोग करने की अपील की है। दुमका के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मसानजोर के चर्चित इको कॉटेज प्रोजेक्ट को इस वर्ष के प्रतिष्ठित नेशनल स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दुमका के वन प्रमंडल पदाधिकारी सात्विक ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रहण किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल एटीआईआर न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल एटीआईआर न्यूज अंडरस्कोर रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्यसभा चुनाव के बाद महागठबंधन में मचे घमासान पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यशैली और चुनावी नतीजों से खुश नहीं है तो उसे सरकार से अपना समर्थन तुरंत वापस ले लेना चाहिए।
3: कांग्रेस पार्टी को अपने बारे में चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। आखिर कांग्रेस पार्टी की बातों को आगे वो नहीं मान रहा है। लोग कांग्रेस को छोड़ करके लोग दूसरे तरफ जा रहे हैं, उसको उसके बारे में विचार करना। वोट हमें नहीं दिया तो सरकार से उनको समर्थन ही विड्रॉ कर लेनी चाहिए।
0: धनबाद में आजसू पार्टी के स्थापना दिवस पर सरकार के खिलाफ विशाल आक्रोश रैली निकाली गई। इसमें पार्टी प्रमुख सुदेश महतो और सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार और अधिकारियों अपराधियों के गठजोड़ के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।
4: जब एक सरकार एक आंदोलन को खत्म करने के लिए आर्थिक शोषण करने के लिए जो लगातार बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर रही थी, सरकार का अस्तित्व उनके अधिकारियों से, उनके अधिकारियों की जो दशा है, जो व्यवस्था बनी हुई है सरकारी दफ्तरों का, ऐसा पूरे देश के किसी दफ्तर में ना होगा। हर झारखंडी अपने आप को ठगा महसूस पा रहा है। अधिकारियों ने जो परंपरा बना दी, जिस तरह से सरकारी संसाधन को अपना अधिकार समझ कर दोहन कर रहे हैं, झारखंड की भावना, झारखंडी भावना अस्वीकार करती है।
0: केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई की टीम ने रामगढ़ जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने बरकर सयाल क्षेत्र के सौंदर स्थित रीजनल स्टोर में छापेमारी कर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के चीफ स्टोर कीपर अरुण सिन्हा को 10,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सुरक्षा कार्य के बदले घूस मांगने की शिकायत पर की गई है। झारखंड T20 क्रिकेट लीग के फाइनल मुकाबले में आज छोटानागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच भिड़ंत होगी। रांची के JLCS रणनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में दोनों टीमों के बीच इस पहले संस्करण का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले सेमीफाइनल में जमशेदपुर स्टीलर्स ने कोयलांचल सुपर किंग्स को 79 रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पद्मभूषण गुरुजी, पत्नी रूपी सोरेन आज राष्ट्रपति के हाथों लेंगी सम्मान। प्रभात खबर लिखता है, कॉपियों की ऑनलाइन जांच में कई जवाब स्पष्ट नहीं।

दिखने से उनके अंक ही नहीं मिले, दोबारा मूल्यांकन में 6% तक बढ़े अंक। हिंदुस्तान ने लिखा है नीट झारखंड की 2 छात्रा समेत 30 लोग गिरफ्तार। दैनिक जागरण के शब्द हैं नॉन इंटरलॉकिंग के कारण कई ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में प्रदान करेंगी देश के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार। झारखंड आंदोलन के प्रणेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण। केंद्रीय कृषि मंत्री अलनीनो और कम बारिश को लेकर आज सभी राज्यों के साथ करेंगे ऑनलाइन बैठक। झारखंड में 1 जून से अब तक सामान्य से 60% कम बारिश। रांची में एसआईआर को लेकर बीएलओ को मिला विशेष प्रशिक्षण। 30 जून से घर घर जाकर होगा मतदाता सूची का सत्यापन। प्रशासन ने जनता से की सहयोग की अपील। दुमका वन प्रमंडल के मसानजोर इको कॉटेज प्रोजेक्ट को मिला प्रतिष्ठित नेशनल स्कॉच अवार्ड। नई दिल्ली में दिया गया सम्मान। और झारखंड T20 क्रिकेट लीग का फाइनल आज रांची के जेएससीए स्टेडियम में छोटानागपुर रॉयल्स और जमशेदपुर स्टीलर्स के बीच होगा खिताबी मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: ये आकाशवाणी रांची है। लोक रंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उरांव लोकगीत। कलाकार हैं रायसन उरांव और साथी।
1: लोकगीत में कहा गया है, रेलगाड़ी हम लोगों के लिए है, इसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। हम अपने काम के सिलसिले में दूर दूर तक इसी रेल में चढ़कर जाते हैं। रेलगाड़ी में टिकट कटाकर ही यात्रा करना चाहिए। टिकट कटाकर यात्रा करने से सरकार को भी लाभ होगा। सुनते हैं रायसन उरांव और साथियों के स्वर में एक उरांव लोकगीत के जतरा झूमर पर।

माघ महीने के खत्म होने के बाद जब मौसम में थोड़ी गर्मी आती है, पेड़ों में नई कोपलें आती हैं, तब झारखंड में लोग फुटकल को साग के रूप में तोड़कर खाते हैं। इसी संदर्भ में दो महिलाएं बातें कर रही हैं, कह रही हैं, चलो बहन फुटकल तोड़ने, नाचू और रस्सी लेकर जाएंगे और फुटकल तोड़कर लाएंगे। इसी प्रसंग पर सुनिए ये उरांव लोकगीत, स्वर है रायसन उरांव और साथियों का।

0: जदुर राग के इस लोक गीत में कहा गया है, सरहुल पर्व साल में एक बार आता है, हम सभी नहा धोकर सरना जाएंगे। सरना में गांव के पहान मुर्गे की बलि देकर पूजा करेंगे। सरना स्थल में जो सखुआ का पेड़ है उसमें बहुत अच्छे फूल लगे हुए हैं, उसे तोड़कर गांव के लोग पहान को देंगे, पहान सभी को फूल बांटेंगे। सुनते हैं सरहुल पर्व का ये गीत उरांव भाषा में। कलाकार हैं रायसन उरांव और साथी।
1: अम्बारा

0: अभी आप सुन रहे थे उरांव लोकगीत, कलाकार थे रायसन उरांव और साथी। अब आज का लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी गानों का हमारा प्रोग्राम रस रंजन।
1: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: रस रंजन प्रोग्राम का पहला गाना है चोर मचाए शोर फिल्म से। इस गाने को किशोर कुमार ने गाया है, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

अगला गाना भी किशोर कुमार का गाया हुआ है। ये फिल्म अमानुष का गाना है, इंदिवर का लिखा गाना, जिसे संगीत से संवारा है, सजाया है श्यामल मित्रा ने।

किशोर कुमार का गाया आपने सुना, अमानुष फिल्म थी। अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हीर रांझा फिल्म का नगमा।

मुकेश का गाया एक और गाना आपको सुनवा रहे हैं। इस गाने में मुकेश का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है शोर। संतोष आनंद का लिखा यह गाना है जिसे संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

शोर फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का रसरंजन प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी रांची है। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत लीजिए सुनिए पंडित मोर मुकुट केडिया का बजाया सितार पर राग अहीर भैरव में आलाप और जोड़ के बाद दो गतें, दोनों ही गतें तीन ताल में निबद्ध हैं। संगत करने वाले कलाकार हैं तबले पर श्री श्रीजीत चैटर्जी।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित मोर मुकुट केडिया का बजाया सितार पर राग अहिर भैरव में आलाप जोड़ के बाद दो गतें। संगत करने वाले कलाकार थे तबले पर श्री श्रीजीत चैटर्जी।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। लीजिए अब सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत।
1: क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। चर्चा में आज हम बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच संपन्न एकमात्र टेस्ट और तीन वनडे के, जिसमें भारत ने क्लीन स्वीप किया है, इस पे चर्चा करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल राउंड अप होगा, जिसमें इस सप्ताह के मैच की चर्चा होगी। खास खास में आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप कैसे बिजनेस के मामले में सबसे कीमती वर्ल्ड कप है, और तीन मिनट का ब्रेक कैसे मोमेंटम किलर साबित हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही खेल खबरें तो होंगी ही। दोस्तों, सबसे पहले हम बातचीत कर रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच संपन्न टेस्ट और वनडे सीरीज के। भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच एक पारी और 300 रनों से जीती, और ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत है रनों के हिसाब से। शुभमन गिल ने 126 रन बनाए इस टेस्ट मैच में। केएल राहुल ने भी शानदार पारी खेली और 100 रन बनाए। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुए शुभमन गिल, और अफगानिस्तान की ओर से रहमत शाह ने भी पहली पारी में 60 रन बनाए थे। अगर हम गेंदबाज की बात करें दोस्तों, तो मानव सुधार ने पदार्पण मैच में 33 रन देकर 6 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वाशिंगटन सुंदर ने भी 36 रन देकर 4 और कुलदीप यादव ने 30 रन देकर 3 विकेट लिए। रिकॉर्ड्स की बात करें तो मानव सुधार भारत के लिए टेस्ट पदार्पण मैच में 5 विकेट लेने वाले चुनिंदा गेंदबाजों में वो शामिल हुए। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन वनडे मैचेस भी हुए, जिसमें तीनों मैच भारत ने जीते, भारत ने क्लीन स्वीप किया। पहला वनडे धर्मशाला में हुआ 13 जून को, और इसमें भी भारत ने जीत दर्ज की। शुभमन गिल ने इसमें अर्धशतक मारे और वनडे में 3000 रन उन्होंने पूरे किए। बेस्ट बॉलर की अगर हम बात करें तो गुरनूर बराड ने बहुत अच्छा खेल प्रदर्शन किया, और उन्होंने क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित किया। बारिश की वजह से यह मैच 25-25 ओवर का हुआ, और अफगानिस्तान ने 194 रन बनाए थे, भारत ने 7 विकेट से मैच जीत ली। दूसरा वनडे लखनऊ में हुआ 17 जून को, और इसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 170 रनों से जीत दर्ज की। इसमें कप्तान गिल और ईशान किशन ने अच्छी पारी खेली। तीसरा वनडे मैच चेन्नई में खेला गया, और इसमें भी भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ, एक बात है कि इसमें अफगानिस्तान टीम के कप्तान हसमतुल्ला शाहिदी ने अपने ओडीआई करियर का पहला शतक लगाया। भारत ने पहले ही ओवर में 23 रन बनाकर 22 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। प्रसिद्ध कृष्णा रोहित शर्मा ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। रोहित ने प्रसिद्ध की गेंदों पर 3 कैच लपके। यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में 110 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने 79 रन बनाए। आइए अब फीफा वर्ल्ड कप राउंडअप की ओर बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप में रविवार का दिन फुटबॉल के इतिहास में दर्ज हो गया। ग्रुप एफ में ट्यूनिशिया और जापान के बीच खेला गया मैच विश्व कप इतिहास का 1000वां मैच रहा। 1930 में उरुग्वे में हुई इस प्रतियोगिता ने करीब एक सदी के सफर में कई ऐतिहासिक पल देखे हैं। फीफा के अनुसार 13 जुलाई 1930 को खेले गए विश्व कप मुकाबले से लेकर 2026 के इस संस्करण तक फुटबॉल का दायरा लगातार बढ़ता गया। इस बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो इसे अब तक

का सबसे बड़ा मुकाबला बनाता है। पराग्वे के मिडफील्डर मिगुएल अल्मिरोन वर्ल्ड कप में मुंह ढकने के लिए लाल कार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। घटना ग्रुप डी के मैच के दौरान घटी, जब मिडफील्ड के पास फाउल के बाद अल्मिरोन और मर्ट मुल्डर के बीच कहासुनी हो गई और अल्मिरोन ने मुंह ढक। नए नियम के अनुसार अल्मिरोन को तुरंत लाल कार्ड दिखाकर बाहर का रास्ता दिखाया गया। नीदरलैंड्स के वर्ल्ड कप में 100 गोल पूरे हो गए और ऐसा करने वाला वह 8वां देश बन गया। नीदरलैंड्स ने वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ चौथी बार एक मैच में 5 गोल किए। डच टीम के अब टूर्नामेंट के इतिहास में 103 गोल हो गए और इस बीच मौजूदा टूर्नामेंट में 35 मैचों में 100 गोल हो चुके हैं। मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को हराया। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील ने अपनी बादशाहत का नजारा पेश किया। ब्राजील ने हैती को 3-0 से पराजित किया और इस जीत के साथ ब्राजील ने नॉकआउट के दौर में मजबूती से कदम बढ़ा लिए। इस मैच में दूसरा गोल होते ही फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में नई कहानी लिख दी गई। ब्राजील अब फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाला देश बन गया। ब्राजील ने 241 गोल करके जर्मनी के 239 गोलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी ओर इस हार के साथ हैती का सफर इस वर्ल्ड कप में खत्म हो गया। साल 1974 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली हैती इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया। ग्रुप बी में शीर्ष पर रहते हुए अमेरिका इस टूर्नामेंट के नॉकआउट में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी। पहली टीम मैक्सिको है। अमेरिका ने वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैच जीतकर नॉकआउट में प्रवेश किया है। 21 साल के एलेक्स फ्रीमैन वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के अमेरिकी खिलाड़ी बन गए। लुइस रामा के गोल के साथ ही मेजबान मैक्सिको मौजूदा विश्व कप में नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। मैक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया। उसने 2 मैचों में 6 अंक हासिल करके ग्रुप ए में शीर्ष पर अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। कनाडा ने कतर को 6-0 से रौंद कर वर्ल्ड कप फुटबॉल के इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज की और नॉकआउट में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। कतर में 2 खिलाड़ियों को लाल कार्ड दिखाया गया, जिससे उसके खिलाड़ियों की संख्या 9 पर सिमट गई और विपक्षी टीम ने इसी का फायदा उठाकर 6 गोल दाग डाले। जोनाथन डेविड ने दर्शकों का अपार समर्थन पाकर हैट्रिक लगाई। वर्ल्ड कप में कनाडा की ये पहली जीत है। फीफा वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-1 से करारी शिकस्त दी। इंग्लैंड ने अपने फुटबॉल इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के लगातार 3 ओपनिंग मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया। साथ ही साल 2002 के बाद यह पहला मौका है जब इंग्लैंड फीफा रैंकिंग में टॉप 15 में शामिल हो गया और उसने टॉप 15 में शामिल किसी टीम को हराया। इसके साथ ही टॉप टीमों के खिलाफ इंग्लैंड का 9 मैचों का जीत का सूखा भी खत्म हो गया। फ्रांस के कप्तान एम्बापे को विशेष सम्मान के रूप में 58 नंबर की जर्सी भेंट की गई। एम्बापे ने राष्ट्रीय टीम के लिए सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर बनने का रिकॉर्ड बनाया। एम्बापे ने इस उपलब्धि पर कहा कि मेरे लिए यह गर्व की बात है और ये एक ऐसा देश है जिसने कई महान खिलाड़ियों को आते जाते देखा है। मेसी का 200वां मैच रहा, हैट्रिक एक रिकॉर्ड 10। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अल्जीरिया को 3-0 से हराकर विजयी आगाज किया। मैच के 3 गोल स्टार फुटबॉलर मेसी ने किया और इसी के साथ उन्होंने 10 ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो उनकी कामयाबी को दर्शाते हैं। 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले दक्षिण अमेरिकी पुरुष फुटबॉलर बने। 38 साल 357 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक बनाई। रोनाल्डो को उन्होंने पछाड़ दिया। अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप में गोल करने वाले सबसे युवा और सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी बने। वर्ल्ड कप में 16 गोल किए। सर्वाधिक गोल के जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के ऑल टाइम रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी कर ली। वर्ल्ड कप में 24 गोल कंट्रीब्यूशन हो गए उनके। महान खिलाड़ी पेले को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, उनके 21 गोल हैं। 6 अलग अलग वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो के बाद 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। लगातार 5 वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले अर्जेंटीना के पहले खिलाड़ी हैं। किसी अफ्रीकी देश अल्जीरिया के खिलाफ मेसी की पहली हैट्रिक थी ये। अल्जीरिया वर्ल्ड कप में मेसी के खिलाफ गोल खाने वाली 11वीं टीम
बनी। फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप एफ मुकाबले में जापान ने ट्यूनिशिया को 4-0 से शिकस्त दी। यह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000वां मैच था। जापान वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में 4 गोल दागने वाली पहली एशियन टीम भी बन गई। यह जापान की टीम की वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। ट्यूनिशिया की टीम नॉकआउट की रेस से बाहर हो गई। जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हरा कर 12 साल बाद यानी 2014 के बाद पहली बार नॉकआउट में जगह बनाई। जर्मनी के मैनुअल नेउर वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले गोलकीपर भी बन गए। तो दोस्तों, ये सप्ताह भर की फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की गतिविधियां थी और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और खास खास में फीफा वर्ल्ड कप की ही चर्चा करेंगे। इस बार फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक ऐसा आर्थिक महाकुंभ है जो पेरिस ओलंपिक से करीब 4 गुना बड़ा है। दुनिया की लगभग 3/4 आबादी यानी करीब 600 करोड़ लोग इस आयोजन से जुड़ गए हैं। 39 दिन तक चलने वाले इतने बड़े आयोजन को लेकर दुनिया भर के ब्रांड्स पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर की कंपनियां इस वर्ल्ड कप में विज्ञापनों पर 99,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं। यह वर्ल्ड कप वैश्विक इकोनॉमी में करीब 3,86,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा और दुनिया भर में 8 लाख से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को होगा जहां सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में ही करीब 41,000 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई होगी जबकि कुल फायदा 1,62,00,000 तक होगा। विज्ञापनों की कीमत आसमान छू रही है। वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान अपना विज्ञापन दिखाने के लिए कंपनियों को लगभग 236 करोड़ रुपए तक की भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी। टीवी ब्रॉडकास्टर्स की शुरुआती विज्ञापनों के लिए करीब 47 करोड़ रुपए का न्यूनतम पैकेज भी रखा गया है। फीफा को ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सरशिप और टिकटों की बिक्री से करीब 84,000 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है जो 2022 के कतर वर्ल्ड कप के मुकाबले में काफी ज्यादा है। इतिहास में ऐसा पहली बार है दोस्तों जब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही सभी 16 ग्लोबल स्पॉन्सरशिप डील बिक चुकी हैं। तो आर्थिक रूप से और एक बात और है दोस्तों कि ये प्रवासी खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा मंच बन गया है जिसमें 292 प्लेयर्स अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूसरे देशों के लिए खेल रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 मैदान के साथ साथ खिलाड़ियों की नागरिकता और माइग्रेशन के दिलचस्प आंकड़ों के लिए भी चर्चा में है। 48 टीमों के 1,248 खिलाड़ियों में से 292 खिलाड़ी ऐसे हैं जो उस देश के लिए नहीं खेल रहे हैं जहां उनका जन्म हुआ। टूर्नामेंट में केवल 8 टीमें ऐसी हैं जिनमें कोई विदेशी मूल का खिलाड़ी शामिल नहीं है। माइग्रेशन पुराने औपनिवेशिक संबंधों और फीफा के बदले नियमों ने वर्ल्ड कप की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। आंकड़ों के लिहाज से फ्रांस सबसे आगे है और इस वर्ल्ड कप में फ्रांस में जन्मे 98 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं लेकिन इनमें से 76 खिलाड़ी फ्रांस की जगह किसी दूसरे देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फुटबॉल में यह स्थिति बिल्कुल नई नहीं है दोस्तों। 1930 के पहले वर्ल्ड कप में अमेरिकी टीम में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में जन्मे खिलाड़ी शामिल थे। समय के साथ फीफा ने दोहरी नागरिकता वाले नियमों में कई बदलाव किए। पहले यूथ लेवल पर एक देश के लिए खेलने के बाद टीम नहीं बदल सकते थे लेकिन 2004 और 2009 में अल्जीरिया की मांग पर नियमों में ढील दी गई। नए नियम के अनुसार यदि किसी खिलाड़ी ने 21 साल से पहले अधिकतम 3 प्रतिस्पर्धी मैच खेले हैं तो आखिरी मैच के 3 साल बाद वह अपनी राष्ट्रीय टीम बदल सकता है। इसके अलावा जन्म, माता पिता या दादा दादी के जन्म स्थान या संबंधित देश में लगातार 5 साल रहने के आधार पर भी टीमों को चुना जा सकता है। जमाल मुसियाला, फोलारेन बालोगन और डेक्लान राइस जैसे खिलाड़ी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। डिएगो कोस्टा ने भी ब्राजील के लिए फ्रेंडली मैच खेलने के बाद स्पेन को चुना था। हालांकि 2004 में ब्राजील के स्ट्राइकर एल्टन को बिना किसी पारिवारिक संबंध के भारी भरकम
रकम देकर कतर

की नागरिकता देने की बात भी सामने आई थी। इन नियमों के चलते अब फुटबॉल फेडरेशन सही खिलाड़ियों की तलाश के लिए बेहद आधुनिक और अप्रत्याशित तरीके अपना रहा। अल्जीरिया की टीम में 50% खिलाड़ी ऐसे हैं जो विदेशी मूल के हैं। अपनी टीम में सबसे ज्यादा विदेशी मूल के खिलाड़ी शामिल करने में अल्जीरिया शीर्ष पे है, जिसमें 13 खिलाड़ी हैं, जबकि हैती में 12 ऐसे खिलाड़ी हैं। पहली बार खेल रही कुराकाओ की टीम में एक को छोड़कर सभी खिलाड़ी डच मूल के हैं। कतर की टीम में 11 खिलाड़ी अलग अलग देशों में जन्मे हुए खिलाड़ी हैं। वहीं मोरक्को ने ब्राजील के खिलाफ मैच के दूसरे हाफ में ऐसे सभी 11 खिलाड़ी उतारे जिनका जन्म मोरक्को से बाहर हुआ है। और अब खास खास में ही एक और बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और ये है 3 मिनट का ब्रेक जो मोमेंटम किलर साबित हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में एक नया नियम चर्चा का विषय बना हुआ है। फीफा ने टूर्नामेंट में अनिवार्य हाइड्रेशन ब्रेक की शुरुआत की है। नियम के अनुसार पहले हाफ के 22वें मिनट और दूसरे हाफ के 67वें मिनट के आसपास खेल को रोककर खिलाड़ियों को पानी पीने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। फीफा कहना है कि भीषण गर्मी और उमस से खिलाड़ियों को बचाने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। खिलाड़ी और कोच इन ब्रेक्स को मोमेंटम ब्रेक कह रहे हैं। जब कोई टीम लगातार हमले कर रही होती है और दूसरी टीम पे दबाव होता है, तभी 3 मिनट का ये ब्रेक रेस्क्यू की तरह साबित होता है। अमेरिकी महिला टीम की कोच एम्मा हेस ने कहा कि यह ब्रेक उस टीम के लिए वरदान है जो अपना मोमेंटम खो रही होती है। यूएस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के एनालिस्ट माइकल जॉनसन के मुताबिक यह 3 मिनट का ब्रेक ब्रॉडकास्टर्स के लिए अलाउद्दीन का चिराग साबित हो रहा है। वर्ल्ड कप में 104 मैचों के दौरान मिलने वाले यह कमर्शियल ब्रेक बेहद मूल्यवान है। अमेरिकी बाजार में इस 3 मिनट के स्लॉट की कीमत सुपर बाउल के विज्ञापनों जितनी यानी करीब 65 से 85 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज डिफेंडर गैरी नेविल ने भी इसे चोरी छिपे लाया गया विज्ञापन ब्रेक करार दिया है, जिसका फायदा अमेरिकी ब्रॉडकास्टर्स उठा रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों ने इसकी आलोचना भी की, जैसे वर्जिल वान डिक नीदरलैंड्स के कप्तान ने कहा कि टीवी पर मैच देख रहे लोगों के लिए यह अच्छा अनुभव नहीं है। जब भी ब्रेक होता है तुरंत विज्ञापन शुरू हो जाते हैं और हर मैच में इसकी अनिवार्यता सिर्फ कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। नेस्टर लॉरेंजो कोलंबिया के कोच कहते हैं कि कोपा अमेरिका में जब तापमान 35 डिग्री था तब हाइड्रेशन ब्रेक समझ में आता था, अब इसकी जरूरत नहीं है। शुरुआत में कोच और खिलाड़ियों की बातचीत दिखाई जाती थी, लेकिन अब सिर्फ विज्ञापन ही चलते हैं। स्पेनिश मिडफील्डर मिकेल मेरिनो ने कहा कि कुछ मैचों में इनकी ज़रूरत होगी और कुछ में बिल्कुल नहीं। जिन स्टेडियम में छत बंद है और एसी है वहां खेल को रोकना सही नहीं है। कुल मिलाकर स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन इससे एक बात तो साबित हो गया दोस्तों कि इस मोमेंटम किलर से ब्रॉडकास्टर्स को काफ़ी फायदा हो रहा है। तो और अब हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ खास खेल खबरों से। वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और रिकॉर्ड 11 गेंदों में अर्धशतक लगाने का बन गया। इससे पहले 2006 में श्रीलंका के कौशल्य वीरागने ने 12 गेंदों में अर्धशतक लगाए थे। ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ जब वैभव खेल रहे थे तब भारत का प्रोजेक्टेड स्कोर 935 था, हालांकि टीम इंडिया ए 377 रनों तक पहुंच गई। टेस्ट, T20 और वनडे के फॉर्मेट तो बदले, लेकिन वैभव का अंदाज नहीं बदला। वैभव का 2024 में अंडर 19 टेस्ट में 58 गेंद पर शतक का रिकॉर्ड है। यह किसी भारतीय का सबसे तेज शतक है। रिकॉर्ड इंग्लैंड के मोइन अली के नाम था। 2025 में 35 गेंद में आईपीएल में शतक बनाया, इसमें रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। 36 गेंदों के साथ तीसरे स्थान पर वैभव रहे। लिस्ट ए में सबसे तेज 150 रन का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा 72 छक्कों का रिकॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। भारत ने टीमों की ट्राई सीरीज के फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में युवा भारतीय टीम ने 377 रन बनाए। सीरीज में पहली बार 350 का आंकड़ा भारतीय टीम ने पार किया। जवाब में श्रीलंका की टीम 47.1 ओवर में 311 रन पर सिमट गई। 15 साल के यू
युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम की जीत के हीरो रहे। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 10 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 94 रनों की आतिशी पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच वैभव ने केवल 11 गेंद में लिस्ट ए क्रिकेट की सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड बनाया। दाम्बुला के मैदान पर मेजबान टीम ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया था, लेकिन वैभव और प्रियांश की ओपनिंग जोड़ी ने 9 ओवर के भीतर 132 रनों की साझेदारी कर विरोधी कप्तान के इस फैसले को गलत साबित। इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा ने पहले ऋतुराज गायकवाड़ और फिर कुमार कुसाग्र के साथ अर्धशतकीय साझेदारियां निभाकर टीम को 300 रनों के करीब पहुंचाया। अंत में बिपराज निगम और अनुकूल रॉय ने मजबूत फिनिश दिखाते हुए भारतीय टीम को 377 के बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने उतरे 10 में 7 बल्लेबाजों ने 25 से अधिक का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत खराब रही। टीम ने पावर प्ले के भीतर 75 रन पर अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गवा दिया। हालांकि सदीरा समरा विक्रमा ने अर्धशतक लगाकर टीम को चेज करने में थोड़ी दूर तक साथ रखा, लेकिन उनके पवेलियन लौटने के बाद टीम लगातार अंतराल पर विकेट गवाती रही और लक्ष्य से काफी दूर हो गई। बानुजा सहान 62 रन बनाए और टॉप स्कोरर रहे। टीम के कुल 9 बल्लेबाज 15 रन के आंकड़े तक पहुंचे, लेकिन सिर्फ 2 ने ही अर्धशतक लगाए। वैभव ने खेली सीरीज की सबसे बड़ी पारी। पहली बार टीम इंडिया के लिए 50 ओवर के फॉर्मेट खेल रहे हैं। वैभव इस ट्राई सीरीज के लिए ग्रुप स्टेज में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे थे। 4 ग्रुप मैचों में उनके बल्ले से सिर्फ 117 रन निकले थे। इस दौरान उन्होंने हर बार दहाई का स्कोर किया, लेकिन एक बार भी 50 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके थे। हालांकि सीरीज की सबसे बेहतरीन पारी उन्होंने फाइनल के लिए बचा रखी थी। उन्होंने 100 ओवर के मुकाबले का नतीजा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से शुरुआती 9 ओवर में तय कर दिया। फाइनल में खेले गए 94 रन की पारी के बदौलत उन्होंने सीरीज का अंत 5 मैचों में 200.95 की स्ट्राइक रेट और 42.20 की औसत के साथ 211 रन बनाकर किया। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया। 14 जुलाई से 3 मैच की सीरीज होगी। बुमराह 3 साल बाद इस फॉर्मेट में खेलेंगे। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए 15 सदस्यीय वनडे टीम की घोषणा की है और सबसे चौंकाने वाला फैसला युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को बाहर रखना है। उन्होंने अपने पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 110 नाबाद रन बनाए थे और यह उनके 6 मैच के वनडे करियर का दूसरा शतक था। दरअसल टीम इंडिया 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अपने सबसे मजबूत टीम उतार रही है। इसी रणनीति के तहत विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की वनडे स्क्वाड की वापसी हुई है। अंतिम पारियों में शतक जड़ चुके 3 बैटर भी इस टीम में शामिल नहीं है। भारतीय टीम में इस समय बल्लेबाजों की बहुत कड़ी प्रतियोगिता है और अपनी अंतिम वनडे पारी में शतक जमा चुके 3 बल्लेबाज टीम का हिस्सा इस बार इंग्लैंड के खिलाफ नहीं है। यशस्वी के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ने भी अपनी पिछली वनडे पारियों में शतक जड़े थे, लेकिन वे टीम में जगह नहीं बना सके। कोहली को मैदान पर उतारने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। अगले हफ्ते सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कोहली का फिटनेस असेसमेंट होगा। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट नहीं है, इसलिए उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। बुमराह 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पहली बार वनडे खेलेंगे। वहीं पिछली 3 घरेलू सीरीज से बाहर रहे अक्षर की वापसी हुई है। बुमराह ने तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की जगह ली, जबकि अक्षर ने स्पिनर हर्ष दुबे को रिप्लेस किया। ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 253 रन के विशाल अंतर से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। 463 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम दूसरी पारी में महज 209 रन पर सिमट गई। पांचवे दिन 182 पे 5 विकेट से आगे खेल रहे इंग्लैंड ने मात्र 1 घंटे के भीतर ही घुटने टेक दिए। जीत के हीरो तेज गेंदबाज मैट हेनरी रहे, जिन्होंने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मैच में 11 विकेट चटकाए। कार्यवाहक कप्तान जो रूट का संघर्ष भी नाकाफी रहा। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 391 और दूसरी पारी में 362 रन बनाए थे। इंग्लैंड पहली पारी में 291 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की हार इतनी जल्दी हुई कि सरे काउंटी ने दर्शकों को टिकट का 50% रिफंड करने का ऐलान किया। महिला नेशंस कप फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया। इसके साथ ही भारत ने अगले सीजन की FIH प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली। मैच में भारत
के लिए नवनीत कौर ने चौथे और सुनेलिता टोप्पो ने 15वें मिनट में गोल दागे। पूरे टूर्नामेंट में अजय रहने वाली भारतीय टीम का यह दूसरा नेशंस कप खिताब है। दीपिका 6 गोल के साथ संयुक्त शीर्ष स्कोरर रही। इस शानदार सफलता हॉकी इंडिया ने हर खिलाड़ी को 3 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 1.5 लाख रुपए की

0: इनाम देने की घोषणा की है। दोस्तों, पर्सनालिटी में आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की, जिन्होंने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय महिला T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रविवार को इतिहास रच दिया। साउथ अफ्रीका खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में उतरती ही वे 200 इंटरनेशनल T20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गईं। पुरुष क्रिकेट में भी यह मुकाम किसी ने अभी तक नहीं छुआ है। महिला क्रिकेट में हरमन के बाद सर्वाधिक इंटरनेशनल T20 न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने खेले हैं, जबकि पुरुषों में सर्वाधिक T20 आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने खेले हैं 162 मैच। हरमन इस बार अपना 10वां T20 वर्ल्ड कप खेल रही हैं। साल 2009 में जब वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आई, तब महिला क्रिकेट की स्थिति आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस समय महिला खिलाड़ियों के पास न तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे और न ही उनके सभी मैचों का टीवी पर प्रसारण होता था। सुविधाएं भी न के बराबर थी, लेकिन अपनी जिद और मेहनत के दम पर हरमनप्रीत ने हर चुनौती को पार किया। शुरुआत से ही हरमनप्रीत को गेंद को जोर से हिट करना और बाउंड्री के पार भेजना पसंद था। उनके आदर्श वीरेंद्र सहवाग थे और उनकी आक्रामकता हरमनप्रीत के खेल में साफ नजर। 2017 के वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 171 रनों की नाबाद तूफानी पारी ने भारतीय महिला क्रिकेट की दिशा ही बदल दी और इस पारी ने उन्हें रातों रात पूरे देश की रोल मॉडल बना दिया। 37 साल की हरमनप्रीत विदेशी T20 लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बनी थी। भारत में वीमेन्स प्रीमियर लीग में भी उन्होंने मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए 4 सीजन में 2 बार अपनी टीम को चैंपियन बनाया। हाल ही में कुछ हफ्ते पहले उनके संन्यास के बारे में पूछा गया था तो उनके चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। 2016 में कप्तान बनने के बाद हरमनप्रीत ने भारतीय टीम को नई पहचान दी। उनकी कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट के सबसे साहसिक फैसलों में एक लिया गया मिताली राज को प्लेइंग 11 से बाहर करना। बॉलिंग कोच आविष्कार सालवी के मुताबिक युवा खिलाड़ियों को निखारने में हरमन का कोई जवाब नहीं है। हरमन के नेतृत्व में टीम को निडर क्रिकेट खेलना सिखाया गया। कई बार उनका गुस्सा भी चर्चा में रहा, लेकिन हरमन कह चुकी हैं कि आक्रामकता उनके स्वभाव का हिस्सा है। और दोस्तों, इसी के साथ अब हमारा यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण, और इसी के साथ अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। संकलन और प्रस्तुति स्वर अमित अखौरी का था और संयोजन था प्रभु शरण का।
0: चर्चा में आज

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण। अगला कार्यक्रम जोहार रांची बस कुछ ही देर में

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: பயம் இங்கு கட்டுப்படை
1: பாரதிய சேனா.
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी श्रोताओं का जोहार रांची में। और अब जानते हैं मौसम का हाल। श्रोताओं, राजधानी में तापमान तो गिरा है, लेकिन पलामू गढ़वा में लू का अलर्ट जारी है। मॉनसून की रुक रुक कर बारिश से जहां रांची मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस और चाईबासा का अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस गिर गया है, वहीं पलामू, गढ़वा और चतरा में 23, 24 और 25 को लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है, यानी आज, कल और परसों। राज्य के अन्य इलाकों में 28 जून तक मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश होने की भी संभावना है। अगले 24 घंटे में मॉनसून के और सक्रिय होने के संकेत हैं, लेकिन श्रोताओं, मॉनसून आने के बाद भी राज्य में 60% कम बारिश हुई है। और तापमान की बात करें तो आज 32.1 अधिकतम और 21.4 न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है।

कार्यक्रम है जोहार रांची और अब बढ़ते हैं इतिहास की तरफ और डालते हैं उन प्रमुख घटनाओं पर नजर जो आज के दिन घटी थी। आज है 23 जून तो 1987 में तन्मय भट्ट जो कि यूट्यूबर और स्टैंड अप कॉमेडियन है उनका जन्मदिन है। भारतीय शतरंज कौतुक रमेश बाबू प्रज्ञानंद 12 साल 10 महीने 13 दिन की आयु में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे आज के दिन 2018 में। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित 3 बीघा गलियारा खोलने पर भारत में विरोध किया गया था 1992 में आज के दिन और 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी आज के दिन जिसमें 3000 ब्रिटिश सैनिकों ने 50,000 मजबूत भारतीय सेना को हराया था। 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना स्विट्जरलैंड के लुसाने में की गई थी आज के दिन यानी 23 जून को। आइसलैंड में संसद की स्थापना हुई थी आज के दिन 930 में। यह दुनिया का सबसे पुरानी संसद है। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स को एक आविष्कारक के लिए पेटेंट मिला था आज के दिन जिसे उन्होंने टाइपराइटर कहा। और जन्म की बात करें तो 1901 में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जो कि भारत के अमर शहीद प्रसिद्ध क्रांतिकारी में से एक हैं उनका जन्म हुआ था आज के दिन। 1912 में एलन ट्यूरिंग अंग्रेजी गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक थे उनका भी जन्म हुआ था आज के दिन। और कुछ खास व्यक्तियों की भी हम चर्चा करें जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। दिग्गज अभिनेता रहमान इनका जन्म 23 जून 1921 को लाहौर में हुआ था। उन्होंने प्यासा साहिब बीवी और गुलाम और वक्त जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया था। रहमान को हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय चरित्र अभिनेताओं में से एक माना जाता है और ये बात बिल्कुल सही है। इनकी खूबसूरती परिष्कृत व्यक्तित्व शालीनता और सुरुचिपूर्ण व्यवहार की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो सुनते हैं उनका अभिनित ये फिल्म पर ये गीत।

श्रोताओं, अभिनेता राज बब्बर का जन्म भी 23 जून 1952 को हुआ। 1977 में फिल्म किस्सा कुर्सी का से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। निकाह, इंसाफ का तराजू और आज की आवाज़ जैसी फिल्मों में उनके सशक्त अभिनय को काफ़ी सराहा गया।

श्रोताओं, हम बातें कर रहे हैं इतिहास की, तो आज के खास दिवस की भी बात कर लें। संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। यह दिन उन सरकारी कर्मचारियों और संस्थानों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो समाज की सेवा में समर्पित रहते हैं। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में की थी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा के महत्व को उजागर करना, युवा पीढ़ी को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करना और प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना भी है। और आज अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी है। इसके साथ ही हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है विश्व ओलंपिक दिवस। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1948 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, ओलंपिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना और सभी आयु वर्ग के लोगों को खेलों से जोड़ना है। ओलंपिक दिवस खेल भावना, समानता, मित्रता और ओलंपिक के प्रति जागरूकता को दिखाता है। ओलंपिक दिवस खेल भावना, समानता और एकता का प्रतीक भी है। इस दिन दुनिया भर में दौड़, साइकिल रैली, योग सत्र, खेल प्रतियोगिताएं और फिटनेस अभियानों का आयोजन किया जाता है। तो ये एक खास दिन है।

श्रोताओं, जून और जुलाई के महीनों में मॉनसून की शुरुआत और उमस के कारण कई तरह की बीमारियां तेजी से फैलती हैं। इससे बचने के लिए अपने आसपास सफाई रखना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी इस समय उबला और साफ पानी पीना है और मच्छरदानी का प्रयोग तो जरूर करना है। इन महीनों में सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारियों से हमें बचना चाहिए और वो है डेंगू और चिकनगुनिया। घर में या आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए और अच्छे मच्छर रोधी का इस्तेमाल भी करते रहना चाहिए ताकि हम इन बीमारियों से बच सके। और दूसरा है डायरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां जिनसे हमें अपना बचाव करना है। इस मौसम में केवल फिल्टर या उबला हुआ पानी ही पीना चाहिए। सड़क के कटे हुए फल या बासी खाने से बचना चाहिए, यानी स्ट्रीट फूड से हमें दूरी बना लेनी चाहिए इस मौसम में। खासकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार हमेशा ताज़ा और गर्म खाना खाने की सलाह दी जाती है। मच्छरों के पनपने से रोकने के लिए कीटनाशक स्प्रे का उपयोग हमेशा करते रहना चाहिए और वायरल बुखार और सर्दी जुकाम इस मौसम में ज्यादा होते हैं, तो अचानक बारिश में भीगने से भी बचें। अगर भीग भी जाएं तो जल्दी से सूखे कपड़े से उसे पोंछ लें और अपने कपड़े गीले कपड़ों को तुरंत बदल लें। तो इस तरह से हम मॉनसून में अपना बचाव कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल हर मौसम में रखें, लेकिन इस मौसम में थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है।

श्रोताओं, स्वस्थ रहने के साथ साथ मन को सुकून और शांति देना भी बहुत जरूरी है। अपने आप को वक्त देना एक अहम बात है जो कि हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। तो मेरा इशारा है पर्यटन की तरफ। तो भारत में वर्षा ऋतु सचमुच जादुई होती है, ये हम सभी जानते हैं। ये साल का वो समय होता है जब पर्यटक और स्थानीय लोग ठंडी हवा और सुहाने मौसम का आनंद लेना चाहते हैं। चारों ओर बारिश की बूंदें बिखरी रहती हैं, झरनों का पानी जोरों से बहने लगता है, धूप से सराबोर समुद्र तट पानी से भर जाते हैं, पहाड़ हरे भरे रंग में चमक उठते हैं और रुई जैसे बादल आसमान में छा जाते हैं। सुनकर ही कितना

सुकून मिलता है श्रोताओं, जिसे भारत की यानी हमारे देश की धरती स्वर्ग से कम नहीं लगती। इसके अलावा बारिश के बाद धरती की अनूठी खुशबू मन को मोह लेती है। यह सचमुच आनंद और सुकून का मौसम है और प्रकृति की असीम सुंदरता के करीब हमें लाता है। हालांकि कुछ लोग मानसून में यात्रा करने से बचते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए बारिश के दौरान बाहर निकलेंगे तो प्रकृति की अनूठा आकर्षण आपको एक ऐसी यादें देगा जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो अगर बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू आपको मंत्रमुग्ध कर देती है तो हमारे देश में मानसून के मौसम में घूमने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो आज हम बात कर रहे हैं मॉलशेज घाट की। यह यादगार मानसून छुट्टियां बिताने के लिए यह घाट बहुत ही बढ़िया है। पश्चिमी घाट में स्थित मॉलशेज घाट समृद्ध वनस्पति और जीव जंतुओं का घर है, जो मानसून के दौरान और भी मनमोहक लगता है। आप प्रकृति की सैर, ट्रैकिंग और पक्षियों को देखने के लिए यहाँ जा सकते हैं। मानसून के दौरान यहाँ का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और घाटियों और झरनों के मामले में मॉलशेज घाट को अक्सर महाराष्ट्र का स्वर्ग या स्विट्जरलैंड माना जाता है। यह मुंबई पुणे के पास एक बेहद खूबसूरत और हरा भरा पहाड़ी दर्रा है और यहाँ के मुख्य आकर्षणों के बारे में भी हम आपको बता दें। मॉरिशस की तरह ही यह स्थान मॉनसून के दौरान अपनी हरी भरी पहाड़ियों और अनगिनत झरनों के कारण सबसे आकर्षण लगता है। पक्षी दर्शन यहाँ पिंपल गांव जोंगा बांध के पास प्रवासी गुलाबी फ्लेमिंगो पक्षियों को देखने के लिए पर्यटकों की काफी भीड़ उमड़ती है। और इसके अलावा आप कलालू वाटरफॉल, हरिश्चंद्रगढ़ किला और कोंकड़ कड़ा भी शामिल है, जहां आप जा सकते हैं। तो आपको अगर मौका मिले तो आप महाराष्ट्र के मॉलशेज घाट जाएं और मानसून में इसका आनंद लें।

0: को।
1: श्रोताओं, अगर आप अपने दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं तो पक्षियों को देखना और उनकी आवाजें सुनना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। वैज्ञानिकों ने एक नए शोध में पाया है कि रोजाना पक्षियों को निहारने से दिमाग की संरचना में सकारात्मक बदलाव आते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक पक्षियों के बीच और प्रकृति के बीच समय बिताने से आपका दिमाग अधिक केंद्रित और मजबूत बनता है। तो प्रकृति के बीच समय बिताना तो हर किसी को पसंद है और सुकून भी हमें वहीं मिलता है।

और कार्यक्रम के आखिर में बढ़ते हैं खेल की ओर। तो अर्जेंटीना के खिलाफ लियोनेल मेसी ने एक बार फिर फुटबॉल इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा दिया है। ऑस्ट्रिया के खिलाफ ग्रुप्स जे मुकाबले में 38वें मिनट में गोल दागते ही मेसी फीफा विश्व कप इतिहास के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रिया के खिलाफ किया गया यह गोल मेसी के विश्व कप करियर का 17वां गोल रहा। इसके साथ ही उन्होंने जर्मनी के महान स्ट्राइकर मिरोस्लाव क्लोज को पीछे छोड़ते हुए फीफा विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही 2-0 से ऑस्ट्रिया को हराकर अर्जेंटीना ने नॉकआउट में जगह बना ली। और आपको बताएं श्रोताओं की राजधानी रांची में पहली बार देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप की मेजबानी करने जा रही है। यह टूर्नामेंट संभावित रूप से 26 जुलाई 2026 से शुरू होने वाली है।

इसके साथ ही आज का जोहार रांची का अंक यही समाप्त होता है। मीनाक्षी को कार्यक्रम जोहार रांची से दीजिए विदा। नमस्कार, जोहार।

मेरा गांव मेरा देश इस फिल्म से ये गाना था लता मंगेशकर की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। और इस गीत को सुनना चाहा था नया बाजार बक्सर से हमारे श्रोताओं ने, राजेश केशरी, पंकज केशरी और रोहन केशरी। गोलाघाट बक्सर से हमारे श्रोता थे विजय केशरी, गौरी शंकर केशरी और शंभू केशरी। लुधियाना पंजाब से आप थे अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से आप थे वलीउल्लाह फकीर, डब्ल्यूउल्लाह फकीर, परवीन आजमा फकीर। बुलंदशहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। बठिंडा रोड डबवाली से हमारे श्रोता इस गीत को सुनना चाहते थे राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। और आइए अब आपको सुनवाते हैं आपकी

और ये है आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गाना जो हमने लिया है कभी कभी फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की है, खयाम का संगीत है, साहिर लुधियानवी की है शब्द रचना। और इस गीत को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे श्रोता ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराज जहां। और आप हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम। आप सबों की फरमाइश पर कभी कभी फिल्म का ये गाना।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: तुम स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: आपकी पसंद में एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और अब अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं आराधना फिल्म से। ये भी है लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल हैं और SD बर्मन का है संगीत। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से हमारे श्रोता राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी से हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर से आप हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुरा कलां गाजीपुर से आप हैं अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। आदर्श नगर मलोट से आप हैं मीना शर्मा और सौरभ शर्मा। चलिए आप सबों की फरमाइश पर ये गीत।

और ये है आपकी पसंद का अगला और आखिरी गीत, जो है अनुराग फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़।

आवाज एस डी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी की है शब्द रचना। और इस गीत को सुनना चाहते हैं सरगुजा मैन पार्ट से आप हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा और आदिबा थापा। जेल रोड मथुरा से हैं वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार। खरसावा झारखंड से हमारे श्रोता इस गाने को सुनना चाहते हैं आप हैं सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक और मुकेश नायक। आप सबों की फरमाइश पर अनुराग फिल्म का ये गीत।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं महिलाओं का विशेष कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। और गृहलक्ष्मी में आज आपके साथ हैं रानी और लता।

0: पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये पंक्ति हमें जीवन का गहरा सत्य सिखाती है कि दूसरों का भला करना ही सबसे बड़ा धर्म है और किसी को कष्ट देना सबसे बड़ा अधर्म। और यही विचार हमें सेवा की भावना की ओर ले जाता है।
1: और इसी सुंदर विचार के साथ बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। मंगल कामना आप सभी के लिए कार्यक्रम के आज के इस खूबसूरत

0: खूबसूरत सफर में आज आपके साथ मैं हूँ लता, और हम सब के साथ है हम सब की प्यारी सखी रानी।
1: हाँ सखियो, स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। बहनों, जीवन की सच्ची सफलता केवल अपने लिए जीने में नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी थोड़ी सी रोशनी जोड़ने में है।
0: बिल्कुल, क्योंकि जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तभी हमारा जीवन और अधिक सार्थकता हो जाता है। मतलब ये हमें सार्थक रूप से देखने को मिलता है। हमारी खुशियाँ तब और बढ़ जाती है जब उसमें समाज और दूसरों की भलाई जुड़ जाती है, और यही भावना सेवा कहलाती है।
1: हालता, सेवा का भाव वो शक्ति है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है और समाज को मजबूत बनाता है। ये वो भावना है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, न किसी पहचान की चाह और न किसी पुरस्कार की उम्मीद। बस एक सच्चा मन चाहिए जो दूसरों के दुख और जरूरतों को समझ सके।
0: हाँ बिल्कुल रानी, और जब यही भावना व्यक्तिगत स्तर पर निकल करके समाज के स्तर पर फैलती है तो वही सार्वजनिक सेवा की नींव बनती है। हाँ बहनों, सार्वजनिक सेवा जिसका मतलब है वे सभी कार्य और सुविधाएं जो समाज के हर व्यक्ति के भले के लिए हो।
1: बिल्कुल, ये केवल कोई एक काम नहीं बल्कि पूरे समाज को बेहतर बनाने की व्यवस्था है। सरकार भी हमें कई सार्वजनिक सेवाएं देती है बहनों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ पानी, बिजली, सड़क व्यवस्था, पुलिस सेवा, आपदा सहायता। और इन सभी सेवाओं का उद्देश्य किसी से लाभ कमाना नहीं होता बल्कि लोगों का जीवन सुरक्षित और सरल बनाना होता है ना लता?
0: हाँ बिल्कुल सही, ये सेवा किसी पद, प्रतिष्ठा या लाभ की अपेक्षा से नहीं बल्कि कर्तव्य और मानवता की भावना से की जाती है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना, रक्तदान करना, शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, ये सभी सार्वजनिक सेवा के उदाहरण हैं बहनों।
1: बिल्कुल, अक्सर कुछ लोग सोचते हैं बहनों कि सार्वजनिक सेवा केवल सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों या सामाजिक कार्यकर्ताओं का ही काम है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है।
0: हाँ बहनों, समाज का हर व्यक्ति सार्वजनिक सेवाओं में अपनी भूमिका निभा सकता है। एक जागरूक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना भी सार्वजनिक सेवा ही है।
1: बिल्कुल, छोटी छोटी आदतें अपनाकर, जैसे साफ सफाई का ध्यान रखना, जरूरतमंदों की मदद करना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना, पेड़ पौधे लगाना, संसाधनों का सही उपयोग करना और बुजुर्गों की सहायता करना, ये सभी सार्वजनिक सेवा का हिस्सा ही तो है बहनों।
0: और ये केवल आदत नहीं, एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और दूसरों के हित के बारे में सोचता है।
1: हाँ, और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जिस समाज में रहते हैं उसके बारे में सोचना, उसके विकास के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना, ये हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी है ना?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब अपने जीवन में कई सुविधाओं का उपयोग करते हैं। सड़कें, अस्पताल, विद्यालय, सार्वजनिक परिवहन, पार्क, डाकघर, अन्य सेवाएं, लेकिन इन सुविधाओं का उपयोग करने के साथ साथ उनकी देखभाल करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये केवल अधिकार नहीं हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा लता, और जब हम जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान देते हैं। क्योंकि बहनों, सच तो यही है कि एक अच्छा समाज केवल कानून और व्यवस्थाओं से नहीं बनता बल्कि लोगों की सोच और उसके व्यवहार से बनता है।
0: हाँ, और जब हम बात करते हैं समाज की तो उसमें आपकी यानी महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
1: हाँ,
0: है ना बहनों?
1: हाँ, बिल्कुल,
0: हम महिलाओं की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बहनों, क्योंकि महिलाएं तो स्वभाव से ही सेवा और समर्पण का प्रतीक मानी जाती हैं, और परिवार की जो शाखाएं हैं उसे जोड़ करके रखना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना, ये सभी गुण समाज को मजबूत बनाने में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका होती है।
1: हाँ, और यदि यही गुण महिलाएं अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को ईमानदारी, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाएं तो आने वाली पीढ़ियां भी समाज के प्रति अधिक संवेदनशील बनेंगी। और सार्वजनिक सेवा का सबसे महत्वपूर्ण आधार है संवेदनशीलता।
0: बिल्कुल, जब हम दूसरों की समस्याओं को समझने लगते हैं तब सेवा हमारे व्यवहार का हिस्सा बन जाती है, और जब हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे आदतों को अपनाएंगे जो समाज के लिए लाभकारी हो, चाहे वह स्वयं का कार्य हो या किसी दूसरों के लिए भी जुड़ा हो, तो या पर्यावरण संरक्षण का कार्य हो, ये तमाम चीजें जन कल्याण से जुड़ी हैं और हर सकारात्मक प्रयास समाज को मजबूत बनाने में योगदान देता है।

0: है।
1: बिल्कुल सही कहा लता, एक छोटी सी मदद, एक सकारात्मक सोच और एक जिम्मेदार कदम समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है बहनों। और एक बेहतर समाज की शुरुआत किसी और से नहीं बल्कि हमसे और आपसे ही तो होती है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार सेवा परमो धर्मा, यानी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं।
0: और इंसान की असली पहचान उसके जो धन है उसकी प्रसिद्धि से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और कर्मों से होती है ना। जब हम किसी की मदद करते हैं तो मन को जो संतोष मिलता है, जो सुकून मिलता है, वही सेवा भावना का सबसे सुंदर दिखता है।
1: हाँ बिल्कुल, और आज के समय में इस भावना की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है बहनों। अक्सर हम सोचते हैं कि समाज की समस्याओं का समाधान प्रशासन या सरकार करेगी,
0: लेकिन यदि हर व्यक्ति अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए ना,
1: हाँ।
0: तो कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती है और समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होती है।
1: हाँ बहनों, सार्वजनिक सेवा एक नैतिक जिम्मेदारी है और नैतिकता हमें सिखाती है कि हम केवल अपने बारे में ना सोचे बल्कि दूसरों की भलाई और समाज के हित को भी महत्व दे।
0: क्योंकि बहनों, जीना भी यही है और मरना भी, और

हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन,

0: तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो बहनों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में। और अब हम कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां हमें लेकर चलेंगी रानी।
6: हाँ बहनों, अब आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता। महिलाएं रखे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान, इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकृति सिन्हा, और इनसे बातचीत कर रही हैं लता।
7: महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य केवल उनके व्यक्तित्व जीवन को ही नहीं, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास को भी प्रभावित करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं घर, कार्यस्थल और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण वे तनाव, चिंता, अवसाद और मानसिक दबाव जैसी समस्याओं का सामना करती हैं। इसलिए महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। और इसी विषय पर हम हमारा विषय महिलाओं रखते अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और इसके लिए आज हमारी आज की खास मेहमान है डॉक्टर प्रकृति सिन्हा, जो लंबे समय से सेवा के क्षेत्र में मानसिक जो रोग होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रही हैं और सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे बीच है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकृति सिन्हा। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
8: थैंक यू लता जी, इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
7: मैम, जैसा कि आज हम अपनी बहनों के लिए खास विषय पर चर्चा लेकर के आए हैं, महिलाएं रखिए अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान विषय, तो मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे मैम कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और यह महिलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
8: लता जी, मानसिक स्वास्थ्य अगर बहुत सिंपल भाषा में बताई जाए तो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य का एक इंडिकेटर है। ये सिर्फ किसी बीमारी का ना होना या कोई तनाव का ना होना मानसिक स्वास्थ्य का इंडिकेशन नहीं देता। मतलब अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावात्मक, सामाजिक सब तौर पर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपके सभी डोमेन या एरिया ऑफ लाइफ में आप बढ़िया से काम कर पा रहे हैं, आप खुश हैं, आप हेल्दी हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली। और जहाँ तक महिलाओं की बात है तो उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि महिलाएं किसी भी परिवार, समाज का एक स्तंभ है। परिवार में उनके कई रोल हैं, माँ का रोल, पत्नी का रोल, और इन सभी भूमिकाओं को निभाते हुए उनको अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में गड़बड़ी की अगर होती है तो इसका असर पूरे परिवार, पूरे समाज या पूरे देश पर पड़ेगा।
7: ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही मैम, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत आवश्यक है महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं जो है वो घर की नींव भी है। मैम, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारण जो है वो कौन कौन से हैं।
8: लता जी, महिलाएं खास करके अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दें तो कई ऐसे हार्मोनल चेंजेस के थ्रू गुजरती हैं अपने पूरे जीवन काल में, चाहे वो आपका प्यूबर्टी हो जिसमें मासिक धर्म का आना हो, उसके अलावा प्रेगनेंसी, और जब मासिक धर्म का बंद होना होता है जैसे हम कहते हैं मेनोपॉज, इन सारी

0: प्रक्रियाओं में या जीवन के स्टेजेस में महिलाएं अत्यंत डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस के साथ गुजरती हैं, जिसमें हार्मोनल चेंजेस होता है, मूड डिस्टर्बेंस होता है। तो कई बार ये चीजें जो हैं उनको ज्यादा मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है वनरेबल या फिर आप समझ सकते हैं कि रिस्क में डालती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारा सामाजिक परिवेश जो है वो महिलाओं के लिए एक स्टैंडर्ड या एक मापदंड तय कर देता है, चाहे वो उसके बोलने का तरीका हो, पहनने का तरीका हो, चलने का। तो इस वजह से भी महिलाएं जो है कई बार अगर आप देखोगे तो महिलाओं में बॉडी इमेज इश्यू, जैसे खाने की अपने शरीर को कैसा दिखना है, रंग कैसा है, इन सब चीजों को लेके ज्यादा समस्याएं या मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होती हैं। महिलाओं में उदासी का अगर मैं आपको बताऊं, उदासी या डिप्रेशन जिसको हम कहते हैं, डिप्रेशन की जो संभावना है वो पुरुषों की तुलना में 2 से 3 गुना ज्यादा है। और इसकी एक वजह ये भी है कि उनका डबल रोल होता है, वो परिवार का भी ध्यान रखना है, उन्हें उन्हें सारे घर के इश्यूज को भी हैंडल करना है, साथ साथ में अगर काम काज कर रही हैं तो उसका भी हैंडल करना है। तो उनको वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, चाहे वो घर में भी काम कर रही हो तो भी उनको बैलेंस करना बड़ा ही एक स्ट्रेसफुल या तनावपूर्ण जो हो जाता है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि महिलाएं जो हैं किसी भी तरह की प्रताड़ना, चाहे वो हम उसे कहते हैं ना डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा या आघात या ट्रॉमा, अलग अलग तरह की डिस्क्रिमिनेशन, ये इन सब चीजों के दायरे में या जल्दी आ जाती हैं, वो ज्यादा वल्नरेबल होती हैं इन सब चीजों को। तो ये सब भी उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य का कारण जो है, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है।
1: बिल्कुल, बहुत उम्दा जानकारी मैम, ये तो आपने बहुत सही बताया मैं हमारी बहनों को। मैम, कामकाजी और गृहिणी महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियां किस प्रकार अलग होती?
0: देखिए, दोनों की अपनी चुनौतियां हैं और कुछ चुनौतियां समान भी हैं। अगर कामकाजी महिलाओं के बारे में बोलें तो जो कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें काम की जगह पे अपने काम में जो है वो अपना स्तर बनाए रखना है, साथ साथ में घर का भी कार्य देखना है, तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो मेंटेन करना उनके लिए बड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। उसके ऊपर अगर वर्क प्लेस में बहुत बढ़िया सामंजस्य नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो उन सारी चीजों को लेकर भी कई बार उन्हें मतभेद या फिर जैसे हम कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। रोल को लेकर कई बार अगर आपके पुरुष सहकर्मी हैं तो वो, या आप उच्च पोस्ट पर हैं तो वो आपसे ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते, ये बड़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा अगर आप घरेलू महिलाओं के बारे में बोलें जो घर में रहती हैं, तो जनरली जो देखा जाता है कि उनको अपना श्रेय नहीं मिलता काम का, वो दिन भर में दूसरों के लिए काम करती हैं, अपने बच्चों के लिए काम करती हैं, लेकिन उनको उस चीज का रिकग्निशन नहीं मिलता, जिस वजह से उनके अंदर आत्मसम्मान या कॉन्फिडेंस या हीन भावना का इश्यू होता है। अगर घरेलू महिलाएं किसी तरह की मानसिक स्वास्थ्य से विकार से गुजरती हैं तो उन्हें डिपेंड करना पड़ता है दूसरों के ऊपर, हेल्प कर सीख करने के लिए, स्पेशलिस्ट के पास जाने के लिए, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने के लिए, ये जो है कुछ चैलेंजेस आती हैं उनके ट्रीटमेंट में भी।
1: बिल्कुल, बहुत खूब मैम, बहुत उम्दा जानकारी आपने दी। मैम, महिलाओं में अवसाद जो डिप्रेशन आप कह रही हैं, तो इसके सामान्य लक्षण क्या है?
0: देखिए, अवसाद जो है आमतौर पे लोग उदासी और अवसाद को कंफ्यूज करते हैं। उदासी जनरल जिसको हम बोलते हैं सैडनेस, आज मेरे साथ कुछ हुआ तो मेरा मन उदास है, जब हम अवसाद बोलते हैं
1: जी
0: तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि अगर 2 हफ्तों से या 2 हफ्ते से ज्यादा आपका बराबर उदास रह रहा है, आप जिन चीज

0: में पहले रुचि ले रहे थे उसको कभी भी अब इच्छा नहीं हो रही। आपके शरीर में आपको फुर्ती महसूस नहीं हो रही, आपका मन चिड़चिड़ाहट हो रहा है, चिड़चिड़ हो रहा है, आपको किसी काम में मन नहीं लग रहा, आपकी नींद की समस्या हो रही है, आप खाना जो है आपकी भूख जो है वो कम हो गई है, इसके अलावा भविष्य को लेकर बड़ी निराशा हो रही है, खुद को लेकर मायूसी हो रही है, ये ऐसी समस्याएं और लक्षण और अगर आप देख रहे हैं तो ये इंडिकेट करेगा, ये बताएगा कि आपको जो है अवसाद हो रहा है। और इन लक्षणों में से कितने लक्षण हैं आपके अंदर, ये हमें मदद करता है इस बात को समझने में या विभाजित करने में कि आपका अवसाद माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। जनरली सीवियर डिप्रेशन में वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, भविष्य बिल्कुल होपलेस लगने लगता है, सुसाइड या फिर आत्महत्या के भी विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो इस ये एक समझ लीजिए कि अलार्म या क्राइसिस सिचुएशन है। इस समय तो बिल्कुल आपको मनोचिकित्सक या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का हेल्प सीख करना ही चाहिए। और अगर अगर आप आसपास अपनी बहनों को या घर के किसी सदस्य को महिला को देख रहे हैं कि वो अलग थलग रह रही है, उसका पहले से जो है इच्छा रुचि ये सब चीज कम हो गया है और ये काफी समय से चल रहा है, तो बिल्कुल इसके लिए देर नहीं करनी चाहिए, उनको तुरंत दिखाना चाहिए।
1: बहुत खूब मैम, अपनी बातों बातों में महिलाओं को ये भी बताया कि इसके क्या उपाय हैं, हमें कैसे इसके लिए सतर्क रहना चाहिए और हम कौन से उपाय ऐसे अपना सकते हैं। मैम, परिवार और समाज महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में कैसे सहयोग कर सकते हैं?
0: देखिए, सबसे पहले तो जानकारी या फिर इससे हम कहते हैं हमें अवेयरनेस आना चाहिए हम सभी के अंदर, चाहे वो परिवार हो या समाज हो। और महिलाओं को उनका अधिकार को लेकर अवगत कराना, यानी कि उनको उनकी तरफ जो संवेदनशीलता है इन इश्यूज को लेकर, इन समस्याओं को लेकर, समाज को भी और परिवार को भी अपने अंदर लाने की जरूरत है। कई बार महिलाएं सालों तक जो है समस्याओं से गुजरती रहती हैं, लेकिन वो अवसाद है एक ऐसी समस्या है जो ट्रीटमेंट उपचार से ठीक हो सकता है, ये परिवार वाले या समाज वाले समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक मन का रोग है जिसे हंसने बोलने कोशिश करने से ठीक हो जाएगा। ये जो है परिवार वालों को इसको लेकर संवेदनशील होना चाहिए। जहाँ तक सामाजिक तौर पे है, अगर कोई महिला समाज से जुड़ी हुई है और आप अपने आसपास कम्युनिटी में ऐसे लोगों को देख रहे हैं तो आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्लिनिक हेल्पलाइन हैं जिनकी मदद वो सही जगह पर सही उपचार पा सकते हैं। तो स्टिग्मा या फिर अवधारणा दूर करके हमें मदद के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
1: वाह, बहुत खूब मैम। मैम, आप इतना खूबसूरत संदेश हमारी बहनों को आप दे रही हैं, तो हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के अंतिम चरण में चलते चलते आप बहनों से कुछ बातें साझा करें। आप हमारी बहनों से क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कुछ करती हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आप अपने ऊपर भी, अपने आप को भी महत्व दें। तो जब कभी भी समस्या हो, जब कभी भी दिक्कत हो, अपने लिए आगे बढ़कर जरूर मदद लीजिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और अपना ध्यान रखिए, जीवन में खुशी और स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य आपका अधिकार है, और इसको पाने के लिए अगर आपको आगे बढ़कर मदद लेनी पड़े तो इसमें बिल्कुल भी झिझकना नहीं है।
1: बहुत खूब संदेश मैम। मैम, आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी, हमारी बहनों से इतनी उम्दा, इतनी सटीक जानकारी आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू लता जी, इस अवसर के लिए, इस मुद्दे के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए तहे दिल से आप धन्यवाद कर रही हूँ।

0: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता। महिलाएं रखे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान, इस विषय पर भेंटवार्ता कर थी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रकृति सिन्हा, और इनसे बातचीत कर रही थी आपकी रेडियो सखी लता।
1: अब कार्यक्रम की ओर हम आगे बढ़ते हैं बहनों, और जैसा कि हर रोज हम आपके लिए कुछ जानकारी लेकर आते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि सप्लीमेंट के प्रयोग में सावधानी आवश्यक है। बहनों, स्वस्थ शरीर और खुशहाल जीवन, ये चाहत तो सभी की होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अक्सर ऐसी चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी हमें होती ही नहीं है।
0: बिल्कुल, आजकल बाजार में तरह तरह के सप्लीमेंट्स आसानी से मिल भी जाते हैं लता। कभी ताकत बढ़ाने के नाम पर, कभी वजन घटाने के नाम पर, तो कभी सुंदर त्वचा और बेहतर स्वास्थ्य के वादों के साथ।
1: बिल्कुल, कभी कैल्शियम की गोलियां, कभी विटामिन कैप्सूल, तो कभी प्रोटीन पाउडर। लेकिन बहनों, क्या आपने सोचा है कि बिना सही जानकारी और डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है?
0: बिल्कुल, अक्सर विज्ञापनों या दूसरों की सलाह से प्रभावित होकर लोग सप्लीमेंट्स लेना शुरू तो कर देते हैं लता, लेकिन हर व्यक्ति की जरूरतें अलग अलग होती है। जो चीज एक व्यक्ति के लिए लाभदायक होती है, वही दूसरे के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल। तो बहनों, सप्लीमेंट की जो संतुलित भोजन होते हैं ना,
0: हाँ,
1: उसका विकल्प आप कभी ना समझे। ताजे और मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें, दूध और अनाज से मिलने वाला पोषण ही सबसे बेहतर हमारे लिए उपयोगी उपयुक्त भोजन है।
0: हाँ बहनों, याद रखिए, स्वास्थ्य का सबसे बड़ा आधार संतुलित आहार है, और सप्लीमेंट्स केवल उसकी पूर्ति का एक साधन। सप्लीमेंट्स सहारा हो सकते हैं, लेकिन संतुलित आहार का विकल्प कभी नहीं। असली ताकत आपकी थाली में है।
1: बातें तो बहुत हैं बहनों, लेकिन समय ने हमें इशारा किया है कि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आप सबको हम बताना चाहेंगे कि आज के हमारे कार्यक्रम की प्रस्तुति गौरव पांडे की थी। तो अब अपनी सखी लता
0: और रानी को दे विदा।
1: नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।

0: लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ये था रात और दिन फिल्म से गाना, शंकर जयकिशन का संगीत और बोल थे शैलेंद्र के।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

भवान से चल पड़े दहाड़ के भारतीय सेना, भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: फिल्म संगीत में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का, और अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं मुकेश की आवाज में, मेरा नाम जोकर, इस फिल्म से। हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म से ये अगला गाना है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और साथ में साथियों की आवाज़ें हैं, शैलेंद्र के है बोल और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: फिल्म संगीत में अब इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्व

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: They all constitute an important threats for us.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होबिजर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the second civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The President will confer 65 Padma Awards today. National Security Advisor Ajit Doval today stressed on the need to be cognizant of the new security threats and challenges. Speaking at the 16th BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi, Mr. Doval said that non-traditional threats have transcended national borders. He emphasized that innovative disruptive technologies, more camouflaged variants of terrorism and cyber threats are getting increasingly digitized. He said the discussions during the 16th BRICS National Security Advisors meeting will focus on non-traditional security challenges.
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges, non-traditional threats.

0: समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आज झारखंड के लिए गौरव का क्षण है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और दिग्गज आदिवासी नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आज नई दिल्ली में मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह सम्मान प्रदान करेंगी। शिबू सोरेन की ओर से उनकी पत्नी रूपी सोरेन इस सर्वोच्च पुरस्कार को ग्रहण करेंगी। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हुई इस बैठक में दोनों राज्यों के वित्तीय प्रबंधन और विकास पर चर्चा हुई। बैठक में बिहार के विभाजन के बाद के बजटीय अनुभवों पर भी सकारात्मक बातचीत हुई। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति ने धनबाद सर्किट हाउस में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया। सभापति ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आम लोगों तक पहुंचाया जाए।
2: प्रशासन का जो काम हो रहा है वो नियम के अनुसार हो रहा है या नियम का उल्लंघन करके हो रहा है, तो इस बारे में हम लोगों ने जनहित के कई नियम है, जैसे सेवा की गारंटी का अधिकार अधिनियम है, शिक्षा अधिनियम है, जन सूचना अधिकार अधिनियम है, इसके बारे में उन्होंने बात किया।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI के गोदाम में लापरवाही के कारण लाखों रुपए मूल्य का नमक बर्बाद होने का गंभीर मामला सामने आया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री दीपक बिरुआ ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि सरकारी संपत्ति की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। राज्य में बेटियों को बचाने और अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए रांची में PC&PNDT एक्ट के तहत राज्य स्तरीय बैठक हुई। इसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्रों और डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया। नए निर्देशों के तहत कोई भी चिकित्सक अब अधिकतम 2 ही अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार, एक सैंडल, ATIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक सैंडल ATIR न्यूज @Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और महान शिक्षाविद डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें नमन कर रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। CIP रांची ने खूंटी जिले में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या जोखिम प्रबंधन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ICSSR वित्त पोषित इस परियोजना का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता बढ़ाना है ताकि वे शुरुआती स्तर पर

0: आत्महत्या के जोखिम की पहचान कर सकें। दुमका जिले के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ श्रावणी मेला महोत्सव में इस वर्ष श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग किया जाएगा। दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा विकसित एक ई एम्बुलेंस मेले में बीमार और घायल कांवरियों का सहारा बनेगी। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने छात्रों के इस उपयोगी नवाचार की सराहना की है।
1: दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सेंटर फॉर ईवी व्हीकल्स, उसका यहाँ पे बच्चों के प्रोजेक्ट्स और बच्चों के जो अच्छे इनोवेशन था उसका एक कलेक्शन के साथ इसकी आज शुरुआत की गई और बहुत अच्छा देख के लगा कि कुछ अच्छे इनोवेशन का शुरुआत की गई।
0: रांची पुलिस के एसआईटी ने हिंदपीढ़ी, सुखदेव नगर और कोतवाली क्षेत्रों में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में शामिल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि इनके पास से लगभग 28 ग्राम ब्राउन शुगर, नकदी और वाहन जब्त किए गए हैं।
2: रांची पुलिस की टीम के द्वारा लगातार अभियान भी चलाया गया है। इसी क्रम में अलग अलग 3 जगह से ब्राउन शुगर रेड्स की गई हैं। उस टोटल 5 लोगों को रांची पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हिंदपीढ़ी थाना अंतर्गत इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र से 1 व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। लगभग 18 ग्राम जो है ब्राउन शुगर रिकवर किया गया।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के मुख्य इंडेक्स में थोड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 254 अंक गिरकर 76,840 पर आ गया, जबकि निफ्टी 90 अंक गिरकर 24,013 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपये प्रति किलो है। और अब मौसम का हाल। राज्य में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। तेज हवाओं की चेतावनी को देखते हुए विभाग ने पलामू प्रमंडल सहित 14 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। राजधानी रांची में विश्व ओलंपिक दिवस पर खेल उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग से भारतीय सेना के गुरुलाल सिंह और महिला वर्ग से ममता कुमारी विजेता बनी। मुख्य अतिथि और पूर्व ओलंपियन मनोहर टोपनो ने ओमान में अंडर 18 एशिया कप हॉकी में कांस्य पदक जीतकर लौटी झारखंड की 4 प्रतिभावान खिलाड़ियों नीलम टोपनो, खोली कुमारी, सुगम सांगा, श्रुति कुमारी और उनकी कोच करुणा पूर्ति को विशेष रूप से सम्मानित किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की मुलाकात। दोनों राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर हुई चर्चा। पश्चिमी सिंहभूम के एफसीआई गोदाम में लाखों का नमक बर्बाद होने पर मंत्री दीपक बिरुआ सख्त, उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश। भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए रांची में PCNPNDT एक्ट की राज्य स्तरीय बैठक। अब अधिकतम 2 ही केंद्रों पर सेवा दे सकेंगे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके पुण्यतिथि पर झारखंड समेत पूरा देश कर रहा है नमन। केंद्रीय मंत्रियों अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। और रांची में विश्व ओलंपिक दिवस पर खेलोत्सव का आयोजन। एशिया कप हॉकी में मेडल जीतने वाली झारखंड की 4 बेटियां सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है और आइए अब सुनते हैं अनुरंजनी के अंतर्गत उप शास्त्रीय संगीत। कलाकार हैं अनीता सेन। पहले इनसे सुनते हैं ये बंदिश।

अभी आप सुन रहे थे अनुरंजनी के अंतर्गत उपशास्त्रीय संगीत, कलाकार थी अनीता सेन। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: पेश है सुगम संगीत। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे चंद गजलें। पहले सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल थी और सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से पहले मिड डे न्यूज़, उसके बाद दोपहर समाचार।

0: 70 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की, तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमरीका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमरीका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
5: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने

0: ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। फौजी भाइयों को समर्पित कार्यक्रम जय भारती हम लेकर आ रहे हैं बस थोड़ी ही देर में।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: ஆக பாரதிய சேனா, பாரதிய சேனா.
1: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
2: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

आप सुन रहे हैं जय भारती, और अब अगला गाना सुनेंगे शंकर महादेवन, जसपिंदर नरूला और सुनिधि चौहान की आवाजों में। शंकर एहसान लॉय का संगीत है, राहत इंदौरी के बोल, फिल्म है मिशन कश्मीर।

कार्यक्रम के अगले गाने के गीतकार हैं गुलजार, ए आर रहमान का संगीत है, श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजें। फिल्म का नाम है जब तक है जान।

कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना है इरशाद कामिल का लिखा हुआ, विशाल शेखर का संगीत है, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाज़ें, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को आज नई दिल्ली में मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति ने शिबू सोरेन की ओर से उनके पत्नी रूपी सोरेन इस सर्वोच्च पुरस्कार को ग्रहण करेंगी। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र 30 जून से शुरू होगा। इस सिलसिले में बीएलओ और बीएलओ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज देवघर के मधुपुर में प्रशिक्षण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया। श्री कुमार ने एसआईआर के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और कहा कि कोई भी पात्र न छूटे और कोई अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो, इस पर आयोग का जोर है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद राज्य में 7 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आज नाफेड के नीलामी पोर्टल nefex.in का शुभारंभ हुआ। इस दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। श्री शाह ने बताया कि हाल के वर्षों में नाफेड का मुनाफा बढ़ा है। श्री शाह ने कहा कि सरकार का प्रयास खेत से किसान के खाते तक सभी व्यवस्थाओं को डिजिटल करने की ओर है। उन्होंने बिचौलियों पर अंकुश लगाने पर बल देते हुए दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दिया
1: कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74,00,000 किसानों की सेवा कर रहा है।
0: भारतीय जनसंघ के संस्थापक और महान शिक्षाविद डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज देश उन्हें नमन कर रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई राजनेताओं ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इधर राजधानी रांची में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू समेत अन्य नेताओं ने डॉ. मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को याद किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने झारखंड के 11 विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग की मंजूरी दी है। हजारीबाग के सोहराई कला के बाद अब डोकरा आर्ट को भी जीआई टैग मिला है। डोकरा आर्ट के पर्यवेक्षक शिशुपाल चंदेलिया ने इस उपलब्धि के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है।
2: लाभ तो आर्टिजन को होना ही होना है, जाहिर सी बात है कि जब जीआई टैग मिल गया तो देश विदेशों तक हमारे इस क्राफ्ट की पहचान जाएगी। आर्टिजन को लग रहा है कि नहीं, हाँ अब जीआई टैग मिल गया है तो अब प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, हमारा डिमांड आएगी तो और ज्यादा आई होगी उसकी, डोकरा क्राफ्ट और ऊपर जाएगा।
0: सरायकेला खरसावां जिले के कांडरा थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी लंबे समय से एक डकैती मामले में फरार चल रहा था। थाना प्रभारी विनोद मुर्मू ने बताया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। देवघर पुलिस ने सारठ थाना क्षेत्र से एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर के पास से करीब 1.5 किलोग्राम गांजा, दोपहिया वाहन और मोबाइल बरामद किया गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले रोशन थापा को लोक भवन में सम्मानित किया। रोशन थापा ने इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में परंपरागत व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य का मान बढ़ाया था। लोक भवन में उन्हें सम्मानित कर राज्यपाल ने उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला।

0: ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओ, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना? हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओ, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना? लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओ, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओ, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओ, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओ, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओ, अब जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओ, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओ, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों के दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओ, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800-440-5559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

सन 1980 अप्रैल का एक दिन।

0: क्या करूंगी? गमक हुआ इतर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? ओह, तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बस्सी, तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ? चल घर चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना, जल्दी कर।

0: उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।
2: बेटी तो बर्बाद हो गई।

0: बिस्तर है, इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है, मगर उसी रास्ते में

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, बेटी तू बसंती, उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको। तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगीं। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बिठा दी है। सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांज के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा।
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
1: चलो चलो चलो,
3: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।
0: और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रांची का प्रसारण। और अब पेश है रांची मेलोडीज। रांची मेलोडीज में आपको सुनवा रहे हैं ये पहला गीत आंखें फिल्म से लता मंगेशकर का गाया हुआ। रवि का संगीत है और शब्द रचना है साहिर लुधियानवी की।

तूने संग किया, तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तोहे खींच लूं, जाने ना दूं, जाने ना दूं, आँखों में बसा के आँखें मीट लूं।

लता मंगेशकर की आवाज में जुगनू फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। एसडी बर्मन का संगीत था और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। और आइए अब सुनते हैं प्रेम पुजारी फिल्म से ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। नीरज के बोल हैं, एसडी बर्मन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं रांची मेलोडीज। हसरत जयपुरी का लिखा हुआ है अगला गीत, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम कन्यादान।

रांची मेलोडीज में अगला गीत है ओपी नैयर के संगीत से सजा, एसएच बिहारी के बोल हैं, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। फिल्म का नाम एक मुसाफिर एक हसीना।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह में 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भी आज नई दिल्ली में मरणोपरांत देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। दिशोम गुरु

0: की पत्नी रूपी सोरेन राष्ट्रपति से इस सर्वोच्च पुरस्कार को ग्रहण करेंगी। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र 30 जून से शुरू होगा। इस सिलसिले में बीएलओ और बीएलओ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज देवघर के मधुपुर में प्रशिक्षण का जायजा लिया और कहा कि कोई भी पात्र न छूटे और कोई अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो, इस पर आयोग का जोर है। सरायकेला खरसावां जिले में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर आज हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पिछले 36 घंटों के दौरान जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुण्यतिथि पर राज्यभर में आज विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और अन्य नेताओं ने उन्हें बलिदान दिवस पर नमन किया। श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉ मुखर्जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। और झारखंड T20 प्रीमियर लीग JPL का आज खिताबी मुकाबला होगा। जमशेदपुर स्टीलर्स और छोटा नागपुर रॉयल्स के बीच यह फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से रांची के JSEA स्टेडियम में खेला जाएगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे मुख्य समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं क्रीड़ा जगत। संकलन और प्रस्तुति स्वर अमित अखौरी का है और कार्यक्रम की प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
2: कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: क्रीड़ा जगत। क्रीड़ा जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को अमित का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको बता दें कि आज हम आपके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। चर्चा में आज हम बात करेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच संपन्न एकमात्र टेस्ट और 3 वनडे के, जिसमें भारत ने क्लीन स्वीप किया है, इस पे चर्चा करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल राउंड अप होगा, जिसमें इस सप्ताह के मैच की चर्चा होगी। खास खास में आज हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप कैसे बिजनेस के मामले में सबसे कीमती वर्ल्ड कप है और 3 मिनट का ब्रेक कैसे मोमेंटम किलर साबित हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही खेल खबरें तो होंगी ही। दोस्तों, सबसे पहले हम बातचीत कर रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच संपन्न टेस्ट और वनडे सीरीज के। भारत ने एकमात्र टेस्ट मैच एक पारी और 300 रनों से जीती और ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत है रनों के हिसाब से। शुभमन गिल ने 126 रन बनाए इस टेस्ट मैच में। केएल राहुल ने भी शानदार पारी खेली और 100 रन बनाए। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुए शुभमन गिल और अफगानिस्तान की ओर से रहमत शाह ने भी पहली पारी में 60 रन बनाए थे। अगर हम गेंदबाज की बात करें दोस्तों, तो मानव सुधार ने पदार्पण मैच में 33 रन देकर 6 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वाशिंगटन सुंदर ने भी 36 रन देकर 4 और कुलदीप यादव ने 30 रन देकर 3 विकेट लिए। रिकॉर्ड्स की बात करें तो मानव सुधार भारत के लिए टेस्ट पदार्पण मैच में 5 विकेट लेने वाले चुनिंदा गेंदबाजों में शामिल हुए।

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन वनडे मैचेस भी हुए, जिसमें तीनों मैच भारत ने जीते। भारत ने क्लीन स्वीप किया। पहला वनडे धर्मशाला में हुआ 13 जून को, और इसमें भी भारत ने जीत दर्ज की। शुभमन गिल ने इसमें अर्धशतक मारे और वनडे में 3000 रन उन्होंने पूरे किए। बेस्ट बॉलर की अगर हम बात करें तो गुरनूर बराड ने बहुत अच्छा खेल प्रदर्शन किया और उन्होंने क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित किया। बारिश की वजह से ये मैच 25-25 ओवर का हुआ और अफगानिस्तान ने 194 रन बनाए थे। भारत ने 7 विकेट से मैच जीत ली। दूसरा वनडे लखनऊ में हुआ 17 जून को, और इसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 170 रनों से जीत दर्ज की। इसमें कप्तान गिल और ईशान किशन ने अच्छी पारी खेली। तीसरा वनडे मैच चेन्नई में खेला गया और इसमें भी भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हाँ, एक बात है कि इसमें अफगानिस्तान टीम के कप्तान हसमतुल्ला शाहिदी ने अपने ओडीआई करियर का पहला शतक लगाया। भारत ने पहले ही ओवर में 23 रन बनाकर 22 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। प्रसिद्ध कृष्णा रोहित शर्मा ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। रोहित ने प्रसिद्ध की गेंदों पर 3 कैच लपके। यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में 110 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा ने अच्छा प्रदर्शन किया और उन्होंने 79 रन बनाए। आइए अब फीफा वर्ल्ड कप राउंडअप की ओर बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप में रविवार का दिन फुटबॉल के इतिहास में दर्ज हो गया। ग्रुप एफ में ट्यूनिशिया और जापान के बीच खेला गया मैच विश्व कप इतिहास का 1000वां मैच रहा। 1930 में उरुग्वे में हुई इस प्रतियोगिता ने करीब एक सदी के सफर में कई ऐतिहासिक पल देखे हैं। फीफा के अनुसार 13 जुलाई 1930 को खेले गए विश्व कप मुकाबले से लेकर 2026 के इस संस्करण तक फुटबॉल का दायरा लगातार बढ़ता गया। इस बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा मुकाबला बनाता है। पराग्वे के मिडफील्डर मिगुएल अल्मिरोन वर्ल्ड कप में मुंह ढकने के लिए लाल कार्ड पाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। घटना ग्रुप डी के मैच के दौरान घटी, जब मिडफील्ड के पास फाउल के बाद अल्मिरोन और मर्ट मुल्डर के बीच कहासुनी हो गई और अल्मिरोन ने मुंह ढक। नए नियम के अनुसार अल्मिरोन को तुरंत लाल कार्ड दिखाकर बाहर का रास्ता दिखाया गया। नीदरलैंड्स के वर्ल्ड कप में 100 गोल पूरे हो गए और ऐसा करने वाला वह 8वां देश बन गया। नीदरलैंड्स ने वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ चौथी बार एक मैच में 5 गोल किए। डच टीम के अब टूर्नामेंट के इतिहास में 103 गोल हो गए और इस बीच मौजूदा टूर्नामेंट में 35 मैचों में 100 गोल हो चुके हैं। मैच में नीदरलैंड्स ने स्वीडन को हराया। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील ने अपनी बादशाहत का नजारा पेश किया। ब्राजील ने हैती को 3-0 से पराजित किया और इस जीत के साथ ब्राजील ने नॉकआउट के दौर में मजबूती से कदम बढ़ा लिए। इस मैच में दूसरा गोल होते ही फुटबॉल वर्ल्ड कप के इतिहास में नई कहानी लिख दी गई। ब्राजील अब फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाला देश बन गया। ब्राजील ने 241 गोल करके जर्मनी के 239 गोलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरी ओर इस हार के साथ हैती का सफर इस वर्ल्ड कप में खत्म हो गया। साल 1974 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली हैती इस टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया। ग्रुप बी में शीर्ष पर रहते हुए अमेरिका इस टूर्नामेंट के नॉकआउट में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी। पहली टीम मैक्सिको है। अमेरिका ने वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैच जीतकर नॉकआउट में प्रवेश किया है। 21 साल के एलेक्स फ्रीमैन वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के अमेरिकी खिलाड़ी बन गए। लुइस रामा के गोल के साथ ही मेजबान मैक्सिको मौजूदा विश्व कप में नॉकआउट में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। मैक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया। उसने 2 मैचों में 6 अंक हासिल करके ग्रुप ए में शीर्ष पर अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। कनाडा ने कतर को 6-0 से रौंद कर वर्ल्ड कप फुटबॉल के इतिहास में अपनी पहली जीत दर्ज की और नॉकआउट में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। कतर में 2 खिलाड़ियों को लाल कार्ड दिखाया गया, जिससे उसके खिलाड़ियों की संख्या 9 पर सिमट गई और विपक्षी टीम ने इसी का फायदा उठाकर 6 गोल दाग डाले। जोनाथन डेविड ने दर्शकों का अपार समर्थन पाकर

टिक लगाई, वर्ल्ड कप में कनाडा की ये पहली जीत है। फीफा वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-1 से करारी शिकस्त दी। इंग्लैंड ने अपने फुटबॉल इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के लगातार 3 ओपनिंग मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया। साथ ही साल 2002 के बाद यह पहला मौका है जब इंग्लैंड फीफा रैंकिंग में टॉप 15 में शामिल हो गया और उसने टॉप 15 में शामिल किसी टीम को हराया। इसके साथ ही टॉप टीमों के खिलाफ इंग्लैंड का 9 मैचों का जीत का सूखा भी खत्म हो गया। फ्रांस के कप्तान एम्बापे को विशेष सम्मान के रूप में 58 नंबर की जर्सी भेंट की गई। एम्बापे ने राष्ट्रीय टीम के लिए सर्वकालिक शीर्ष गोल स्कोरर बनने का रिकॉर्ड बनाया। एम्बापे ने इस उपलब्धि पर कहा कि मेरे लिए यह गर्व की बात है और ये एक ऐसा देश है जिसने कई महान खिलाड़ियों को आते जाते देखा है। मेसी का 200वां मैच रहा, हैट्रिक एक रिकॉर्ड 10। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अल्जीरिया को 3-0 से हराकर विजयी आगाज किया। मैच के तीनों गोल स्टार फुटबॉलर मेसी ने किया और इसी के साथ उन्होंने 10 ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो उनकी कामयाबी को दर्शाते हैं। 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले दक्षिण अमेरिकी पुरुष फुटबॉलर बने। 38 साल 357 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक बनाई, रोनाल्डो को उन्होंने पछाड़ दिया। अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप में गोल करने वाले सबसे युवा और सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी बने। वर्ल्ड कप में 16 गोल किए। सर्वाधिक गोल के जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज के ऑल टाइम रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी कर ली। वर्ल्ड कप में 24 गोल कंट्रीब्यूशन हो गए उनके। महान खिलाड़ी पेले को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, उनके 21 गोल हैं। 6 अलग अलग वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो के बाद 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। लगातार 5 वर्ल्ड कप मैचों में गोल करने वाले अर्जेंटीना के पहले खिलाड़ी हैं। किसी अफ्रीकी देश अल्जीरिया के खिलाफ मेसी की पहली हैट्रिक थी ये। अल्जीरिया वर्ल्ड कप में मेसी के खिलाफ गोल खाने वाली 11वीं टीम बनी। फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप एफ मुकाबले में जापान ने ट्यूनिशिया को 4-0 से शिकस्त दी। यह फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में 1000वां मैच था। जापान वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में 4 गोल दागने वाली पहली एशियन टीम भी बन गई। यह जापान की टीम की वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। ट्यूनिशिया की टीम नॉकआउट की रेस से बाहर हो गई। जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर 12 साल बाद यानी 2014 के बाद पहली बार नॉकआउट में जगह बनाई। जर्मनी के मैनुअल नेउर वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले गोलकीपर भी बन गए। तो दोस्तों, ये सप्ताह भर की फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की गतिविधियां थी और अब हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और खास खास में फीफा वर्ल्ड कप की ही चर्चा करेंगे। इस बार फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक ऐसा आर्थिक महाकुंभ है जो पेरिस ओलंपिक से करीब 4 गुना बड़ा है। दुनिया की लगभग 3/4 आबादी यानी करीब 600 करोड़ लोग इस आयोजन से जुड़ गए हैं। 39 दिन तक चलने वाले इतने बड़े आयोजन को लेकर दुनिया भर के ब्रांड्स पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर की कंपनियां इस वर्ल्ड कप में विज्ञापनों पर 99,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं। यह वर्ल्ड कप वैश्विक इकोनॉमी में करीब 3,86,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा और दुनिया भर में 8 लाख से ज्यादा नई नौकरियां पैदा करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका की अर्थव्यवस्था को होगा जहां सिर्फ होटल, रेस्टोरेंट और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में ही करीब 41,000 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई होगी जबकि कुल फायदा 1,62,00,000 तक होगा। विज्ञापनों की कीमत आसमान छू रही है। वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान अपना विज्ञापन दिखाने के लिए कंपनियों को लगभग 236 करोड़ रुपए तक की भारी भरकम रकम चुकानी पड़ेगी। टीवी ब्रॉडकास्टर्स की शुरुआती विज्ञापनों के लिए करीब 47 करोड़ रुपए का न्यूनतम पैकेज भी रखा गया है। फीफा को ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सरशिप और टिकटों की बिक्री से करीब 84,000 करोड़ रुपए की कमाई होने की उम्मीद है जो 2022 के कतर वर्ल्ड कप के मुकाबले में काफी ज्यादा है। इतिहास में ऐसा पहली बार है दोस्तों जब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही सभी 16 ग्लोबल स्पॉन्सरशिप डील बिक चुकी है।
आर्थिक रूप से। और एक बात और है दोस्तों कि ये प्रवासी खिलाड़ियों का एक बहुत बड़ा मंच बन गया है जिसमें 292 प्लेयर्स अपनी जन्मभूमि छोड़कर दूसरे देशों के लिए खेल रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 मैदान के साथ साथ खिलाड़ियों की नागरिकता और माइग्रेशन के दिलचस्प आंकड़ों के लिए भी चर्चा में है। 48 टीमों के 1248 खिलाड़ियों में से 292 खिलाड़ी ऐसे हैं जो उस देश के लिए नहीं खेल रहे हैं जहां उनका जन्म हुआ। टूर्नामेंट में केवल 8 टीमें ऐसी हैं जिनमें कोई विदेशी मूल का खिलाड़ी शामिल नहीं है। माइग्रेशन, पुराने औपनिवेशिक संबंधों और फीफा के बदले नियमों ने वर्ल्ड कप की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी है। आंकड़ों के लिहाज से फ्रांस सबसे आगे है और इस वर्ल्ड कप में फ्रांस में जन्मे 98 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इनमें से 76 खिलाड़ी फ्रांस की जगह किसी दूसरे देशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फुटबॉल में यह स्थिति बिल्कुल नई नहीं है दोस्तों। 1930 के पहले वर्ल्ड कप में अमेरिकी टीम में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में जन्मे खिलाड़ी शामिल थे। समय के साथ फीफा ने दोहरी नागरिकता वाले नियमों में कई बदलाव किए। पहले यूथ लेवल पर एक देश के लिए खेलने के बाद टीम नहीं बदल सकते थे, लेकिन 2004 और 2009 में अल्जीरिया की मांग पर नियमों में ढील दी गई। नए नियम के अनुसार यदि किसी खिलाड़ी ने 21 साल से पहले अधिकतम 3 प्रतिस्पर्धी मैच खेले हैं तो आखिरी मैच के 3 साल बाद वह अपनी राष्ट्रीय टीम बदल सकता है। इसके अलावा जन्म, माता पिता या दादा दादी के जन्म स्थान या संबंधित देश में लगातार 5 साल रहने के आधार पर भी टीमों को चुना जा सकता है। जमाल मुसियाला, फोलारेन बालोगन और डेक्लान राइस जैसे खिलाड़ी इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। डिएगो कोस्टा ने भी ब्राजील के लिए फ्रेंडली मैच खेलने के बाद स्पेन को चुना था। हालांकि 2004 में ब्राजील के स्ट्राइकर एल्टन को बिना किसी पारिवारिक संबंध के भारी भरकम रकम देकर कतर की नागरिकता देने की बात भी सामने आई थी। इन नियमों के चलते अब फुटबॉल फेडरेशन सही खिलाड़ियों की तलाश के लिए बेहद आधुनिक और अप्रत्याशित तरीके अपना रहा। अल्जीरिया की टीम में 50% खिलाड़ी ऐसे हैं जो विदेशी मूल के हैं। अपनी टीम में सबसे ज्यादा विदेशी मूल के खिलाड़ी शामिल करने में अल्जीरिया शीर्ष पे है जिसमें 13 खिलाड़ी हैं, जबकि हैती में 12 ऐसे खिलाड़ी हैं। पहली बार खेल रही कुराकाओ की टीम में 1 को छोड़कर सभी खिलाड़ी डच मूल के हैं। कतर की टीम में 11 खिलाड़ी अलग अलग देशों में जन्मे हुए खिलाड़ी हैं। वहीं मोरक्को ने ब्राजील के खिलाफ मैच के दूसरे हाफ में ऐसे सभी 11 खिलाड़ी उतारे जिनका जन्म मोरक्को से बाहर हुआ है। और अब खास खास में ही एक और बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और ये है 3 मिनट का ब्रेक जो मोमेंटम किलर साबित हो रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में एक नया नियम चर्चा का विषय बना हुआ है। फीफा ने टूर्नामेंट में अनिवार्य हाइड्रेशन ब्रेक की शुरुआत की है। नियम के अनुसार पहले हाफ के 22वें मिनट और दूसरे हाफ के 67वें मिनट के आसपास खेल को रोककर खिलाड़ियों को पानी पीने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। फीफा कहना है कि भीषण गर्मी और उमस से खिलाड़ियों को बचाने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। खिलाड़ी और कोच इन ब्रेक्स को मोमेंटम ब्रेक कह रहे हैं। जब कोई टीम लगातार हमले कर रही होती है और दूसरी टीम पे दबाव होता है तभी 3 मिनट का यह ब्रेक रेस्क्यू की तरह साबित होता है। अमेरिकी महिला टीम की कोच एम्मा हेस ने कहा कि यह ब्रेक उस टीम के लिए वरदान है जो अपना मोमेंटम खो रही होती है। यूएस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के एनालिस्ट माइकल जॉनसन के मुताबिक यह 3 मिनट का ब्रेक ब्रॉडकास्टर्स के लिए अलाउद्दीन का चिराग साबित हो रहा है। वर्ल्ड कप में 104 मैचों के दौरान मिलने वाले यह कमर्शियल ब्रेक बेहद मूल्यवान है। अमेरिकी बाजार में इस 3 मिनट के स्लॉट की कीमत सुपर बाउल के विज्ञापनों जितनी यानी करीब 65 से 85 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज डिफेंडर गैरी नेविल ने भी इसे चोरी छिपे लाया गया विज्ञापन ब्रेक करार दिया है जिसका फायदा अमेरिकी ब्रॉडकास्टर्स उठा रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों ने इसकी आलोचना भी की, जैसे वर्जिल वान डिक नीदरलैंड्स के कप्तान ने कहा कि टीवी पर मैच देख रहे लोगों के लिए यह अच्छा अनुभव नहीं है। जब भी ब्रेक होता है तुरंत विज्ञापन शुरू हो जाते हैं और हर मैच में इसकी अनिवार्यता सिर्फ कमर्शलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है। नेस्टर लॉरेंजो कोलंबिया के कोच कहते हैं कि कोपा अमेरिका में जब

तापमान 35 डिग्री था तब हाइड्रेशन ब्रेक समझ में आता था, अब इसकी जरूरत नहीं है। शुरुआत में कोच और खिलाड़ियों की बातचीत दिखाई जाती थी, लेकिन अब सिर्फ विज्ञापन ही चलते हैं। स्पेनिश मिडफील्डर मिकेल मेरिनो ने कहा कि कुछ मैचों में इनकी जरूरत होगी और कुछ में बिल्कुल नहीं। जिन स्टेडियम में छत बंद है और एसी है, वहां खेल को रोकना सही नहीं है। कुल मिलाकर स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन इससे एक बात तो साबित हो गया दोस्तों कि इस मोमेंटम किलर से ब्रॉडकास्टर्स को काफी फायदा हो रहा है। तो और अब हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ खास खेल खबरों से। वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और रिकॉर्ड 11 गेंदों में अर्धशतक लगाने का बन गया। इससे पहले 2006 में श्रीलंका के कौशल्य वीरांगने ने 12 गेंदों में अर्धशतक लगाए थे। ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ जब वैभव खेल रहे थे तब भारत का प्रोजेक्टेड स्कोर 935 था, हालांकि टीम इंडिया ए 377 रनों तक पहुंच गई। टेस्ट, टी20 और वनडे के फॉर्मेट तो बदले, लेकिन वैभव का अंदाज नहीं बदला। वैभव का 2024 में अंडर 19 टेस्ट में 58 गेंद पर शतक का रिकॉर्ड है। यह किसी भारतीय का सबसे तेज शतक है। रिकॉर्ड इंग्लैंड के मोइन अली के नाम था। 2025 में 35 गेंद में आईपीएल में शतक बनाया, इसमें रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। 36 गेंदों के साथ तीसरे स्थान पर वैभव रहे। लिस्ट ए में सबसे तेज 150 रन का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा 72 छक्कों का रिकॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी ने बनाया। भारत ने टीमों की ट्राई सीरीज के फाइनल में मेजबान श्रीलंका को 66 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में युवा भारतीय टीम ने 377 रन बनाए। सीरीज में पहली बार 350 का आंकड़ा भारतीय टीम ने पार किया। जवाब में श्रीलंका की टीम 47.1 ओवर में 311 रन पर सिमट गई। 15 साल के युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम की जीत के हीरो रहे। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 10 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 94 रनों की आतिशी पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच वैभव ने केवल 11 गेंद में लिस्ट ए क्रिकेट की सबसे तेज 50 लगाने का रिकॉर्ड बनाया। दाम्बुला के मैदान पर मेजबान टीम ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी का न्योता दिया था, लेकिन वैभव और प्रियांश की ओपनिंग जोड़ी ने 9 ओवर के भीतर 132 रनों की साझेदारी कर विरोधी कप्तान के इस फैसले को गलत साबित। इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा ने पहले ऋतुराज गायकवाड़ और फिर कुमार सागर के साथ अर्धशतकीय साझेदारियां निभाकर टीम को 300 रनों के करीब पहुंचाए। अंत में बिपराज निगम और अनुकूल रॉय ने मजबूत फिनिश दिखाते हुए भारतीय टीम को 377 के बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने उतरे 10 में 7 बल्लेबाजों ने 25 से अधिक का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत खराब रही। टीम ने पावर प्ले के भीतर 75 रन पर अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया। हालांकि सदीरा समरा विक्रमा ने अर्धशतक लगाकर टीम को चेज करने में थोड़ी दूर तक साथ रखा, लेकिन उनके पवेलियन लौटने के बाद टीम लगातार अंतराल पर विकेट गंवाती रही और लक्ष्य से काफी दूर हो गई। बानुजा सहान 62 रन बनाए और टॉप स्कोरर रहे। टीम के कुल 9 बल्लेबाज 15 रन के आंकड़े तक पहुंचे, लेकिन सिर्फ 2 ने अर्धशतक लगाए। वैभव ने खेली सीरीज की सबसे बड़ी पारी। पहली बार टीम इंडिया के लिए 50 ओवर के फॉर्मेट खेल रहे हैं। वैभव इस ट्राई सीरीज के लिए ग्रुप स्टेज में अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे थे। 4 ग्रुप मैचों में उनके बल्ले से सिर्फ 117 रन निकले थे। इस दौरान उन्होंने हर बार दहाई का स्कोर किया, लेकिन एक बार भी 50 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके थे। हालांकि सीरीज की सबसे बेहतरीन पारी उन्होंने फाइनल के लिए बचा रखी थी। उन्होंने 100 ओवर के मुकाबले का नतीजा अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से शुरुआती 9 ओवर में तय कर दिया। फाइनल में खेले गए 94 रन की पारी की बदौलत उन्होंने सीरीज का अंत 5 मैचों में 200.95 की स्ट्राइक रेट और 42.20 की औसत के साथ 211 रन बनाकर किया। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया। 14 जुलाई से 3 मैच की सीरीज होगी। बुमराह 3 साल बाद इस फॉर्मेट में खेलेंगे। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए 15 सदस्यीय वनडे टीम की घोषणा की है और सबसे चौंकाने वाला फैसला युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को बाहर रखना है। उन्होंने अपने पिछले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 110 नाबाद रन बनाए थे और यह उनके 6 मैच के वनडे करियर का दूसरा शतक था। दरअसल टीम इंडिया 2027 में दक्षिण
अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अपने सबसे मजबूत टीम उतार रही है। इसी रणनीति के तहत विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की वनडे स्क्वाड की वापसी हुई है। अंतिम पारियों में शतक जड़ चुके 3 बैटर भी इस टीम में शामिल नहीं है। भारतीय टीम में इस समय बल्लेबाजों की बहुत कड़ी प्रतियोगिता है और अपनी अंतिम वनडे पारी में शतक जमा चुके 3 बल्लेबाज टीम का हिस्सा इस बार इंग्लैंड के खिलाफ नहीं है। यशस्वी के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ने भी अपनी पिछली वनडे पारियों में शतक जड़े थे, लेकिन वे टीम में जगह नहीं बना सके। कोहली को मैदान पर उतारने के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। अगले हफ्ते सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कोहली का फिटनेस असेसमेंट होगा। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट नहीं है, इसलिए उन्हें टीम में जगह नहीं मिली है। बुमराह 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद पहली बार वनडे खेलेंगे। वहीं पिछली 3 घरेलू सीरीज से बाहर रहे अक्षर की वापसी हुई है। बुमराह ने तेज गेंदबाज प्रिंस यादव की जगह ली, जबकि अक्षर ने स्पिनर हर्ष दुबे को रिप्लेस किया। ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 253 रन के विशाल अंतर से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। 463 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लिश टीम दूसरी पारी में महज 209 रन पर सिमट गई। पांचवे दिन 182 पे 5 विकेट से आगे खेल रहे इंग्लैंड ने मात्र 1 घंटे के भीतर ही घुटने टेक दिए। जीत के हीरो तेज गेंदबाज मैट हेनरी रहे, जिन्होंने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मैच में 11 विकेट चटकाए। कार्यवाहक कप्तान जो रूट का संघर्ष भी नाकाफी रहा। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 391 और दूसरी पारी में 362 रन बनाए थे। इंग्लैंड पहली पारी में 291 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की हार इतनी जल्दी हुई कि सरे काउंटी ने दर्शकों को टिकट का 50% रिफंड करने का ऐलान किया। महिला नेशंस का फाइनल में भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया। इसके साथ ही भारत ने अगले सीजन की FIH प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली। मैच में भारत के लिए नवनीत कौर ने 4th और सुनेलिता टोप्पो ने 15वें मिनट में गोल दागे। पूरे टूर्नामेंट में अजय रहने वाली भारतीय टीम का यह दूसरा नेशंस कप खिताब है। दीपिका 6 गोल के साथ संयुक्त शीर्ष स्कोरर रही। इस शानदार सफलता हॉकी इंडिया ने हर खिलाड़ी को 3 लाख और सपोर्ट स्टाफ को 1.5 लाख रुपए की नाम देने की घोषणा की है। दोस्तों, पर्सनालिटी में आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर की, जिन्होंने हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय महिला T20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने रविवार को इतिहास रच दिया। साउथ अफ्रीका खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में उतरती ही वे 200 इंटरनेशनल T20 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गईं। पुरुष क्रिकेट में भी यह मुकाम किसी ने अभी तक नहीं छुआ है। महिला क्रिकेट में हरमन के बाद सर्वाधिक इंटरनेशनल T20 न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स ने खेले हैं, जबकि पुरुषों में सर्वाधिक T20 आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग ने खेले हैं 162 मैच। हरमन इस बार अपना 10वां T20 वर्ल्ड कप खेल रही हैं। साल 2009 में जब वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आई, तब महिला क्रिकेट की स्थिति आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस समय महिला खिलाड़ियों के पास न तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे और न ही उनके सभी मैचों का टीवी पर प्रसारण होता था। सुविधाएं भी न के बराबर थी, लेकिन अपनी जिद और मेहनत के दम पर हरमनप्रीत ने हर चुनौती को पार किया। शुरुआत से ही हरमनप्रीत को गेंद को जोर से हिट करना और बाउंड्री के पार भेजना पसंद था। उनके आदर्श वीरेंद्र सहवाग थे और उनकी आक्रामकता हरमनप्रीत के खेल में साफ नजर। 2017 के वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी 171 रनों की नाबाद तूफानी पारी ने भारतीय महिला क्रिकेट की दिशा ही बदल दी और इस पारी ने उन्हें रातों रात पूरे देश की रोल मॉडल बना दिया। 37 साल की हरमनप्रीत विदेशी T20 लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बनी थी। भारत में वीमेन्स प्रीमियर लीग में भी उन्होंने मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए 4 सीजन में 2 बार अपनी टीम को चैंपियन बनाया। हाल ही में कुछ हफ्ते पहले उनके संन्यास के बारे में पूछा गया था तो उनके चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने साफ कर दिया कि फिलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। 2016 में कप्तान बनने के बाद हरमनप्रीत ने भारतीय टीम को नई पहचान दी। उनकी कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट के सबसे साहसिक फैसलों में एक लिया गया, मिताली राज को प्लेइंग 11 से बाहर करना। बॉलिंग कोच आविष्कार सालवी के मुताबिक युवा खिलाड़ियों को निखारने में हरमन का कोई जवाब नहीं है। हरमन के नेतृत्व में टीम को निडर क्रिकेट खेलना सिखाया गया। कई बार उनका गुस्सा भी चर्चा में रहा, लेकिन हरमन कह चुकी हैं कि आक्रामकता उनके स्वभाव का हिस्सा है।
और दोस्तों इसी के साथ अब हमारा यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं प्रभु शरण, और इसी के साथ अपने दोस्त अमित को विदा दीजिए।

0: नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे क्रीड़ा जगत, संकलन एवं प्रस्तुति स्वर था अमित अखौरी का, प्रस्तुति व संयोजन था प्रभु शरण का। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दिए चलते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण के माध्यम से। अब से थोड़ी देर बाद 4:35 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम 5 बजे आप सुन पाएंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। पर हम लेकर आएंगे युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म संगीत इतिहास में आज का दिन भारत और विश्व के संदर्भ में, साथ ही रोचक तथ्यों की जानकारी मिलेगी और करंट अफेयर्स तो होंगे ही, प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडे। 5:30 पर औद्योगिक प्रसारण कार्यक्रम सुनिए श्रमिक लोक। इसके अंतर्गत चर्चा सुनिए गहरी और आरामदायक नींद के लिए आसान आसन, विकास और लोक कल्याण में सिविल सेवा की भूमिका। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा और वैचारिक क्रांति के अग्रदूत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भारत की बेटियों को सशक्त बनाने का दशक। साथ ही आप रंजना श्रीवास्तव से सुनेंगे स्वरचित कविताएं भी। प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की।

शाम 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 6:02 पर हम लेकर आएंगे किसान वाणी कार्यक्रम। इसके अंतर्गत चर्चा होगी औषधीय पौधों की खेती। आज की बात सेगमेंट में आप सुनेंगे खेत बचाओ अभियान। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रामशंकर प्रसाद सिंह, जो कि जिला कृषि पदाधिकारी हैं रांची के। इनसे बातचीत करेंगे मनोज कुमार। साथ ही नई उम्र की नई फसल भी आप सुनेंगे। भेंटवार्ता होगी बेल वाली सब्जियों में पौध संरक्षण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आराधना सेन, सह प्राध्यापक उद्यानिकी महाविद्यालय खुटपानी चाईबासा की। प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। 6:32 पर आप सुनेंगे हमारी दुनिया कार्यक्रम। इसके अंतर्गत चर्चा होगी मोबाइल से बच्चों को दूर रखें। साथ ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप अपने पसंद के लोकगीत भी सुन पाएंगे। कार्यक्रम की प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की होगी।

शाम 7:15 पर आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम आप सुनेंगे खड़िया भाषा में। इसके अंतर्गत चर्चा सुनिए, शिक्षा से खुलता विकास का द्वार, साथ ही मिशन इंद्रधनुष के संदर्भ में भी कुछ जानकारियां होंगी। प्रस्तुत करता होंगे गौरव कुमार पांडे।

7:45 पर अंग्रेजी भाषा कार्यक्रम में आप सुनेंगे रविंद्रनाथ टैगोर एंड हिज लिटरेरी वर्क्स। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अनन्या बोस। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की। रात्रि 8 बजे का वक्त होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। रात्रि 10 बजे हम लेकर आएंगे कार्यक्रम गूंजे झारखंड।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से। आवाजें हैं सनम पुरी और नीति मोहन की, शब्द रचना है अन्विता दत्त की, संगीत है विशाल और शेखर का।

ये फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से सांझ सरगम कार्यक्रम के अंतर्गत। आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं फिल्म बादल का ये युगल गीत सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में। बोल है समीर के, धुन है अनु मल्लिक की।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म बॉर्डर का ये गीत, रूप कुमार राठौर की आवाज में, शब्द हैं जावेद अख्तर के, संगीत अनु मल्लिक का।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। अब से थोड़ी देर बाद नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आज नागरिक अलंकरण समारोह का दूसरा चरण आयोजित होगा। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजेंगी। मौके पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। दिशोम गुरु की पत्नी रूपी सोरेन राष्ट्रपति से इस सर्वोच्च पुरस्कार को ग्रहण करेंगी। राज्य में SIR की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र 30 जून से शुरू होगा। इस सिलसिले में BLO और BLO प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज देवघर के मधुपुर में प्रशिक्षण का जायजा लिया और कहा कि कोई भी पात्र न छूटे और कोई अपात्र मतदाता सूची में शामिल न हो, इस पर आयोग का जोर है। पाकुड़ जिले में मुहर्रम का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन की ओर से आज मॉक ड्रिल किया गया। इसके अलावा उपायुक्त मेघा भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के अलावा साफ सफाई, विद्युत और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। गुमला वन प्रमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सलगी वन क्षेत्र में करीब 20 एकड़ से अधिक वन भूमि को वन विभाग ने अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। और मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों में गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रांची, साहिबगंज, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त नीरल।
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका बिरवा।
0: और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारी जानकारियाँ और कुछ प्यारे गीत। तुम्हारी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।
1: दोस्तों, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई ऐसी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम अक्सर सामान्य मान लेते हैं। अस्पतालों में मिलने वाले स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों की शिक्षा, स्वच्छता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर रिलीफ या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ, ये सब पब्लिक सर्विस का हिस्सा है। इन्हीं सेवाओं के महत्व और उनसे जुड़े लोगों के योगदान को सम्मान देने के लिए हर साल 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है।
0: बिल्कुल प्रियंका, और यह दिवस हमें याद दिलाता है कि किसी भी देश की प्रगति केवल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या तकनीकी विकास से नहीं होती, बल्कि ऐसे ये सार्वजनिक सेवाओं से भी होती है जो सीधे आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाती हैं। एक अच्छी पब्लिक सर्विस लोगों और प्रशासन के बीच विश्वास को मजबूत करती है और विकास को समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: हाँ दोस्तों, जनसेवा केवल एक नौकरी नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और समर्पण का प्रतीक है। यही कारण है कि दुनिया भर में इस दिन उन लोगों के प्रयासों को सराहा जाता है जो अपने कार्यों के माध्यम से समाज को बेहतर बनाने में योगदान दे रहे हैं।
0: आज के दौर में तकनीक यानी टेक्नोलॉजी ने पब्लिक सर्विसेज को और भी आसान और प्रभावी बनाया है। ऑनलाइन सर्विसेज, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से कई सरकारी सुविधाएं लोगों तक पहले से अधिक तेजी और ट्रांसपेरेंसी के साथ पहुंच रही हैं। इससे न केवल नागरिकों का समय बच रहा है बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है।
1: हाँ नीरल, स्वास्थ्य कर्मी हो, शिक्षक हो, पुलिस कर्मी हो, सफाई कर्मी हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी, हर व्यक्ति अपने स्तर पर समाज को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से नेचुरल डिजास्टर्स और क्राइसिस के समय इन सेवाओं का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है।
0: प्रियंका, इसके साथ ही नागरिकों की भागीदारी और जागरूकता भी एक मजबूत पब्लिक सर्विस व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। जब लोग अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहते हैं तब विकास की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनती है।
1: जी दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे हमें यह संदेश देता है कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में पब्लिक सर्विस की अहम भूमिका है। बेहतर पब्लिक सर्विस लोगों के जीवन को आसान बनाने के साथ साथ एक इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट और एक डेवलप्ड सोसाइटी के निर्माण में अपना योगदान देता है। तो आइए इस अवसर पर हम सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें जो दिन रात समाज की सेवा में लगे हुए हैं। दोस्तों, बातें और भी करेंगे लेकिन अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: கடற்படை கட்டணா ஸ்வயம் ஹி கட்படை பாரதிய சேனா.
1: प्रियंका, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे समाज में कुछ पहचानें ऐसे होती हैं जो व्यक्ति के नाम से बड़ी बन जाती हैं?
2: बिल्कुल, और उनमें से एक है विधवा महिलाएं, जिनकी पूरी पहचान उनके जीवन की एक घटना तक सीमित कर दी जाती है।
1: यही बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। किसी पुरुष के निधन के बाद लोग अक्सर पूछते हैं, अब घर कैसे चलेगा? लेकिन शायद ही कोई पूछता है, अब उनका मन कैसे संभलेगा?
2: सही कहा। और सोचने वाली बात यह है कि विधवा होना केवल एक व्यक्तिगत क्षति नहीं है, कई बार यह सामाजिक चुनौतियों की शुरुआत भी बन जाती है। अचानक लोगों का व्यवहार बदल जाता है, अपेक्षाएं बदल जाती है, यहाँ तक कि महिला की अपनी इच्छाओं को भी अलग नज़र से देखा जाने लगता है।
1: इसलिए हर वर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल संवेदना व्यक्त करना नहीं, बल्कि उन लाखों महिलाओं की आवाज़ को सामने लाना है जो अपने परिवारों और समुदायों की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अक्सर अनदेखी रह जाती है।
2: और हमें यह भी समझना होगा कि विधवा महिलाओं को केवल सहायता की ज़रूरत नहीं होती, अवसरों की भी ज़रूरत होती है। शिक्षा, रोजगार, संपत्ति पर अधिकार और सामाजिक सम्मान, ये किसी एहसान के विषय नहीं है, बल्कि

0: कि उनके अधिकार हैं।
1: कभी कभी हम अनजाने में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उन्हें और अलग थलग महसूस करा सकते हैं, जबकि शायद सबसे ज़रूरी है उन्हें उसी नज़र से देखना जिस नज़र से हम किसी भी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, उनकी क्षमताओं, सपनों और व्यक्तित्व के साथ।
0: बिल्कुल, क्योंकि किसी का जीवन एक रिश्ते के समाप्त हो जाने से समाप्त नहीं हो जाता। दुख अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ नए निर्णय, नई भूमिकाएं और नए सपने भी होते हैं।
1: आज के दिन हमें यह याद रखना चाहिए कि सम्मान का अर्थ केवल सहानुभूति नहीं, सम्मान का अर्थ किसी व्यक्ति को उसकी पूरी पहचान के साथ स्वीकार करना है।
0: और शायद यही अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस का सबसे बड़ा संदेश है, किसी महिला को उसकी वैवाहिक स्थिति से नहीं, उसकी इंसानियत, उसकी मेहनत और उसके अस्तित्व से पहचाने। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं इतिहास में आज के दिन के बारे में। आज ही के दिन 1757 को हुए बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत की और देश के इतिहास की दिशा बदल दी।
1: 23 जून 1868 को अमेरिकी आविष्कारक क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स को आधुनिक टाइपराइटर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया, जिसने लेखक और संचार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया।
0: 1894 को पेरिस में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की गई। इसी संस्था ने आधुनिक ओलंपिक खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी संभाली और विश्व खेलों को नई पहचान दी।
1: इसी दिन 1961 को अंटार्कटिका ट्रीटी संधि प्रभाव में आई, जिसके तहत अंटार्कटिका महाद्वीप का उपयोग केवल शांतिपूर्ण और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए सुनिश्चित किया गया।
0: 2016 में ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में लोगों ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला किया। ब्रेक्सिट के नाम से मशहूर इस फैसले का असर पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ा।
1: हर वर्ष 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज और राष्ट्र के विकास में लोक सेवाओं के योगदान को सम्मानित करना है। तो दोस्तों, बातें तो और भी होती रहेंगी, अभी हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: उम्मीद करते हैं आपने वह गीत को एंजॉय किया होगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मानव दिमाग खुद दर्द महसूस नहीं कर सकता, इसीलिए दिमाग की सर्जरी को होश में रखकर भी की जा सकती है। हम अपनी आवाज़ गलत सुनते हैं। हाँ दोस्तों, जो आवाज़ हमें खुद की लगती है, वो असल में दूसरों की सुनी हुई आवाज़ से अलग होती है, क्योंकि बोलने समय आवाज़ केवल हवा के ज़रिए नहीं बल्कि हमारे सिर की हड्डियों के ज़रिए भी कान तक पहुँचती है। इसीलिए हमें अपनी आवाज़ रिकॉर्डिंग में असली आवाज़ से अलग लगती है।
3: इसके अलावा दोस्तों, धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह समान नहीं है। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। इसी वजह से कहीं वजन बहुत हल्का या भारी महसूस हो सकता है। नियमित पढ़ने से ध्यान और कल्पना शक्ति मजबूत होती है। यह दिमाग को वैसे ही सक्रिय रखता है जैसे चलता हुआ शरीर।
2: और दोस्तों, दुनिया में किसी न किसी हिस्से में हर समय लोग ऑनलाइन रहते हैं, इसीलिए इंटरनेट पर गतिविधि 24 घंटे चलती रहती है।
3: सहारा हमेशा रेगिस्तान नहीं था। हजारों साल पहले यह इलाका नदियों और झीलों से भरा हुआ था। पृथ्वी के जलवायु चक्र बदलने से यह धीरे धीरे सूखकर रेगिस्तान बन गया।
2: और दोस्तों, आइए अब जानते हैं, बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। जब हम संवेदनशीलता की बात करते हैं तो अक्सर इसे केवल सहानुभूति समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में संवेदनशीलता का अर्थ है किसी के अनुभवों को समझने की कोशिश करना और उसके अनुसार अपने व्यवहार को ढालना।
3: बिल्कुल प्रियंका, और महिलाओं के संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कई बार भेदभाव बड़े फैसलों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में छिपा होता है। जैसे किसी महिला की बात को बीच में काट देना, उसके निर्णयों को कम महत्व देना या उसकी उपलब्धताओं को सामान्य मान ना देना।
2: हाँ नीरल, सही कहा। संवेदनशीलता की शुरुआत घर से होती है। जब बेटी और बेटे दोनों की राय को समान महत्व दिया जाता है, जब घरेलू जिम्मेदारियों को केवल महिलाओं का काम नहीं माना जाता, तब एक सकारात्मक सोच विकसित होती है।
3: और कार्यस्थलों पर भी यही बात लागू होती है। एक संवेदनशील माहौल वह है जहां महिलाओं को केवल अवसर ही नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का एहसास भी मिले, जहां उनकी योग्यता को उनके लिंग के चश्मे से नहीं बल्कि उनके काम के आधार पर देखा जाए।
2: मुझे लगता है कि संवेदनशीलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है भाषा। हम जो शब्द चुनते हैं वे समाज की सोच को भी आकार देते हैं। कई बार मजाक के नाम पर कई बार बातें कह दी जाती है या रूढ़िवादी टिप्पणियां किसी के आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती हैं।
3: बिल्कुल, इसलिए यह ज़रूरी है कि हम अपने शब्दों और व्यवहार दोनों पर ध्यान दें। संवेदनशीलता का मतलब किसी को कमज़ोर समझना नहीं बल्कि उसके अधिकारों, गरिमा और अनुभवों का सम्मान करना है।
2: और जब समाज महिलाओं के प्रति संवेदनशील होता है तो उसका लाभ केवल महिलाओं को नहीं मिलता बल्कि परिवार मजबूत होते हैं, कार्यस्थल बेहतर बनते हैं और समाज अधिक न्यायपूर्ण और संतुलित बनता है।
3: दरअसल, एक प्रगतिशील समाज की पहचान केवल उसकी तकनीकी या आर्थिक उपलब्धताओं से नहीं होती बल्कि इस बात से होती है कि वह अपने प्रत्येक नागरिक विशेषकर महिलाओं के साथ कितना सम्मानजनक और संवेदनशील व्यवहार करता है। तो आइए आज हम संकल्प लेते हैं कि हम महिलाओं की के सम्मान करेंगे। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने अगले
2: टॉपिक की ओर और जानते हैं कुछ करंट अफेयर्स। एन मुरली को द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया।
3: एनएसई ने 11 नए सेक्टर आधारित इंडेक्स लॉन्च किए हैं जिनमें निफ्टी पावर और रिटेल शामिल है। अब कुल इंडेक्स की संख्या 34 हो गई है। जगन्नाथ मंदिर देश का पहला ऐसा मंदिर बन गया है जिसे ट्रेडमार्क मिला है। किसी भारतीय धार्मिक स्थल के लिए पहली बार श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने मुख्य शब्दों और प्रतीकों के लिए ट्रेडमार्क सुरक्षित हासिल की है।
2: और दोस्तों, यूएई ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई। ऐसा करने वाला यूएई अब पहला अरब देश बन गया है। दोस्तों, बातें तो आपसे और भी करनी थी लेकिन अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। तो अपनी दोस्त प्रियंका बिरवा
3: और नीरल को
2: दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवाणी आकाशवाणी का, ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कामगार बंधुओं का दैनिक कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: नमस्कार और जोहार है हमारे सभी उन मेहनत कश साथियों को, जिनके हाथों की लकीरें भले ही पसीने से मिट जाती हो, लेकिन उनकी मेहनत इस देश की तरक्की की नई लकीरें लिखती है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने लोकप्रिय कार्यक्रम श्रमिक लोक में, और आज आपके साथ है आकांक्षा और मेरे साथ है योगेश्वर। नमस्कार योगेश्वर, आपको
1: सभी श्रमवीर साथियों को योगेश्वर का सप्रेम नमस्कार, और आकांक्षा आपको भी नमस्कार। आकांक्षा, मौसम ने तो करवट ले ली है,
0: बिल्कुल,
1: और मौसम ने दस्तक भी दे दी है। तो ऐसी स्थिति में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और खान पान पर विशेष ध्यान देना है, ताकि हम सभी स्वस्थ रहें। और आज वह कर्मयोगी और राष्ट्र निर्माता हैं जिनके बिना यह दुनिया एक दिन भी चल नहीं सकती।
0: बिल्कुल हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा योगेश्वर। हमारे साथी स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे, हमारी तो यही कामना रहती है। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ खाना पीना ही नहीं साथियों, बल्कि एक अच्छी नींद और नियमित योग भी उतना ही जरूरी है। ये तीनों मिलकर एक स्वस्थ जीवन शैली बनाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा कांचा, गहरी और आरामदायक नींद हमारे साथियों के लिए बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: और इसके लिए योग के कुछ आसन हैं जिन्हें ये अपने रोज की दिनचर्या में शामिल करें तो नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके लिए आप विपरीत करणी आसन कर सकते हैं। ये थके हुए पैरों को आराम देता है और शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने योगेश्वर। इस आसन को करने के लिए साथियों, आप अपने घुटनों के बल बैठ जाएं और फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकें, सिर को जमीन पर टिकाएं, हाथों को आगे फैलाकर रखें। 2 से 3 मिनट तक इसी स्थिति में गहरी सांसें लें। सुप्त बुद्ध कोणासन भी एक बहुत ही अच्छी आसन है, जो जांघों और कुल्हों के खिंचाव को कम करके मानसिक थकान को भी मिटाती है।
1: हाँ साथियों, इस आसन के लिए आपको पीठ के बल लेटना होगा, अपने घुटनों को मोड़ें और दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं, घुटनों को जमीन की तरफ ढीला छोड़ दें, आराम से लेटे रहकर 2-3 मिनट गहरी सांसें लें।
0: हाँ बिल्कुल साथियों, बालासन भी एक बेहद ही शांत और आरामदायक मुद्रा है साथियों, जो पीठ, कंधों और गर्दन के तनाव को दूर करती है। इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाए, अब सांस छोड़ते हुए आगे झुके और सिर को जमीन पर टिकाए
1: और हाथों को आगे फैला कर रखें। 2 से 3 मिनट तक इसी स्थिति में गहरी सांस लें। और हाँ, भ्रामरी प्राणायाम के लिए बिस्तर पर लेट जाएं, अंगूठे या पहली उंगली से कानों को बंद करें, नाक से गहरा सांस लें और सांस छोड़ते समय जो भौरे की तरह भू की आवाज निकाले, इसे सोने से पहले 5 से 7 बार कर सकते हैं। और सभी आसनों के अंत में गहरी और शांतिपूर्ण नींद में जाने के लिए श्वासासन करें।
0: बिल्कुल, और इसके लिए साथियों पीठ के बल लेट जाए। श्वासन के लिए आपको पीठ के बल लेटना है और पैरों के बीच थोड़ी दूरी रखना है, हाथों को शरीर से थोड़ा दूर रखें और हथेलियां आसमान की तरफ खुली रखें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें।
1: इन आसनों को करते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखें, किसी प्रशिक्षु से प्रशिक्षण लेकर उनकी देखरेख में करें। आसन करने में तकलीफ हो रही हो तो आसन का चुनाव अपने सुविधानुसार कर सकते हैं। रात को सोने से पहले या दिन में ये आसन करने से दिमाग शांत होता है और नींद भी अच्छी आती है।
0: बिल्कुल, और योग के साथ साथ साथियों मधुर संगीत मिल जाए तो सोने पे सुहागा है ना योगेश्वर। तो संगीत सुनने से भी थकान दूर होती है, तनाव भी कम होता है। तो आइए सुनते हैं एक गीत।

हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से

0: जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: अब बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। आकांक्षा, हमारे देश में करोड़ों लोग हैं और सभी की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं।
3: बिल्कुल।
2: समाज में रहने वाले सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें एक सुरक्षित माहौल मिले। सरकार हर एक व्यक्ति के पास नहीं जा सकती है, लेकिन चाहती है कि सभी का विकास और कल्याण हो, और ऐसे में सिविल सेवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने योगेश्वर। सिविल सेवाएं किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की एक रीढ़ होती है, जो नीतियों को जमीन पर उतारने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करती है। विकास और लोक कल्याण की बात करें तो सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और योजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी नीतियों को जिला और ग्रामीण स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी सिविल सेवकों की ही होती है।
2: बिल्कुल, और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के सबसे गरीब और कमजोर वर्गों तक राशन, पेंशन और स्वास्थ्य से संबंधित लाभ बिना किसी बाधा के उन तक पहुंच सके। सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की निगरानी भी करना उनका कार्य है।
3: बिल्कुल, और स्वयं सहायता समूह, वित्तीय साक्षरता और सरकारी ऋण योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के हाथों होती है, और साथ ही विकास के लिए शांति और कानून व्यवस्था भी अनिवार्य होता है, जो कि सिविल सेवाएं समाज में सुरक्षा का माहौल बनाती है।
2: और साथियों, सिविल सेवक सीधे जनता के बीच काम करते हैं, इसीलिए इन्हें वास्तविक समस्याओं का सही अनुभव होता है, और बहुत बार सूखा, महामारी, बाढ़ या अन्य किसी भी संकट के समय ये फ्रंट लाइन कहें कि हम सामने रह करके राहत और पुनर्वास का कार्य का नेतृत्व भी करते हैं। साथियों, विकास और लोक कल्याण में इनकी भूमिका सराहनीय है, और आज हम इन्हें इसीलिए याद कर रहे हैं क्योंकि हर साल 23 जून यानी आज के ही दिन संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा सिविल दिवस मनाया जाता है।
3: बिल्कुल साथियों, यह दिन समाज के विकास में लोक सेवकों के बहुमूल्य योगदान को सराहने और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए समर्पित है, और आज सिर्फ पुरुष ही नहीं साथियों, महिलाएं भी इसे अपने कैरियर के रूप में अपना कर देश के विकास को प्रगति की ओर ले जा रही हैं। आज महिलाएं सिविल सेवा जैसे कठिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है।
2: हाँ, बात बिल्कुल सही है, और यही नहीं, आज हमारे देश की बेटियां हर क्षेत्र में ही अपना कर्तव्य निभा रही हैं, चाहे देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाना हो या देश की रक्षा करने की बात हो। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में हमारे देश की बेटियों ने ही जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाया था।
3: बिल्कुल सही कहा आपने योगेश्वर। तो श्रमिक साथी, आप भी अपनी बिटिया के भविष्य को उज्जवल बनाइए। सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लाभ लीजिए। 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी,
2: और इस योजना का उद्देश्य है साथियों, हर लड़की को स्कूल तक पहुंचाना और उसकी शिक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं के अस्तित्व, स्वास्थ्य और सुरक्षा की भी रक्षा करना, बाल लिंग अनुपात में सुधार करना, साथ ही लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना ताकि वह समाज में बराबरी का हक पा सके।
3: बिल्कुल, और आपको बता दें साथियों, इस अभियान के एक दशक से अधिक के सफर में देश के सामाजिक ढांचे में बड़े सकारात्मक बदलाव हुए हैं। आज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्रों में लड़कियों के दाखिले लगभग आधे तक पहुंच गए हैं। बेटियों के लिए सैनिक स्कूलों के साथ साथ भारतीय सेना में कॉम्बैट भूमिकाओं के द्वार भी खोल दिए गए हैं साथियों।
2: हाँ, और इस अभियान को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना के तहत बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी के खर्च के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में विशेष बचत खाता खोलने की सुविधा, और PCNPNDT एक्ट, लिंग चयन और अवैध भ्रूण परीक्षण के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी शामिल है।
3: बिल्कुल साथियों, बेटी है तो कल है।

0: शिक्षा से ही हर समस्या का हल है। आप अपनी बिटिया को पढ़ाएं और अपनी देश का नाम अपनी बिटिया के नाम से रोशन करें, है ना योगेश्वर?
1: और जब बात हो रही है महिलाओं की, तो आइए साथियों सुनते हैं स्वरचित कविताएं कवित्री रंजना श्रीवास्तव से।
2: कविता का शीर्षक है एक पौधा एक उम्मीद। वन महोत्सव मनाए हम, पल पल प्रकृति बचाए हम, पेड़ों की ये देखो महानता, खुद धूप में है खड़ा रहता। पेड़ों की ये देखो महानता, खुद धूप में है खड़ा रहता, पर हमको छांव है देता, कभी नहीं आराम ये करता। पेड़ों की ये शान तो देखो, पेड़ों की ये आन तो देखो, पेड़ ही हमें जीवन देते हैं, लेकिन हमसे कुछ नहीं लेते हैं। पेड़ों को काट कर करो ना भूल, क्योंकि हमें ये देते हैं फल फूल। इन पेड़ों को देखकर शीतल छाया, भूल जाओगे जीवन की महामाया, भूल जाओगे जीवन की महामाया। पेड़ों की ये आन तो देखो, पेड़ों की ये शान तो देखो, पेड़ बहुत गुण वाले हैं, इससे ही हरियाली है। पेड़ बहुत गुण वाले हैं, इससे ही हरियाली है। पेड़ हमें देते हैं स्वच्छ वायु, पेड़ हमें देते हैं लंबी आयु, जो स्वयं सजग हो जाएं हम तो नित नित पेड़ लगाएं हम, जो स्वयं सजग हो जाएं हम तो नित नित पेड़ लगाएं हम। पेड़ों की यह आन तो देखो, पेड़ों की यह शान तो देखो। दूसरी कविता का शीर्षक है चिंगारी। निर्मल गीतों में तूने स्वार्थ के शब्द घोले, चाहा की प्रकृति तेरे संकेतों पर ही टोले, चाहा की प्रकृति तेरे संकेतों पर ही टोले। अधर प्रेम पर घृणा पड़ रही है भारी, अपमानित हो रही है अब सड़कों पर नारी। अधर प्रेम पर घृणा पड़ रही है भारी, अपमानित हो रही है अब सड़कों पर नारी। जल रहा है रोम जब बांसुरी पर छेड़ू तान, कहो न मेरी प्रेयसी कैसे रचू मैं गान, कहो न मेरी प्रेयसी कैसे रचू मैं गान। फ्रेसी हंसी ठठाकर बोली सुन ए नदान, संकट है क्योंकि तू भूला नृत्य और गान, संकट है क्योंकि तू भूला नृत्य और गान। भूला परम वैभव तूने जो किया व्यवधान, मिटा प्रेम धरा से क्या करे भगवान, उहा फोह में पड़ा हुआ हो रहा था हलकान। ऋतु बंधन कैसे करूं, कैसे करूं मैं गान, ऋतु बंधन कैसे करूं, कैसे करूं मैं गुणगान। कहीं बाढ़ कहीं सूखा विनाश का सामान, कहीं बाढ़ कहीं सूखा विनाश का सामान, बिगड़ा रूप सावन का कैसे करूं गुणगान, कैसे करूं गुणगान। शारंगी बोले और मुरली छेड़े तान, कान्हा संग कजरी गाए रास के गान, कान्हा संग कजरी गाए रास के गान। नगाड़े की थाप पर मांदर के हों बोल, नगाड़े के थाप पर मांदर के हों बोल, एक दूजे का हाथ पकड़ सभी रहे हैं डोल, सभी रहे हैं डोल। चाहत है कि सब सुधरे कर समय का दान, जगा तो फिर अखरा कर ले सुरसंधान, कर ले सुरसंधान। यह संसारी चक्र अब इसी तरह से चलेगा, यह संसारी चक्र अब इसी तरह से चलेगा, बस जिंदगी जीने का तुम्हें अंदाज बदलना पड़ेगा, जिंदगी जीने का अंदाज तुम्हें बदलना पड़ेगा। अगली कविता का शीर्षक है वक्त की रेत। किसी की जिंदगी छोटी तो किसी की बड़ी होती है, किसी की जिंदगी छोटी तो किसी की बड़ी होती है, मौत किसी के दरवाजे पर तो किसी के सिर पर खड़ी होती है, किसी के सिर पर खड़ी होती है। कौन जाने किसी के हिस्से में कल का सूरज आएगा कि नहीं, कौन जाने किसी के हिस्से में कल का सूरज आएगा कि नहीं, जिससे मुंह फुलाकर बैठे हो आज, वो क्या पता कल मिल पाएगा कि नहीं, वो क्या पता कल मिल पाएगा कि नहीं। जरा सोचिए दिल से जुड़े रिश्तों को, जरा सोचिए दिल से जुड़े रिश्तों को, यूं न गलत फहमियों का शिकार बनाइए, यूं न गलत फहमियों का शिकार बनाइए। मन मुटाओ की इस गांठ को, मन मुटाओ की इस गांठ को, इतना कसकर ना लगाइए, इतना कसकर ना लगाइए। ये वक्त की रेत है हाथों से पल में कब फिसल जाएगी, ये वक्त की रेत हाथों से पल में कब फिसल जाएगी। तुम आवाज लगाती रहोगी और वो बहुत दूर चली जाएगी, और वो बहुत दूर चली जाएगी। अगली कविता का शीर्षक है चक्र को भेदना होगा। फुर्सत हो या काम हो नहीं रहता अब ध्यान, फुर्सत हो या काम हो नहीं रहता अब ध्यान, करें तो अब क्या करें नहीं आता कुछ समझ। कितनों के कितनों से नाता है जोड़ा, कितनों ने नाता है तोड़ा, कितनों से नाता है जोड़ा, कितनों से नाता है तोड़ा, फिर भी जीवन जीने का हमने मोह नहीं छोड़ा, जीवन जीने का मोह हमने नहीं छोड़ा। यह संसारी चक्र अब इसी तरह से चलेगा, जीना मरना अब तुम्हें इसी अनुसार समझना पड़ेगा। ना कोई साथ देगा और ना कोई साथ जाएगा, ना कोई साथ देगा और ना कोई साथ जाएगा, बस जिंदगी जीने का तुम्हें अंदाज बदलना पड़ेगा, जिंदगी जीने का तुझे अंदाज बदलना पड़ेगा। बदले बदले से लोग लगते हैं, बदले बदले से लोग लगते हैं, तब अपने भी गैर लगते हैं, अपने भी गैर लगते हैं। ये जमाना भी ऐसों का है जो हर वक्त रंग बदलता है, ये जमाना भी ऐसों का है जो हर वक्त रंग बदलता है, बुरे वक्त में छोड़ जाते हैं, अच्छे वक्त में चिपक जाते हैं। सच में जमाने की एक सच्ची तस्वीर दिखलाते हैं, सच में जमाने की एक सच्ची तस्वीर दिखाते हैं। इतना सब कुछ देख लिए इस कलयुग में जो हमने, फिर भी जीवन जीने का नहीं छोड़ा हौसला हमने, फिर भी जीवन जीने का नहीं छोड़ा हौसला हमने। आयु जितनी लेकर आए उतना जीना हमको पड़ेगा, आयु जितनी लेकर आए उतना जीना हमको पड़ेगा, संसारी चक्र के चक्र को हमको जीना पड़ेगा, संसारी चक्र के चक्र को हमको जीतना पड़ेगा, हमको भेदना पड़ेगा, फुर्सत हो या फिर काम हो। ये संसारी चक्र अब इसी तरह से चलेगा, ये संसारी चक्र अब इसी तरह से चलेगा। ये जमाना भी ऐसों का है जो हर वक्त रंग बदलता है, फिर भी जीवन जीने का नहीं छोड़ा हौसला हमने, फिर भी जीवन जीने का नहीं छोड़ा हौसला हमने। ना कोई साथ देगा और ना कोई साथ जाएगा, फिर भी जीवन जीने का नहीं छोड़ा ढंग हमने, फिर भी जीवन जीने का नहीं छोड़ा ढंग हमने। अगली कविता का शीर्षक है जरूरी काम। जग में रहकर काम करो, जीना है तो काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो, जीना है तो काम करो, काम बिना जीना है बेकार, जीने का तुझे नहीं अधिकार, काम बिना जीना है बेकार, जीने का तुझे नहीं अधिकार, तुझे जीना है तो एक काम करो, उन मेहनत कश मजदूरों को देखो, उन मेहनत कश मजदूरों को देखो, वो बनाते हैं भवन आलीशान लेकिन वे रहते हैं खाली पांव, वो बनाते हैं भवन आलीशान लेकिन वे रहते हैं खाली पांव, वह अर्ध नग्न तंग कपड़ों में। जरा उन किसानों को देखो जो सिर्फ तुम्हारे लिए अपना पसीना बहाते हैं, जो सिर्फ तुम्हारे लिए ही अपना पसीना बहाते हैं, चिलचिलाती धूप में 2 जून की रोटी के लिए तन जलाते हैं, 2 जून की रोटी के लिए तन जलाते हैं, वे रहते हैं उजड़े कस्बों में, हम रहते हैं महलों में, वे रहते हैं उजड़े कस्बों में, हम रहते हैं महलों में। अपने जीवन का सम्मान करो, जग में रहकर ऐसा काम करो, अपने जीवन का सम्मान करो।
1: स्वरचित कविताएं सुन रहे थे रजना।

0: श्रीवास्तव से।
1: साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम बात कर रहे हैं अखंड भारत के स्वप्न दृष्टा और वैचारिक क्रांति के अग्रदूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जिनकी आज यानी 23 जून को पुण्यतिथि है। सबसे पहले तो हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।
0: हाँ, और साथियों आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को देश भर में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की एकता अखंडता के लिए 23 जून 1953 को कश्मीर की जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में इनका निधन हो गया था।
1: उन्होंने एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नारा दिया। ये तत्कालीन जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे के सख्त खिलाफ थे, यानी अनुच्छेद 370 का पूर्ण विरोध करते थे।
0: और आकांक्षा, इसी के साथ वक्त भी चला है श्रमिक साथियों से आज्ञा लेने का।
1: बिल्कुल, तो अपनी दोस्त आकांक्षा
0: और योगेश्वर को दे इजाजत।
1: नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे श्रमिक लोग। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। शाम के 6 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह का दूसरा चरण आयोजित हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मौके पर दिशम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत लोक कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सर्वोच्च पुरस्कार दिशम गुरु की पत्नी रूपी सोरेन ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया। मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक कल्पना सोरेन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राज्य में SIR की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र 30 जून से शुरू होगा। इस सिलसिले में BLO और BLO प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज देवघर के मधुपुर और दुमका के जरमुंडे में प्रशिक्षण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिए SIR की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी 3 जुलाई को दुमका गोविंदपुर संचरण लाइन का लोकार्पण करेंगे। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री ऑनलाइन ग्रिड सब स्टेशन और संचरण लाइनों का लोकार्पण रांची से करेंगे। मौके पर मुख्यमंत्री 220 केवी दुमका गोविंदपुर संचरण लाइन का भी लोकार्पण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी द्वारा रांची में रन फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक दौड़ का आयोजन किया गया। पुराना विधानसभा से धुरवा गोल चक्कर होते हुए वापस पुराना विधानसभा तक आयोजित इस दौड़ में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों, युवा खिलाड़ियों तथा खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में 1980 मॉस्को ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक विजेता सिल्वानुस डुंगडुंग को डॉ. सरोजनी लकड़ा IPS ने सम्मानित किया। और मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने तात्कालिक पूर्वानुमान में बताया है कि अगले कुछ घंटों में राज्य के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं किसान वाणी कार्यक्रम।

0: किसान वाणी कार्यक्रम में किसान भाई बहन मन कर स्वागत है। संध्या बहन
1: और जुगनी बहन कर जुहार।
0: बता देवीला कार्यक्रम कर प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। पहले जानीला आज हमरे मन का जानकारी करब एक बारे में है नी और करब मौसम कर हाल जानक से तले आज की बात में जानकारी करब बेल वाला सब्जी में पौध संरक्षण का लखे करल जाएला बतावे डॉक्टर आराधना सेन। तले एगो भेंट वार्ता हमरे मन सुनब खेत बचाओ अभियान कर बारे में बतावे राम शंकर प्रसाद सिंह।
1: और बेरा बातचीत तो देश विदेश के संगे नसीहत के भी जानब है
0: तो और करीला मौसम कर जानकारी कर संगे तो जुगनी बहन बताए दो।
1: तो और करीला मौसम का जानकारी से मौसम विज्ञान विभाग बटले मिलल सूचना के मुताबिक रांची में उमस कर गर्मी कर एहसास होलक है और राज्य में कोनो कोनो ठाँ बटले बदरी ढपले रहलक रहे शिकर से बरखा कर भी संभावना जताल गलक है और आज का तापमान इतर आंकल गलक है। राजधानी रांची कर अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर कर अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। डाल्टनगंज कर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री। देवघर कर अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री। वही तर गढ़वा कर अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस आकल गलक रहे। तो ये रहे आज कर मौसम का तापमान।
0: हाँ तो जुगनी बहन हमरे मन अपन अंगना में ठाँव रहले कोनो कोनो फूल पौधा मन के रोपते रहिला है नी।
1: एकदम बिल्कुल बिल्कुल। और देखो हमरे खेती बाड़ी करेला तो हमरे के खेती बाड़ी कर संगे संगे देखो हमरे कर जीव जान के जे हमरे के बढ़िया औषधि गुण दे है तो हमरे के औषधीय पौधा मन कर भी खेती करे चाहिए। देखो खेती बाड़ी तो हमरे करेला लेकिन हमरे अगर औषधीय पौधा मन कर खेती करब तो हमरे के अतिरिक्त आमदनी भेटाला ओकर से। तो हमरे के व्यवसायिक तरीका से औषधीय पौधा मन कर भी खेती करे के है। तुलसी कर खेती करे के है, एलोवेरा कर खेती करे के और अदरक कर भी खेती करे के तो और नाना बरन कर जो औषधीय पौधा है इमन कर हमरे खेती करके अतिरिक्त मुनाफा हमरे कमाए सकेला।
0: हाँ एकर से हरियरी तो भेटावे करी संगे संगे हमरे कर स्वास्थ्य बेस रही। तो बहन और करब आज की बात कर संगे इकर में हमरे मन जानकारी करीला बेल वाला सब्जी में पौध संरक्षण का तरी करल जाएला बतात है डॉक्टर आराधना सेन और इनकर से बतियाए हैं संजीव कुमार लाल।
2: किसान साथियों जोहार नमस्कार। किसान साथियों अभी आप अपने खेतों में लौकी खीरा करेला तुरई नेनुआ मीठा करेला कुंदरी कोहड़ा इत्यादि सब्जियां आपने लगा रखी है। कहने का मतलब कि आपने बेल वाली सब्जियां लगा रखी है और इन समय कौन कौन सी बातों का हम ख्याल रखें ताकि आपकी पौधे की बढ़वार अच्छी हो और उससे अच्छा उत्पादन आप ले पाएं। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आपका पौधा रोग मुक्त हो और यदि रोग लग जाता है तो फिर बड़ा ही नुकसान हमारे किसान साथियों को हो जाता है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि इन बेल वाली सब्जियों में पौध संरक्षण कैसे करें। बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं उद्यान महाविद्यालय खोटपानी चाईबासा के। आया खुशियों का पै किसान साथियों जोहार नमस्कार। किसान साथियों अभी आप अपने खेतों में लौकी खीरा करेला तुरई नेनुआ मीठा करेला कुंदरी कोहड़ा इत्यादि सब्जियां आपने लगा रखी है। कहने का मतलब कि आपने बेल वाली सब्जियां लगा रखी है और इन समय कौन कौन सी बातों का हम ख्याल रखें ताकि आपकी पौधे की बढ़वार अच्छी हो और उससे अच्छा उत्पादन आप ले पाएं। सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आपका पौधा रोग मुक्त हो और यदि रोग लग जाता है तो फिर बड़ा ही नुकसान हमारे किसान साथियों को हो जाता है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि इन बेल वाली सब्जियों में पौध संरक्षण कैसे करें। बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं उद्यान महाविद्यालय खोटपानी चाईबासा के सहायक प्राध्यापक आराधना सेन। आराधना जी स्वागत है आपका किसान वाणी कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: अभी बेल वाली सब्जियां कौन कौन से हमारे किसान साथी लगा रखी हैं और किन किन बातों का उसमें ध्यान रखा जाए।
3: वर्षा ऋतु में अगर हम बेला वाली सब्जियों की बात करें तो मुख्यतः

0: हम देखते हैं कि कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कि हमारा लौकी, कुमड़ा, करेला, परवल, नेनुआ, तुरई इत्यादि जैसी जो सब्जियां हैं अभी आपको खेत में देखने को मिल जाएगी। जब इस मौसम के दौरान जब भी हम कोई भी सब्जी लगाते हैं तो हम यह देखते हैं कि वातावरण में अत्यधिक नमी के कारण इन पौधों में बहुत तरह के जो रोग हैं वो लग जाते हैं। तो जब भी हम किसानों के पास जाते हैं तो उनका सबसे पहला प्रश्न हमसे यही होता है कि हम ऐसा क्या छिड़के या ऐसा कौन सा रासायनिक कोई दवाई का हमको नाम बता दिया जाए कि हम उसको छिड़के और हमारा जो खेत है वो रोग मुक्त या जो कीट मुक्त हो जाए। परंतु मेरा यह मानना है कि ये जो हर बात पे रसायन को छिड़कने की जो हमारी मानसिकता है, हमें इसे हमें बदलना चाहिए। कई ऐसी वैज्ञानिक कृषि पद्धतियां हैं जिसको अपनाकर हम अपने खेत को रोग एवं नाशी जीवों के आक्रमण से बचा सकते हैं। तो हमारा प्रथम उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम किस तरह से बिना किसी भी प्रकार के रसायन को छिड़कें हम अपने खेत को रोग मुक्त कर सके, इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। जब प्राकृतिक तरीके या ये जो कृषि पद्धतियां जब हमारी रोगों को नहीं जो है रोक पा रही हैं, उसके बाद ही हमें जो है जो रासायनिक जो भी दवाइयां हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो तरीका हो सकता है कि हम फसल वितान सूक्ष्म जलवायु का अनुरक्षण करें। इसके जो मुख्य घटक होते हैं फसल के अंदर में जो तापमान है, आर्द्रता है और जो वायु का प्रवाह है, हम इसको इसका हम अच्छे से अनुरक्षण करें। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? एक सिंपल सा तरीका है कि हम जो पौधों को लगाने की जो दूरी है या पौधों का जो घनत्व है उसको हम उसको अच्छे से करें। मतलब कि जितना भी उसका जो उपयुक्त दूरी है एक पौधे से दूसरे पौधे की, उसको हम बनाए रखें। इससे क्या होगा कि पौधों के अंदर जो तापमान या वायु का जो संचार है वह ठीक से होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पौधों में जो है रोग पनपने का जो एक प्रतिकूल जो एक जलवायु पौधों के अंदर बन जाती है वो नहीं बन पाएगा। दूसरा क्या है कि हम स्वच्छ कृषि प्रबंधन करें। यह एक ऐसी कृषि पद्धति है या तकनीक है जिसमें खेत को खरपतवार, अनवांछित पौधों और पिछले फसल के बचे हुए जितने भी अवशेष हैं, इनसे पूरी तरह से मुक्त रखा जाता है। यह जो खरपतवार है या अनवांछित जो पौधे इत्यादि है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि नाशी जीव एवं रोगजनक जो जीव होते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्थल होते हैं जिनमें कि ये जो रोगजनक जीव है ये रह जाते हैं, और जब हम फसल लगाते हैं तो ये उनसे हमारे जो फसल है इसके ऊपर आक्रमण करते हैं। तो अगर हम साफ सफाई अपने जो खेत है इसमें रखें तो भी हम जो है रोगों से एवं जो नाशी जीव है उससे अपने खेत को बचा सकते हैं। एक और तरीका क्या है कि हम सौरीकरण या मृदा का जो सौरीकरण है इसे हम अपना सकते हैं। इससे क्या होता है कि मृदा के अंदर जो कीड़ों के जो अंडे रहते हैं या जो हमारे जो रोग को जन्म देने वाले जो जीवाणु रहते हैं उनके जो भी अवशेष बाकी रहते हैं ये खत्म हो जाते हैं।
1: जी आराधना जी, कौन कौन सी कीट लगने की संभावना इसमें ज्यादा बढ़ जाती है और उसका नियंत्रण कैसे करें?
0: जी जरूर, जैसे कि हमारे जो कद्दू वर्गीय फसल है उसका सबसे जो प्रमुख जो कीट हम देखते हैं वो है हमारा एक तो फल मक्खी, दूसरा है हमारा सफेद मच्छर। तो ये जो दो जो है ये बहुत मुख्यतः आप देखेंगे कि हमारे जो कद्दू जातीय फसल है इनमें होता है। जो सफेद जो मच्छर है यह क्या करता है, ये एक जो पौधे का रस को ये शोषक करता है, मतलब ये जो पौधे का रस है इसको ये खाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो पत्तियां हैं उसमें आपका वायरल डिजीज का आक्रमण होता है। वहीं पे जो हमारा जो फल मच्छर है ये सबसे ज्यादा खतरनाक इसीलिए है क्योंकि जब फल हो जाता है हमारा पूरा, उस वक्त जो है ये फल मक्खी जो है हमारे फल को आक्रमण करती है, और ये फल मक्खी क्या करती है कि हमारे जो फल है उसमें छेद कर देती है और उसमें अंडे दे देती है।
1: जी,
0: अंडे देने के बाद में वो जो लार्वा रहता है वो फल को खाना शुरू करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो
1: फसल को नुकसान होता है,
0: फल का जो आकार है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है।
1: इसका प्रभावी नियंत्रण किस प्रकार किया जाए आराधना जी?
0: जी जरूर, फल मक्खी जो है उसके लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड है, कुछ कुछ मैं नाम बता देती हूँ, जैसे कि UPL का उलाला एक है जिसमें कि हम लोगों का फ्लोनी कमाइड रहता है 50%, इसको हम लोग 10 ग्राम पर 15 लीटर का जो हम लोग का स्प्रेयर टैंक होता है उसमें डाल के हम इसका छिड़काव कर सकते हैं जैसे ही हम लोग का फल मक्खी जो है दिखता है। दूसरा केमिकल है हम लोग का बेस्ट एग्रोलाइफ का रोनोफिन, इसको भी हम लोग 25 ml पर 15 लीटर टैंक में मिलाकर हम

0: स्प्रे अगर करते हैं तो भी इसका कंट्रोल हम लोग, निरोध हम लोग कर सकते हैं। एक और है बेयर का मोवेंटो एनर्जी, ये भी एक सिस्टमिक आपका इंसेक्टिसाइड है या कीटनाशक है, जो कि हम लोग 20 ml प्रति 15 ml हम लोग इसको छिड़क के जो है इसका नियंत्रण हम कर सकते हैं
1: जी।
0: जब हम छिड़काव कर रहे हैं हमको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम लोग इसको सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे के बीच में ना करें, क्योंकि कद्दू वर्गीय फसलें जो हैं यह पर परागण से जो है इनका परागण होता है, मधुमक्खियां मेनली जो है मुख्यतः जो है परागण करती है।
1: ये तो आराधना जी रासायनिक नियंत्रण हो गया, यदि हम जैविक विधि द्वारा नियंत्रण करते हैं कीट का तो किन किन बातों का हम ख्याल रखें इसमें?
0: जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमको क्लीन कल्टीवेशन या हम लोगों को जो है स्वच्छ कृषि प्रबंधन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो फल मक्खी के जो अंडे हैं ये सीजन खत्म हो जाए मतलब कि ऋतु खत्म हो जाने के बाद मिट्टी में ही जो है रह जाते हैं, और जो भी संक्रमित जो फल वगैरह जो पेड़ों में लगे हुए हैं वो अगर हमारे खेतों में रह जाए तो उसी में उसके अंडे रह जाते हैं, और जब दोबारा हम अगली ऋतु में जब इसको लगाएंगे तो दोबारा से ये जो है दोबारा से आक्रमण जो है हमारे खेतों को कर सकते हैं। तो पहला हम लोग का है स्वच्छ कृषि प्रबंधन, दूसरा है हम लोग का मृदा सौरीकरण, ये दो तरीके से जो है
1: ये तो आपने बताया अभी
0: जो है प्रबंध कर सकते हैं।
1: और संक्षिप्त में बताएं कि किन किन बातों का ख्याल रखा जाए बेल वाले सब्जियों में ताकि हमारी फसल अच्छी हो, किसानों को अधिक मुनाफा हो और उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो।
0: अच्छा, तो सबसे पहला तो बेल वाली जितनी भी सब्जियां हैं तो हम सब जानते हैं कि सीधी खड़ी नहीं हो पाती है, तो बेल वाली जो सब्जियां हम जानते हैं कि सीधी नहीं खड़ी हो पाती हैं, ये जमीन पे रेंगती हैं या इन्हें खड़े होने के लिए किसी भी तरह का एक सपोर्ट का या सहारे का जरूरत पड़ता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो सब्जियां जब भी हम लगा रहे हैं तो हम इन्हें मचानों पे लगाएं। मचानों पे लगाने से क्या होगा कि आपकी जो फसल है वो जमीन के स्पर्श में नहीं रहेंगे, जिससे कि आपके जो खेतों में जो भी बीमारियां वो नहीं आएंगी। दूसरा क्या है कि जो ये फल वाले ये जो आपकी जो लत्तीदार जो भी सब्जियां ये जो कुमड़ा प्रजाति की जो भी सब्जियां हैं इनमें जो फूल है ये जो हमारी जो कद्दू वर्ग की जो सब्जियां हैं यह द्विलिंगीय सब्जियां होती है, और इसका जो परागण का प्रकार है यह पर परागण से होता है, मधुमक्खी द्वारा होता है। जब भी हम देखते हैं कि लंबे दिन हो रहे हैं और ज्यादा तापमान होता है तो हम देखते हैं कि इसमें नर जो पुष्प होते हैं इनका जो संख्या है ज्यादा होता है, और जब भी छोटे दिन और कम तापमान होता है तो मादा पुष्प की संख्या जो ज्यादा होती है। अगर हमको सही तरह से पैदावार चाहिए या हमें अत्यधिक जो पैदावार अगर चाहिए, मादा और नर पुष्प के बीच का जो आयत है वो हमारा 2 से 3 नर फूल और उसके सॉरी मादा फूल और 1 जो है नर फूल जो है होना चाहिए। अगर हमको चाहिए कि हम जो है मादा फूलों की संख्या अगर हम बढ़ाना चाहते हैं उस स्थिति में हम लोग IAA, NAA या GA3 का जो स्प्रे है 50 से 150 ppm का स्प्रे हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें नर फूलों की संख्या को बढ़ानी है तो हम सिल्वर नाइट्रेट, इथिलीन, मेलिकहाइड्राजाइड इसको हम छिड़काव कर सकते हैं। एक बात को ध्यान रखने की जरूरत यह है कि हम छिड़काव करें कब, जब 2 से 3 पत्ता जब रहता है पौधे का, मतलब जब पौधा छोटा रहता है इस समय हमको इसका छिड़काव करना चाहिए
1: जी। तो बड़ी अच्छी आज आपने बातचीत की कि बेल वाली सब्जियों में पौध संरक्षण कैसे करें। डॉक्टर आराधना सिंह, सहायक प्राध्यापक, उद्यान महाविद्यालय खूट पानी चाय मसा, आज आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
4: अगला कार्यक्रम हमरे एगो भेंट वार्ता सुनब, खेत बचाओ अभियान। विशेषज्ञ है राम शंकर प्रसाद सिंह और इनकर से गोठिया है मनोज कुमार।
5: चलो सुनब।
6: किसान भाइयों नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला कृषि पदाधिकारी राम शंकर प्रसाद सिंह जी, और जानते हैं कि अभी जो वर्तमान समय में खेत बचाओ अभियान चल रहा है ये क्या है और इसमें कौन कौन से जुड़ रहे हैं और क्या फायदा चल रहा है। सर आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
7: नमस्कार
6: सर, ये खेत बचाओ अभियान सर क्या है?
7: ये अभी इस सीजन का जो खरीफ सीजन हमारा स्टार्ट है तो भारत सरकार के

0: कृषि एवं कृषि विभाग कृषि कल्याण मंत्रालय की ओर से पूरे देश में 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान का एक कैंपेन दिए हैं, एक नारा दिए हैं, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को सभी लगभग महीना दिन हर ब्लॉक को हर पंचायत को कवर करते हुए किसानों को जागरूक किसी चीज पर करना है कि आज हमारी स्थिति खेत की क्या बन गई है। अब जैसा कि जानते होंगे कि एक समय हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन की एक क्रांति आई, इससे हम लोगों ने कृषि का उत्पादन को, फसलों का उत्पादन को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन उसके साथ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी आए, कुछ ड्रॉबैक भी उसके हुए, जिस कारण हमारा आज तो उत्पादन बढ़ा है लेकिन उसमें लागत बहुत लग रही है और हमारी मिट्टी की स्थिति या धरती माता की स्थिति कहें उनकी बहुत नाजुक हो रही है। तो हम लोगों ने एक अभियान जो भारत सरकार की ओर से चली है, सभी राज्यों के साथ मिलकर के हम लोग कर रहे हैं और झारखंड में भी इस कार्यक्रम को हम लोग 1 तारीख से विभिन्न प्रखंडों और या पंचायतों में कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें मुख्य वस्तु है कि हम लोग किसी किसानों को समझा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जब हम लोग सॉइल हेल्थ का जो एनालिसिस करते हैं या सॉइल टेस्ट जो किए हैं सैंपल का, उसके आधार पर क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है। जैसा कि मालूम है कि हमारा पूरा झारखंड जो है एसिडिक सॉइल है और उस एसिडिक सॉइल के चलते बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमियां होते जा रही है, वो उसको इंडिकेट करके बेसिकली हम उसके रिपोर्ट के आधार पर किसानों के बीच जागरूक करते हैं कि अगर नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है, अगर नाइट्रोजन उस रिपोर्ट कार्ड में सफिशियंट है तो फिर क्यों यूरिया दे रहे हैं, क्यों एनपीके दे रहे हैं, क्यों हम डीएपी दे रहे हैं, क्यों पोटाश दे रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। तो उस एनालिसिस के आधार पर हम लोग किसानों के बीच ये बता रहे हैं कि आप एक संतुलित मात्रा में जुडिशियस, मतलब कि जो जरूरी हो, जिसकी आवश्यकता हो खेतों में उसी को लगाएं। उसके बाद भी उसके और भी चरण हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं कि इंजीडिशियस यूज ऑफ, मतलब कि बेधड़क जो हम लोग पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं उसके कारण हमारे पर्यावरण, हमारी खेती, हमारे बहुत से सब्जियों में पेस्टिसाइड्स इतने आ रहे हैं। अभी आप देखे होंगे कि हमारे कुछ पेस्टिसाइड्स के चलते यूरोपियन कंट्री में आम को लौटाया जा रहा है या हर साल इस तरह की घटनाएं आती हैं। तीसरी चीज, अभी ग्लोबल जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं गल्फ कंट्री में, कुछ देश में और विदेश में उथल पुथल हो रही है वर्ल्ड वाइड, तो उसके अनुसार हमारी संसाधन सीमित रखते हुए, हमारे संसाधन सीमित है, बहुत से रासायनिक खादों का जो इम्पोर्ट या उसका बनना होता है वो हमारे ग्लोबली डिपेंड करता है, पूरे देश पर नहीं केवल पूरे विश्व पर डिपेंड, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट बहुत जगह से आते हैं। तो उसको जो संतुलित करने का भी ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अब नेचुरल खेती की चलें। नेचुरल खेती में हमारे किसान ये डरते हैं कि जितना खाद हम लोग लगाते हैं रासायनिक खाद, उस खाद के अनुसार हमारा प्रोडक्शन नहीं होगा, ये डर है। लेकिन ये धारणाएं भी धीरे धीरे 1 साल 2 साल में वो इस तरह के साइंटिफिक प्रयोग हमारे गुजरात में, हमारे महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में, इंक्लूडिंग झारखंड में हम लोग दिखाए हैं कृषि विज्ञान केंद्र रामकृष्ण मिशन में। 3 सालों के बाद भी धान प्रति हेक्टेयर 68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुआ। मैं खुद उसको नहीं मानता था, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है जो उसमें एक टीम बनी जो क्रॉप कटिंग होता है जिसके आधार पर हम लोग यील्ड डिसाइड करते हैं, उस आधार पर तो वो 70 क्विंटल चला गया और वो आश्चर्य होगा। हाँ, इसमें कुछ हमें किसानों को धैर्य रखना पड़ेगा, हम साइंटिस्टों को धैर्य रखना पड़ेगा, इसी चीज को समझाने के लिए हम लोग इस अभियान में निकल चुके हैं और ये 30 तारीख तक हमारा अभियान है। इसमें हमारे पूरे ICR के इंस्टीट्यूट, हमारे कृषि विभाग के प्रसार कर्मी, आत्मा के प्रसार कर्मी, किसान बंधु, जन प्रतिनिधि, हमारे मिनिस्ट्री से जितने भी आ रहे हैं सभी लोगों की सहभागिता है और इस कार्यक्रम को हम लोग सफल कर रहे हैं।
1: सर, अभी तक कितने किसानों से जुड़ चुके हैं सर आप लोग?
0: हर जो हमारा अभी तक 15 हो चुका है और उसमें समझिए कि पर डे 2 है, वहाँ साइंटिस्ट भी रहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के ICR से, तो हर दिन 100 से कम 1500 किसानों का एग्जैक्ट डाटा भी है मेरे पास, 1500 किसानों को प्रतिदिन हमारे भारत सरकार या और हमारे डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर को देना पड़ता है, 1500 किसान अभी तक, उनको हम लोग ने इस बात को जानकारी दी है, इसकी जागरूकता के लिए उनको हम लोग कर चुके हैं।
1: सर, खेत बचाओ अभियान में कौन कौन किसानों को विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है इसमें?
0: विशेष रूप से अभी हम लोग सब्जी वाले किसान को दे रहे हैं। सब्जी में वो लोग जो है कि सबसे ज्यादा बेधड़क जो यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड, उसको हम लोग मिनिमाइज करने के लिए कर रहे हैं और उस क्रॉप को, जैसे अभी धान का, तो धान में भी उनको जरूरत भी नहीं है तो भी यूरिया जरूर छिड़कना है। अब सेकंड टाइम यूरिया छिड़ेंगे, थर्ड टाइम यूरिया, कुछ जगह ऐसा होता है हम लोग बता रहे हैं कि कुछ बीमारियां ऐसा ही है कि यूरिया के अधिक यूज से वो हो जाता है, तो इस चीज को उनको हम लोग वैज्ञानिक रूप से समझा रहे हैं।
1: और किसानों में महिलाएं पुरुष दोनों शामिल हैं?
0: महिलाएं पुरुष, झारखंड में महिलाएं बहुत ज्यादा सक्रिय हैं।
1: ज्यादा सक्रिय महिलाएं हैं?
0: ज्यादा सक्रिय हैं महिलाएं, उनकी सहभागिता बहुत अच्छी है।
1: सही बात है सर, यहाँ के झारखंड के महिलाएं काफी तेज भी है, खेती बाड़ी अच्छे से करते भी है और बहुत नाम भी कमा रहे हैं। कुछ दिन पहले देखिए बहुत सारा आम को विदेश भेजा जा रहा है, तो महिलाओं
0: हमारा मनरेगा से हरित ग्राम विकास योजना इससे चल रही है, तो ब्रांडिंग करके और भारत सरकार की संस्था नेफेड की ओर से, हमारी सरकार भी, झारखंड सरकार भी उसका सहयोग के से, हमारा कल परसों न्यूज देख रहे थे कि वो लंदन में दे रहे हैं, गल्फ कंट्री में थोड़ा सा अभी डिस्टरबेंस है, यूएसए में जा रहे हैं और जापान में जा रहे हैं।
1: सर जो खेत के बारे में बात कर रहे हैं, खेत बचाओ अभियान, तो कौन कौन से खेत इसमें शामिल किए जा रहे हैं, कि सारे खेत है क्या है
0: इसमें? हर खेत को शामिल कर रहे हैं हम लोग, जहाँ ज्यादा यूज होता है, जैसा कि हम बताया शुरू में कि हमारा झारखंड एसिडिक, हम लोग उसमें यूरिया के बदले माइक्रोन्यूट्रिएंट के बदले पहले कह रहे हैं कि आप डोलामाइट यूज कीजिए। डोलामाइट से क्या होता है कि हमारा पीएच कम हो जाता है, पीएच जो कम है कम ज्यादा होगा, अल्कलाइन की ओर ले जाएंगे या न्यूट्रल की ओर ले जाएंगे, तो वो सुधार होता है, तो मिट्टी में सुधार होगा तो हमारा फसल ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा।
1: तो इसका मतलब है कि खेत बचाओ अभियान में सारे लोग जोड़े जा रहे हैं, सारे लोग जोड़े जा रहे हैं, सारे खेत में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कि कुछ जानकारी नहीं रहने के कारण, अभाव के कारण खेतों को बचा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आप लोग कुछ विशेष कर रहे हैं
0: हम
1: क्या?
0: लोग वो जो किसान, मान लिया कि एक हमारे मीटिंग में एक जो जागरूकता अभियान है उसमें 100 किसान आ रहे हैं, उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपने पंचायत में एक एक किसान को बताएं, संध्या पंचायत करें, जो हम आपको बताए हैं हर आदमी के, यहाँ का पॉपुलेशन अगर रांची जिला का हम बात करें तो 2 लाख से ऊपर किसान है, अधिकतर यहाँ शहरी क्षेत्र है लेकिन 2 लाख से ज्यादा किसान है, तो उनको हर को तो नहीं हम लोग बता रहे हैं, तो वो अपना पंचायत में जाके बताएंगे कि इसका यूज करने का, दवा वाले दे रहे हैं कि ये दवा यूज कर लो, ये दवा यूज कर लो, ये मतलब का जरूरत है, अगर जो बीमारी लग चुका है, बिल्टिंग की बीमारी है, उसमें हम लोग बोलते हैं कि ये समस्या का समाधान नहीं है कि ये दवाई से होगा, नहीं बिल्टिंग हो गया तो अपरूटिंग एंड बर्न एक ही उपाय है, बहुत कष्ट होता है किसानों को लेकिन उसका उपाय ही नहीं, फिर भी वो दुकान वाले दवाई दे देते हैं, जिंक ले लो, ये ले लो, वो दवाई दे दो, मतलब 1000-2000 का दवाई वो दे देते हैं।
1: अभी के समय में खेत बचाओ में बहुत सारे जो किसान लोग खेत में अपना हल चलाते हैं, बड़ा बड़ा मशीन का प्रयोग करते हैं, तो लोग कहते हैं कि मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों सर?
0: असल मशीन, जहाँ तक मैकेनाइजेशन की बात है, ट्रैक्टर और पावर टीलर, तो झारखंड ऐसे भी अभी मैकेनाइजेशन में बहुत पीछे है, हम लोग ट्रेडिशनल है, इसलिए हम लोग उसको अभी भी बढ़ावा दे रहे हैं। वो ऐसे स्टेट्स जहाँ की मैकेनाइजेशन बहुत ज्यादा है, बिहार में बहुत ज्यादा है, तो वहाँ एक मैकेनाइजेशन का ड्रॉबैक होता है कि ये 6 इंच का जो हमारा जमीन होता है, नीचे से उसके बेट से, जो ट्रैक्टर का बेट से, एक मोटा स्तर बन जाता है, जिसके कारण उसका फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है।
1: मिट्टी स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, इसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए?
0: इसके लिए तो हम लोग जागरूकता कर ही रहे हैं, और जो है हम लोग जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करें, पेस्टिसाइड्स करें, माइक्रोन्यूट्रिएंट की जितनी आवश्यकता है उतनी दें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे नेचुरल फार्मिंग की ओर अब बढ़ें, क्योंकि आने वाला दिन वही है, हम लोग एक गाना सुना करते थे कि फिर लौट चलो, तो प्रकृति की गोद में फिर लौटना होगा, नहीं तो वैश्विक स्थिति जो है हमारे आगे आने वाले दिनों में बहुत ही खतरनाक।
1: और कुछ फसल चक्र भी अपनाने से शायद मिट्टी स्वस्थ रहे?
0: वो फसल चक्र है, जैसे मान लिया कि अभी हम लोग खरीफ में बता रहे हैं कि आप धान तो लगा रहे हैं, डाइवर्सिफाई कीजिए, विविधीकरण कीजिए, धान को कुछ छोड़ करके आप दलहन की ओर जाइए, दलहन अगर लगाएंगे, हम अरहर लगाते हैं तो उसमें नोड्यूल बनता है, नोड्यूल में अगर 6 इंच नीचे वो नाइट्रोजन खुद फिक्स करता है, उसी तरह रबी में भी कुछ क्रॉप है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो अगर धान ही केवल ले रहे हैं तो वो फसल चक्र में शामिल ना होकर हमको ऑटोमेटिक उसको मिल जाएगा, बिना मतलब, कहते हैं ना कि हम लोग हवा से कुछ खाते हैं, तो पौधे हवाएं से भी खाती है।
1: सर इस तरह का अभियान फिर भविष्य में होने की संभावना है?
0: रबी में भी पिछले बार भी चला था, खरीफ में भी चला है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिसाइड करेगी, उस तरह स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग अभी कृषि रथ एक चलाने की सोच रहे हैं, और वो चलना 16 तारीख से शुरू हो जाएगा। इसी बारे में जानकारी हमारी कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी सभी किसानों के बीच ले जाना है।
1: अंतिम सर, किसानों क्या सलाह देना चाहिए, क्या संदेश?
0: सलाह यही देना चाहेंगे कि वो सबसे पहले तो फर्टिलाइजर का यूज सोच समझ कर करेंगे, पेस्टिसाइड

0: यूज कम से कम पर करें और नेचुरल फार्मिंग की ओर। हमारे जितने रिसोर्सेस हैं, पहले कार्बन की मात्रा कम हो रही है। कार्बन मतलब अगर किसान की भाषा में बोलेंगे ना तो हम लोग करेंगे कंपोस्ट। पहले गोबर की खादें आती थी, अब हमारे यहाँ जानवर भी कम होते जा रहे हैं, तो उसका दूसरा विकल्प है ढांचा लगाना है। हमारे जंगल के रिसोर्सेस हैं, उसकी पत्तियां हैं, ये सब का यूज करना है।
1: तो किसान भाइयों, आज आपने जाना कि खेत बचाओ अभियान क्या है और इसमें कौन कौन से जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद थे जिला कृषि पदाधिकारी रामशंकर प्रसाद सिंह। आप हमारे कार्यक्रम आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार,
0: धन्यवाद, जोहार।
2: तो एखन हमरे जानत रही खेत बचाओ अभियान कर बारे में। तो सचमुच में संध्या बहन, हमरे के खेत के बचाए के चाहिए कि नहीं? देखो, दिनों दिन हमरे के बगरा उत्पादन हुई बोल के बगरा हमरे रासायनिक खाद कर उपयोग करत थी, सेकर चलते हमरे कर खेत है कि दिनों दिन बंजर होते जाते हैं कि नहीं?
3: हाँ,
2: तो हमरे के खेत के बचाए खातिर हमरे के गोबर खाद और जे की खरपतवार मन है से मन कर उपयोग करे चाहिए, ताकि हमरे कर खेत कर उपजाऊ क्षमता बनल रहे, हमरे कर खेत कर माटी कर गुणवत्ता भी बनल रहे है कि नहीं?
3: हाँ हाँ, और बहुत बढ़िया बता लें कि फसल चक्र अपनाए के भी खेत के बचाल जा सकेल है नहीं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, देखो अगर हमरे फसल चक्र के अपनाए ला तो हमरे कर खेत कर माटी है जे कि उर्वरा क्षमता है से बरकरार रही, और उर्वरा क्षमता है से बढ़िया रही, और जे भी देखो फसल अगर हमरे लगाए ला तो वो फसल बढ़िया से होगी। और देखो अगर हमरे रासायनिक खाद कर उपयोग करत है तो हमरे के रासायनिक खाद कर बगरा उपयोग नखे करे। और देखो बगरा उत्पादन लेवे कर चलते किसान भाई मान दिनों दिन एकदम रासायनिक खाद कर अंधाधुन उपयोग करे ना, सेकर से खेत बंजर हो जाएला, और बगरा उत्पादन लेवे कर चलते उत्पादन कम होएला, सेकर से किसान भाई मन के नुकसान भी सहक पड़ेला है कि नहीं?
3: हाँ हाँ, तो हमरे के जैविक खाद बटे जाए है, जैविक खाद कर उपयोग कर करब हल हमरे कर खेत कर माटी भी बढ़िया रही, उपज भी बढ़िया है, और देखो खाएक में हो स्वाद लागे है नहीं?
2: बिल्कुल, और देखो हमारे रासायनिक खाद कर उपयोग कर थी तो रासायनिक खाद कर उपयोग करे से केवल खेती बाड़ी कर खेत कर माटी कर प्रभाव नहीं पड़त है, उकर सीधा प्रभाव हमरे कर स्वास्थ्य में भी पड़त है कि नहीं? देखो रासायनिक खाद हमरे डाला थी वो पानी में घुला थे, पानी में घुलने के साथ में वो वायुमंडल में जाते फिर और पानी वो पानी नीचे आवा थे, तो पानी के हमरे पिए कर भी उपयोग कर थी, सेकर से हमरे हमरे भी उके खाद पिए थी, और जो खान पान तो होबे कर थे हमरे कर, लेकिन हमरे के रासायनिक जे खेती में खेती बाड़ी में उपयोग कर थी सेकर प्रभाव हमरे कर स्वास्थ्य में पड़त है, तो हमरे के रासायनिक खाद कर उपयोग नहीं करे के जैविक खाद कर उपयोग करे के है कि नहीं?
3: हाँ जुगनी बहन, और देखो इकरे संगे हमरे कर किसान वाणी कार्यक्रम कर बेरा सिरायला बता देवेला कार्यक्रम कर प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
2: और प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लाल केर।

0: एकदम फिर से सुनवाइया भाई बहन बनकर कार्यक्रम में स्वागत है। संध्या बहन
1: और जुगनी बहन कर
0: जोहार।
1: और कहो संध्या बहन, कैसा है हाल समाचार और बटले?
0: एकदम नगद है जुगनी बहन, अपन दन कहो।
1: एकदम नगदे नगद है, घर दुरा में छुआ पुत मन कैसन है। देखो बरखा पानी हुआ थे ठम, और कोनो कोनो ठाँ बटले तो बरखा हुआ थे, कोनो ठाँ बटले धूप करा थे, सकर से तो उमस भी लागत है कि नहीं?
0: सही कहा थे यार, मौसम खने गरम खने सरद करे लायक है नहीं, तो इसन में अपन तबीयत कर ध्यान बढ़िया से रखे है हमरे मन के।
1: बिल्कुल, देखो डौरे कहली तबियत का ध्यान रखे के चाहिए, लेकिन हमरे के बगरा ध्यान छुआ पुता में देखे है। काले कि छुआ पुता मन देखो आजकल का जो तकनीकी दुनिया है, सबकर हाथ में मोबाइल रहेला, तो सेकर से छुआ मने पढ़े के लिखे छोड़ के मोबाइल के देख के देखत रहे न, कौन गेम देखत हैं, कौन का करत हैं, तो छुआ मने दिन भर मोबाइल के हाथ में लेके देखत रहे न, तो हमरे के उके बगरा ध्यान देवे के है कि नहीं? और देखो मोबाइल से जे रोशनी निकलेला सिकर से छुआ मनकर आँख में प्रभाव पड़ेला, और उ रोशनी के हमरे अपन खुला आँख से नहीं देख सकेला, सेकर जेकर उकर प्रभाव हमरे कर हार्ट में हो सकेला, हमरे का फेफड़ा में होवेला, हमरे का किडनी में हो सकेला, हमरे का शरीर के सीधा छेद करके पार हो जाएला, तो इतना भयानक है मोबाइल से जो निकलेला वो रोशनी। तो हमरे के छुआ पुता मन के मोबाइल के से दूर रखे के है, काले कि छुआ पुता मन कर जो शरीर है नाजुक है, और जो उनकर आँख का रोशनी भी जा सकेला, तो हमरे के छुआ मन के दूर रखे के मोबाइल से। कोनो कोनो छुआ मन के तबे हमरे के मोबाइल देवे के जब उमन के जरूरत पड़ी, पढ़े के लिखे छुआ मन के कोनो कोनो बड़ा मोबाइल का जरूरत रहेला, तो सेबरा देवे के चाहिए, और मोबाइल से छुआ मन के एकदम दूर रखे के चाहिए। उमन के प्रोत्साहन देवे के चाहिए खेल कूद में, ताकि उमन कर मानसिक शारीरिक विकास भी बढ़िया से हो, है कि नहीं?
0: ई मोबाइल कर फेरा में जुगनी बहन छुआ मन खेले के भुलाए जा है नहीं? और एगो भतीजा है हमर 9 साल कर से, तो खाने नहीं खाएला, मोबाइल नहीं रहले, खाना रखल रही और जब तक मोबाइल हाथ में नहीं आवे ने उके भूखे नहीं लागल।
1: तो ई चीज़ के हमरे के घर में माय बाप के ध्यान देवे के, काले कि बगरा अगर समय से बगरा बेरा तक अगर छुआ मन मोबाइल अगर देख पाए, तो उमने नाना बरन कर रोग कर भी शिकार हो सके ना, उमन कर आँख कर रोशनी में प्रभाव पड़ सकेला, मन पढ़े के लिखे के लिए मन नहीं करेला, और भी नाना बरन का रोग हो सकेला, तो हमरे के रोग से भी बचा है हमरे के छुआ पुता मन के, है कि नहीं? तो मोबाइल से छुआ मन के दूर रखे के, और तबे हमरे के छुआ मने बढ़िया से रह, उनका शारीरिक विकास भी बढ़िया हुई, मानसिक विकास भी बढ़िया हुई, और पढ़े के लिखे के लिए भी छुआ मन के मन लागी।
0: हाँ एकदम बढ़िया सन रूटीन बनाए देखे, जेकर से उमन उकर में व्यस्त रहबे और मोबाइल के भुलाबे, है नी?
1: बिल्कुल।
0: तो बहिन हाँ, अब आज तो पसंद कर लोकगीत कार्यक्रम है, तो हमरे मन और करब आज नागपुरी लोकगीत कर संगे बशीर अंसारी और संगी मन कर गावल है।
1: चलो तब इके सुनब हमरे।

0: सचमुच में हमरे को छोटा नागपुर चेरो कोना हरा भरा दिखेल है कि नहीं। पहाड़ पर्वत जंगल झाड़ से भरल है चेरो कोना है, बड़ा सुंदर दिखेला। गीत कर माध्यम से बड़ा सुंदर वर्णन करल है हमरे का छोटा नागपुर कर है कि नहीं। और अगला कार्यक्रम अगला गीत में हमरे सुनब पंचपरगनीय लोकगीत दिलीप कुमार और उकर संगी मनकर गावल गीत।
1: चलो सुनील।

कटिकुन बेरा बा चल है तो हमरे और एगो गीत सुन लुला, कुरमाली लोकगीत। कलाकार हैं अजित कुमार महतो और उनका संगी मन।

0: एहे गीत कर संगे हमारी दुनिया कार्यक्रम कर बेरा सिरालक और कार्यक्रम का प्रस्तुति रहे संजीव कुमार लालकेर। तो कार्यक्रम सुनोया भाई बहन मन रौर मन कर संगे जुगनी बहन कर संगे
1: संध्या बहन के विदा देव
0: जोहार।

आप सुन रहे थे हमारी दुनिया कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:55 होने को हैं। थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं।

0: इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है, वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से किया सम्मानित। गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन ने ग्रहण किया पुरस्कार। एसआईआर वोटर मैपिंग का 30 जून से दूसरा सत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने देवघर और दुमका में बीएलओ प्रशिक्षण का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। रांची में भाजपा नेताओं ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि। कहा प्रधानमंत्री उनके सपनों को कर रहे हैं पूरा। कर्मयोगी मिशन के तहत रांची सेल में क्षमता संवर्धन सम्मेलन। कर्मियों को दक्ष और निपुण बनाने में मंथन। विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक भागीदारी पर जोर। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर रांची में मैराथन दौड़ का आयोजन। यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप शिविर के लिए राज्य के 6 खिलाड़ियों का चयन। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह का दूसरा चरण आयोजित हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मौके पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत लोक कार्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सर्वोच्च पुरस्कार दिशोम गुरु की पत्नी रूपी सोरेन ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक कल्पना सोरेन सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र 30 जून से शुरू होगा। इस सिलसिले में बीएलओ और बीएलओ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज देवघर के मधुपुर और दुमका के जरमुंडी में प्रशिक्षण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया। श्री कुमार ने कहा कि एसआईआर में एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम नहीं कटेगा।
2: ट्रेनिंग में सभी बिंदु पर बात हो रही है। हम पर अभी बीएलओ पूरा तरफ से जानकारी ले रहा है। उसमें मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक भी भारत का नागरिक छूटेगा नहीं, सबको अपने शामिल कर देंगे। उसका साथ साथ में कितना भी पहले से गलत प्रवेशी है, फिर उसके बाद कितना भी गैर भारत नागरिक का नाम है, वो अपने रिमूव करके उनका पूरी काम करे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस सिलसिले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में एक समारोह के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रबुद्ध नागरिकों को सम्मानित किया। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को नई दिशा दी है। उनके कार्यकाल में जन कल्याण के कामों को भी नया आयाम मिला है। रक्षा राज्य मंत्री ने विकसित राष्ट्र निर्माण में सभी की भागीदारी पर जोर दिया। जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर राज्यभर में आज विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और अन्य नेताओं ने उन्हें बलिदान दिवस पर नमन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बदलाव दिख रहा है।
3: आज उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर सैकड़ों लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम किया है। और जो उनका सपना था, जो उनका सोच था कि एक देश में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा, और इसी मूल मंत्र को लेकर अनेक प्रकार का आंदोलन करने का काम सदैव डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करने का काम किया।
1: गुमला वन प्रमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले

0: की वन क्षेत्र में करीब 20 एकड़ से अधिक वन भूमि को वन विभाग ने अवैध कब्जा से मुक्त कराया है। इस संबंध में गुमला वन प्रमंडल पदाधिकारी अनवर बिलाल अहमद ने बताया कि स्थानीय लोग लंबे समय से वन क्षेत्र के पेड़ पौधों को काटकर अवैध कब्जा करते हुए खेती कर रहे थे।
1: सर्वे जब हम लोगों ने किया तो पाया कि करीब 20+ एकर्स में इंक्रोचमेंट लैंड था। वहाँ के लोगों ने फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे खेती कर रहे थे। इंक्रोचमेंट ग्राम सभा बुलाया, मीटिंग हुई तो लोगों ने वॉलंटरीली एग्री किया कि वो लोग उस जगह को छोड़ देंगे और पूरे इंक्रोचमेंट को क्षेत्र को खाली कराया गया। ट्रेंचेस बनाए गए, कंटूर्स बनाए गए, गली प्लग्स किया गया, पिट्स बनाए गए।
0: झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ में आज बोकारो की एक लापता युवती के मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। इस दौरान जंगल से बरामद कंकाल और युवती के माता पिता के डीएनए रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। मामले की अगली सुनवाई अब 25 जून को होगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल में आज से मिशन कर्मयोगी के तहत 3 दिवसीय कर्मचारियों का क्षमता संवर्धन सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन में सेल से संबंधित देश भर के प्रतिष्ठानों के मानव संसाधन विभाग के अधिकारी और मैनेजमेंट गुरु कर्मचारियों को दक्ष और निपुण बनाने की दिशा में मंथन कर रहे हैं। मौके पर भारत सरकार की सदस्य डॉ अलका मित्तल ने विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक भागीदारी पर जोर दिया।
2: 3 साल से ये एक्टिविटी चल रही है और इस संदर्भ में चर्चा होती है कि किस तरह से हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, कैपेबिलिटी बिल्डिंग करेंगे अपने ह्यूमन रिसोर्स की। हमारे कोई भी असेट फेल हो जाएंगे अगर ह्यूमन असेट जो है वो इक्विप नहीं होगा इन हमारे कैपिटल को संभालने के लिए।
0: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने बताया कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है।
3: अल नीनो के कारण, कमजोर मानसून रहने के कारण हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। कम वर्षा के कारण जो परिस्थिति पैदा होगी उसके लिए जिले की कंटेंजेंसी प्लान बना लिए गए हैं। वहाँ की जलवायु, फसल उपलब्ध जल और जोखिम को देखकर कैसे हम वैकल्पिक खेती की योजना बनाई है।
0: इधर देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने थोड़ी गति पकड़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के कुछ और क्षेत्रों में आज मॉनसून प्रवेश कर गया। अगले 3-4 दिनों में इसके बाकी इलाकों में भी दस्तक देने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गुमला के भरनों में राज्य में सर्वाधिक 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 29 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात के आसार हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी की ओर से रांची में आज रन फॉर इंटरनेशनल ओलंपिक दौड़ का आयोजन किया गया। पुराना विधानसभा से धुरवा गोल चक्कर होते हुए वापस पुराना विधानसभा तक आयोजित इस दौड़ में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों, युवा खिलाड़ियों तथा खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर पूर्व ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता सिल्वानस डुंगडुंग को सम्मानित किया गया। हॉकी इंडिया ने आगामी यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप के राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए खिलाड़ियों की सूची जारी की है। झारखंड की 5 बेटियों पुष्पा मांझी, संदीपा कुमारी, श्रुति कुमारी, नीलम टोपनो और खिली कुमारी को महिला वर्ग में प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। पुरुष वर्ग में प्रशिक्षण कैंप के लिए आशीष तानीपूर्ति का चयन हुआ है। झारखंड T20 प्रीमियर लीग JPL का आज खिताबी मुकाबला होगा। जमशेदपुर स्टीलर्स और छोटा नागपुर रॉयल्स के बीच यह फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से रांची के JSEA स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से किया सम्मानित। गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन ने ग्रहण किया पुरस्कार। SIR वोटिंग मैपिंग का 30 जून से दूसरा सत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने देवघर और दुमका में BLO प्रशिक्षण का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। रांची में भाजपा नेताओं ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि। कहा, प्रधानमंत्री उनके सपनों को कर रहे हैं पूरा। कर्मयोगी मिशन के तहत सेल रांची में क्षमता संवर्धन सम्मेलन। कर्मियों को दक्ष और निपुण बनाने का मंथन। विकसित राष्ट्र के लिए सामूहिक भागीदारी पर जोर। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर रांची में मैराथन दौड़ का आयोजन। यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप शिविर के लिए राज्य के 6 खिलाड़ियों का चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता।
1: झारखंड राज्य का एकमात्र जिला साहिबगंज जहां से होकर गंगा नदी गुजरती है, इसके आसपास के किसानों को उपजाऊ मिट्टी के साथ यह राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन की पसंदीदा शरण स्थली भी है।
2: जो डॉल्फिन सर्वे हुआ था, पहला रेंज वाइड सर्वे 2 साल पहले उसका रिपोर्ट भी रिलीज हुआ है, उसमें झारखंड में डॉल्फिन की प्रेजेंस बहुत अच्छी है। डॉल्फिन का एनकाउंटर रेट पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा यहीं पे है। एनकाउंटर रेट का मतलब 1 किलोमीटर में कितनी डॉल्फिन दिख रही है, तो डॉल्फिन का कितना प्रेजेंस है वो झारखंड के इस इलाके में बहुत ही अच्छा है। उसके लिए कॉन्जर्वेशन के लिए जितना एफर्ट झारखंड सरकार ले रही है, जितना एफर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले रही है, हम लोग रिसर्च के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि इन फ्यूचर यहाँ पे डॉल्फिन सेंटर या फिर डॉल्फिन रेस्क्यू सेंटर का कुछ प्लानिंग अगर हम कर पाए, उसके लिए डीएफओ साहब से और WII देहरादून कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है।
1: भारत सरकार के दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए खरीफ और रबी के समय में अलग अलग किस्मों के दलहन बीज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान कर रही है। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, चना के आधार बीज उत्पादन करने वाले किसानों को 1800 रुपए से लेकर 4500 रुपए प्रति क्विंटल तक अनुदान दिया जाएगा।
3: उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भरता इंफोसिस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत खरीफ सीजन में अरहर, उड़द और मूंग का जो बीज उत्पादन है उसका कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसी तरह से रबी सीजन में चना और मसूर का बीज का उत्पादन इस योजना के तहत प्रमाणित बीज का उत्पादन किया जाएगा और प्रमाणित बीज उत्पादन के बदले उन्हें प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। जैसे अरहर में उन्हें प्रोत्साहन राशि 4500 रुपये है, उसी प्रकार से उड़द, मूंग और मसूर में यह राशि 3000 रुपये प्रति क्विंटल है। यह कार्यक्रम इसलिए चलाया जा रहा है ताकि जो दलहन का खपत जो बड़े पैमाने पर हमारे देश में है उसमें हम लोग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके।
1: भारतीय किसानों को खेती कार्यों में सुगमता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के तहत आसान तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में खेत बचाओ अभियान के तहत साहिबगंज के अग्रणी बैंक प्रबंधक के द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में किसानों को भारत सरकार की कृषि का ऐप के माध्यम से खेती के लिए KCC इत्यादि के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साहिबगंज के अग्रणी बैंक प्रबंधक प्रदीप कुमार झा ने बताया,
4: अभी चल रहा है खेत बचाओ अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि खेत के मिट्टी की स्वास्थ्य कैसे अच्छी से अच्छी हो और हमारे किसान भाई कैसे सशक्त से सशक्त बने। क्योंकि आज के डिजिटल जो युग है उसमें यदि आप कृषि का ऐप के माध्यम से यदि किसान भाई हमारे लोन अप्लाई करते हैं तो वो उनमें भ्रम की स्थिति नहीं रहती है और उनमें एक स्पष्टता रहती है अपने ऋण के बारे में। साथ में खेती में यदि उर्वरक रासायनिक उर्वरक की उपयोग कम करते हैं तो खेती के स्वास्थ्य की जो है वो उसकी भी संभावना रहती है ज्यादा से ज्यादा अच्छी होने की।
1: हुल क्रांति के पुरोधा सिद्धू कान्हू मुर्मू की शहादत के उपलक्ष्य में साहिबगंज के पंचकठिया और शहीदों की जन्मस्थली भोगनाडीह में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होता रहा है। गत वर्ष भोगनाडीह में प्रशासन और जनता के बीच झड़प भी हुई थी। बहरहाल जिला प्रशासन हुल दिवस की तैयारियों में जुट गया है, जहां शहीद के परिजनों के बीच परिसंपत्ति का वितरण और विकास स्टॉल भी लगाया जाता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज।
0: अभी आप सुन रहे थे साहिबगंज जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

0: आदिवासी अखड़ा कार्य क्रम ते खड़िया लंगन और झाड़ी करते राय मल्लम डुंगडुंग रो
1: सरोज क्रिकेट आया
0: जोहार मुसाक को मांग तो हिगे है नहीं
1: हाँ
0: ला आए पे दुलार सोन की खड़िया लंगन खाया मंडोरे पे मनवा जाई ता विकास आथों शिक्षा मोइन महापुंजी है के एनएम शिक्षा लेबु या विकास कल्पना जो कराए ना उम पालते है नहीं
1: हाँ हाँ
0: शिक्षा का लेबु ते विकास अगो झुंगो योते तमा आनिया ऐसांग दियो दियो का उन्नति कराए थे उस शिक्षा करने का हुई थे है नहीं
1: हाँ दीदी
0: लेबु आ जिंदगी ते शिक्षा उम बोला ई जुम्बो लेबु तमा लेरांग रो ओडो ओडो ग्रह ते चलते मैं विज्ञान या चलते मुदा विज्ञान या विकास यह हुई की सब शिक्षा करने का हुई थे है नहीं
1: हाँ को
0: हाँ लेबु जिंदगी ते शिक्षा उम बोड़ी ला ई जुम्बोड़ी कुंडा मुगम सागरो
1: नियलोंग यो
0: सो तो गए
1: आप सिप ताएगा लेबु जैसन जैसन शिक्षा या मोरम ते फाहमो की कोंगो की रो विकास या विकास ते आप सिप हो की रो तमा विकास अगोजुंग ते तमा डिल्सी में
0: हाँ
1: मोइंग रो दियो उन्नति या गोजुंग ते डेल डामसी में मुदा तामजो ताए आनिंग एसांग मोजी ते हा दो लेबु शिक्षा तय डिसागा आई मै
0: सो तो गा
1: विकास तय डिसा आई मै आनिंग झाड़ी ते उकड़ा उदाहरण आपन खोड़ी पोदा ओ दूरा ते योनास सेगा पता चलेता उन बहुत है
0: सो तो गा
1: नो आनिंग मोजी ते शिक्षा रो विकास की ते हुई सी
0: हाँ दुलार सोन आयो आपा कुलम कुलम डाइकी आनिंग ते शिक्षा या मोरम ते को बुझी नागा है के है नहीं
1: हाँ।
0: आनिंग झाड़ी जे दिनु शिक्षा बारे बारू बो कोंगे नहीं हो दिनुगा अपन जिंदगी या मोरम ते बारू बो बुझी ना पाले नहीं हाँ ओटो विकास अगो उसुं ते बारू बो मुगाम आंजोर ना जो पाले नहीं सो तो एनम शिक्षा आनिंग अपन अधिकार ते कोना उनिंग पालते रो होडोम गुलामी खाटे तानी है नी होडोम लेबु की आनी कमजोरी या गलत फायदा बेवरुते की आनी शोषण कराए ते मैं लेबु गा लेबु आ उन्नति ते बाधक पोने ताकि
1: है नी सो तो कायम है
0: हाँ अपन स्वार्थ ते पूरा कराए ना थों लेबु गा लेबु ते शिक्षा रूपी पतार ते दिशा उन्ना लाम ते मैं है नी
1: हाँ दीदी मतलब आनी एक रकम अगामिनिंग ला आनी ईर्ष्या कराए ते नी हो ईर्ष्या ते आनी अच्छाई रूप बुं कराए नी हा अनंग हो जे आनी अथुंग फायदा हो किनो फलना हो घे कराए ते इलो इंजो उघे कराए ती लेकिन हो चीज उम हो लेबु ते आनी ओबुर ना या अथुंग कोर्निस कराए ते नी तम ग अनेडा ते सरकार अति ते रो ओडो ओडो स्वयं सेवी संस्था की अति ते शिक्षा रूपी तादी अपातर ते एसांग ते पापतर नया कोर्निस कराए डोम ते उम बहुत ते
0: तो हाँ
1: इनानो शिक्षा रूपी पतर एसांग ते फैले ना लागा विकास अगोजुं सिंघोरना शिक्षा लेबु आ पूंजी है के ओडो विकास आ कुंजी है के उन बहुत है
0: सो तो
1: लेबु उ पूंजी ते जहाँ खोतेगा खर्चा कराए कुन अपन उन्नति कराए कुन आवना पालते मुगम बढ़े ना पालते
0: हाँ हिना थों झाड़ी मानवा जाते शिक्षा रूपी पूंजी ते धो कौन जातन ना आई है नहीं
1: हाँ
0: ओडो सोबा मोजी ते
1: ताइना जो आई
0: शिक्षा जितना खर्चा कराए उतना गा होकर ते ओडो जुगे कोई ना
1: हाँ।
0: इना नो आता आते शिक्षा आई होते गा उन्नति जो आई
1: आई
0: लगा आए पे ओडो होटम काये मंडोरे पे इघे जिमी उकड़ा निमी बुंगा पता चले तानो धनुष बांधते कई ठो रंग आता है नी
1: हाँ।
0: वो योजना सिरे देश ते राज ते तामजो चले ते किसी में योजना की ते मेतिब कुन मोइन सोरी मुगाम डोटना मोइन मुद उद्देश्य है के राज ते मिशन इंदर धनुष कार्यक्रम ओडो मिजल सरूबेल अभियान या तीसरा चरण 10 सितंबर से 18 बोलता है आपसी डोमसी को
1: अच्छा
0: हाँ वो अभियान थों थोम दिनों बोते चले कि वो अभियान अभियान ते सफल बायना थो माइक्रो प्लान ओडो ड्यूलिस्ट बायडोम आई
1: अच्छा स्वास्थ्य विभाग
0: स्वास्थ्य विभाग सचिव तुनसी
1: कियर हाँ। राइज ते मिशन इंद्रधनुष दूसरा चरण ते कुड़ु किते गर्भवती कौन सेल रु किते टीकाकरण कराए डोमसी नमनते तमा मोइन सोरी 11 विभाग कामुते करेसी मैं ओ अभियान ते बारु बायना थोंग राइज भेरते 418 डॉक्टर की 92,000 तैजुग है मास्टर मिस्ट्रेस की 40,000 सहिया की ओडो 8,000 तैजुग है ए एनएम किते प्रशिक्षित कराए डोमसी नो होता है 11 विभाग असोरी मिले कौन उकामुते कराए ते मैं ला एक हिसाब से गावेनिंगनो सरकार ऊ चीज ते ऊ योजना ते इकुड़ जुग है महिला की अथों
0: ध्यान देर थी हाँ खसरा रो रुबेला या टीका इना तेर डोमता है 9 महीना से 15 साल कुंडो किते को मिजल्स ओडो रुबेला या टीका इकुड़ जरूरी आई खसरा मोइन जानलेवा कोसु है के उकड़ा संक्रमण रुंग कुंडो किते निमोनिया डायरिया किया समस्या हो न पालते उघाएगा गर्भावस्था या समय ते अगर माए ते रुबेला या संक्रमण हो न से कुंडो जन्म देगा बेमराहा हो न पालते अभियान किते 9 महीना से 15 साल या कुंडो किते टीका लगाए डोमते उकड़ कुंडो किते मिजल्स रो रुबेल या संक्रमण बुं बचाए हाँ मिजल्स रुबेल या टीका सब स्कूल ओडो स्वास्थ्य केंद्र किते फ्री बुंगते डोमते हाँ ओडो उकड़ पूर्ण रूप से सुरक्षित जो आई
1: अच्छा
0: टीकाकरण या ठाड़ो तारीख कोंगना थों अपन हेपड या स्वास्थ्य केंद्र एनएम चाहे को अपन पाटा या आशा दीदी की तीजो जुंकुन पता लगे ना
1: पाल पाल डोमता
0: हाँ अगर नीरी ते आवा कौन सेल दू चाहे उबर में मन ते काम उमेर कुंडो किया जहाँ मोधे या टीका अगर छुपटे गो सिला हो की ते टीकाकरण केंद्र चोल कौन टीका उपतरना पालते की है
1: अच्छा। मतलब इतना सुविधा आई हाँ, सरकार अतीते
0: हाँ सब मध्य वैक्सीन सरकारी स्वास्थ्य संस्था किते फोक मुफत बुंग तेर डोमते
1: हाँ टीकाकरण आधा घंटा लोडो हाँ, योना चाहे कोसु कुलडा चाहे होडोम लक्षण होइना पालते मुदा घबरेना उंबोड़ी आनिंगते
0: हाँ,
1: आधो आयो की कुड़ो किया जहाँ लक्षण योता घबराई गोड़ता की
0: हाँ,
1: ए एन एम चाहे टीकाकरण केंद्र ते आवा जानकार लेबु की बुंग संपर्क कराए न आई
0: हाँ,
1: अपन हालत या बारे हो की ते उतु न आई
0: हाँ,
1: नो ई होई ते इंजे नो होनते
0: हाँ,
1: आनिंग उकड़ा बारे कोंगेनिंग बुझी नानिंग लागा भयंकर बीमारी बुंग अपन कुड़ु हाकुन की ते बांचे ना पालेनिंग रो एक स्वस्थ उन्ना पालेनिंग एक समाज देश आतो हो करते बारू नागरिक बायना पालेनिंग
0: बायना पालतेनिंग हाँ ला कायम को उम्बंगना है नी
1: हाँ
0: ला आम पे ते आम पा पोसिंद आलोंग ओंडोर ना जो आई ला आए पे आपन पोसिंद आलोंग ओंडोर पे उ आलोंग ते आलोंग की बहर के आलोंग सी में देखे से बताए
1: उ आलोंग ते आलोंग सी किया निकोलस डुंगडुंग रो सांगोडोम की
0: हाँ।
1: पसंद करे सी मैं रांची रमजान कॉलोनी ते सम्मी कीड़ो समा कीड़ो रेजा कीड़ो बीरेंद्र कुल्लू एली कुल्लू रसो कीड़ो परिवार की
0: अच्छा।

0: आलों को इकुट बारू लाकी
1: हाँ दीदी आलों को इकुट बारू लाकी
0: सो तो गा लाए पे उन तुते ओटो मन अपन पोसिंद आलों गंडोरे पे उ आलों ते आलों सीमे अब्राहम कुल्लूरो सांगो डोम की बेहद की पसंद करे
1: पसंद करे सी मैं गिरजा टोली ते सुजीत समीरा अनिल अमित प्रफुल रोसोप सांगोडोम की

0: The dignity of the human spirit, the works of Rabindranath Tagore will continue to speak to us. Thank you.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashvani. Phir aaya entertainment ka revolution, jab kone kone pahuncha Doordarshan. Kahani nahi badli, style gaya hai badal. जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: आप सुन रहे थे अंग्रेजी वार्ता कार्यक्रम विषय था रविंद्रनाथ टैगोर एंड हिज लिटरेरी वर्क्स वार्ताकार थे डॉक्टर अनन्या बोस आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है रात्रि के 8 बज चुके हैं और ये वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का

यह है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म सड़क, आवाजें कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की। समीर के शब्दों को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म लालच का ये युगल गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। बोल लिखे हैं अनजान ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

ये फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से रजनीगंधा कार्यक्रम के अंतर्गत। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म हत्या का ये गीत, मोहम्मद अजीज, सपना मुखर्जी और साथियों के स्वर में। इंदिवर के शब्द को धुनों में पिरोया है बप्पी लहरी ने।

और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं फिल्म त्रिदेव का ये गीत, अलका याग्निक, साधना सरगम और सपना मुखर्जी के स्वरों में। शब्द हैं आनंद बख्शी के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

फिल्म त्रिदेव के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए पद्म पुरस्कार 2026 पर विशेष रिपोर्ट।
3: कार्यक्रम सुर्खियों में के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पाठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समारोह में कुल 65 पद्म अलंकरण दिए गए। इनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस वर्ष सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार सम्मिलित हैं। इस वर्ष का पहला नागरिक अलंकरण समारोह 25 मई को आयोजित किया गया। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सम्मान सम्मिलित थे। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ पुरस्कार प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए जा रहे हैं। आइए अब पद्म पुरस्कारों की शुरुआत और उनके सफर पर एक नजर डालते हैं।
4: भारत सरकार ने 1954 में भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की थी। तब से ये पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं। हालांकि वर्ष 1978, 1979 और 1993 से 1997 के दौरान इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। समय के साथ इन पुरस्कारों का स्वरूप विकसित हुआ और आज पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वहीं पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में पद्म पुरस्कारों की एक विशेष पहचान बनी है। अब इन पुरस्कारों को केवल बड़े शहरों या चर्चित नामों तक ही सीमित नहीं रखा जाता। देश के दूरदराज क्षेत्रों में काम करने वाले अनेक ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है, जिन्हें अक्सर अनसंग हीरोज कहा जाता है। पद्म पुरस्कारों की एक और विशेषता ये है कि इनके लिए नामांकन प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए खुली है। कोई भी व्यक्ति किसी योग्य नागरिक का नाम प्रस्तावित कर सकता है। स्वयं नामांकन की भी व्यवस्था है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों से प्रतिभाशाली और समर्पित लोगों की पहचान हो सके। प्राप्त नामांकनों पर विचार करने के लिए हर वर्ष एक पद्म पुरस्कार समिति गठित की जाती है। इस समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं। समिति में गृह सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय के प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अंतिम सूची जारी की जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर युक्त प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान किया जाता है। उन्हें पदक की एक छोटी प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे वे औपचारिक अवसरों पर धारण कर सकते हैं। आमतौर पर एक वर्ष में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से अधिक नहीं होती। हालांकि मरणोपरांत दिए जाने वाले पुरस्कारों और विदेशी नागरिकों या प्रवासी भारतीयों को दिए गए पुरस्कारों को इस संख्या में शामिल नहीं किया जाता। ये सम्मान कला, समाज सेवा, सार्वजनिक जीवन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल तथा लोक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के संरक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा और वन्यजीव संरक्षण जैसे क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को भी इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है।
3: इस वर्ष 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनमें अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को लोक मामलों में, प्रसिद्ध वायलिन वादक एन राजम को कला के क्षेत्र में, वरिष्ठ पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत लोक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। इस वर्ष 13 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनमें प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक, अभिनेता ममूटी, उद्योगपति उदय कोटक और पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृत राज जैसे जाने माने नाम सम्मिलित हैं। इसके अलावा चिकित्सा, समाज सेवा, कला और लोक मामलों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कई अन्य हस्तियों को भी ये सम्मान दिया गया। इनमें डॉक्टर नूरी दत्तात्रेयडू, भगत सिंह कोश्यारी, के आर पलानी स्वामी, एस के एम मैलानंदन, शतावधिनी आर गणेश और वेलापल्ली नटेशन शामिल हैं। वहीं पीयूष पांडे, शिबु सोरेन और वीके मल्होत्रा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस वर्ष 113 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी, लेखक शिव संकरी, संगीत साधक तारुण भट्टाचार्य और तृप्ति मुखर्जी को सम्मानित किया गया। वहीं विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अनेक व्यक्तित्वों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर की समाज सेवी डॉक्टर बुधरी ताती को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पिछले 40 वर्षों से वे आदिवासी महिलाओं और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सैकड़ों गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासी महिलाओं को सिलाई जैसे कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आकाशवाणी समाचार ने उनसे विशेष बातचीत की, आइए सुनते हैं उसके कुछ अंश।
5: बुधरी ताती जी, आपका बचपन कैसा था और समाज सेवा की भावना आप में कब जागी, इसके बारे में हमें बताएं।
6: गांव उरानार में ही मेरा जन्म है, यहां से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है। और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे, हम किसान के परिवार के हूँ और गरीब घर के हूँ। तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे, तब से माँ बाप के साथ में माँ के साथ काम करते थे। पूरा 8-9 साल के और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घुमर गुंडा, वहाँ पर पैदल पैदल जाते थे, वहाँ काम करते थे सेवा भाव पे। और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है।
5: आपने बस्तर संभाग के 500 से अधिक गांवों में पैदल यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक बनाया, अपनी इस यात्रा के अनुभव के बारे में हमें बताएं।
6: इसमें तो उनको जागरूकता लाना है तो हमने पैदल इसलिए घूमे हैं कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं, जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, हमको समझ में नहीं आता है, हम उनके पास जाना है। उनके साथ घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है, तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज हो सकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है।
3: पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रविलाल टुडू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के नुवारा गांव में जन्मे रविलाल टुडू संथाली भाषा और साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षरों में से एक थे। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से संथाली भाषा, संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान दिलाने का काम किया। वे नाटक, कहानी और रेडियो लेखन के क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय रहे और उनकी रचनाएं आम लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय रहीं। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और वर्ष 2022 में बंग भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। जून 2026 में उनके निधन के बाद ये सम्मान उनके लंबे साहित्यिक और सांस्कृतिक योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में भी देखा जा रहा है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी से उनकी बातचीत के कुछ अंश।
7: आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इस रचना के बारे में हमें बताएं।
8: किताब एक ड्रामा का है, परसी खतीर। परसी खतीर के लिए ही सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो अठवा तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, ये भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है।
7: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
8: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है पब्लिक अवेयरनेस के लिए।
7: आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
8: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है। दूसरा भाषा लेके आप एडुकेशन कितना टूट जाएंगे, ये तो संभव नहीं है। इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए। यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था।

0: और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रही हूँ, वहाँ आपने क्या देखा?
1: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे उसमें ये सब बातें रहते। अभी बहुत सारा है क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद बहुत कुछ माहौल बदला है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार आया है।
2: अशोक कुमार सिंह को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के पूर्व निदेशक रहे हैं। डॉक्टर सिंह को बासमती और पूसा धान सहित धान की कई उन्नत प्रजातियों के विकास के लिए जाना जाता है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी समाचार से उनकी विशेष बातचीत के कुछ अंश।
3: इस बार आपको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके किस योगदान को लेकर इस सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है?
4: मुझे जो पुरस्कार दिया गया है इस बार, वह विशेष रूप से बासमती चावल के उन्नत प्रजातियों के विकास के ऊपर दिया गया है। बासमती हमारे देश की एक महत्वपूर्ण धरोहर है, इसकी खेती सदियों से हमारे देश में होती आ रही है।
3: इसमें बार बार सुधार की जरूरत क्यों पड़ी?
4: जो हमारी परंपरागत किस्में थी अधिक ऊंचाई होने के कारण गिर जाती थी और उनकी पैदावार बहुत कम होती थी, तो इसको पैदावार में वृद्धि करना, ऐसी प्रजातियों का विकास करना जो अधिक उपज देने वाली हो, एक तो मुख्य लक्ष्य ये था। दूसरा, तमाम तरह की बीमारियां और कीड़े चावल में लगते हैं, तो किस प्रकार से हम रोग रोधी और कीट रोधी किस्मों का विकास करें, एक मुख्य लक्ष्य शोध का था।
3: हमारे पर्यावरण के अनुकूल जो पैदावार है उसको बढ़ाने में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं?
4: क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज, ये एक विशेष शोध परियोजना है जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में और कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य किया जा रहा है।
2: आज का समारोह भारतीय खेल प्रेमियों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। रोहित शर्मा ने अपने खेल प्रदर्शन, नेतृत्व और उपलब्धियों से भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने 2 ICC खिताब जीते। उनकी उपलब्धियां केवल रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया है। इसी तरह भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी खिलाड़ी सविता पूनिया को भी पद्मश्री प्रदान किया गया। भारतीय महिला हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पद्म पुरस्कार केवल सम्मान नहीं है, बल्कि वे राष्ट्र की ओर से उन व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कार्यों से समाज और देश के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है, चाहे वह कला का क्षेत्र हो, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, खेल, समाज सेवा या उद्योग जगत। पद्म पुरस्कार देश के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पहचान देते हैं। पद्म पुरस्कारों के माध्यम से राष्ट्र ऐसे ही व्यक्तित्वों को नमन करता है और उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। आज के कार्यक्रम सुर्खियों में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने।
5: अभी आप सुन रहे थे पद्म पुरस्कार 2026 पर विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
6: सुर्खियों में
7: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर बाद हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से

0: निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अलिनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
4: रास लफान परियोजना में जब वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
4: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
4: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक

0: सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino.

0: Mantan.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
2: मोदी सरकार की 12 वर्ष की यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज हैं। ऐसी ही एक है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल सुशासन की एक मिसाल है गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जैम पोर्टल। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। जैम की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार जी। नमस्कार मेहर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: मेहर जी, शुरुआत की जाए जैम की भूमिका के बारे में। 2016 में इसकी शुरुआत हुई, तो आज भारत की जब डिजिटल सुशासन की यात्रा की हम बात करते हैं तो जैम को आप किस प्रकार देखते हैं, कहाँ ये खड़ा है?
3: प्रियंका जी, 2016 के पहले की अगर हम बात करें कि किस तरह से सरकारी खरीदारी की प्रणाली थी, तो जो मैनुअल सिस्टम होता था, टेंडर्स होते थे,

0: होता था कि कहाँ पे खरीदारी हो रही है, सूचना का अभाव होता था, फ्रैगमेंटेड सिस्टम था, कुछ लोगों को पता लगा, कुछ लोगों को नहीं पता लगा। जब इसको सुधार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना की कि इसको कम्प्लीटली एक डिजिटल मार्केट प्लेस बने, जिसमें कि हर किसी को पता लगे कि क्या खरीदारी सरकार करना चाहती है और हर एक छोटे से सूक्ष्म व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर किसी को एक मौका मिले जानने का पहले, तो इस दिशा में बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव में। उसमें एक बड़ा कदम जो है गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस रहा। DGSND एक संस्था होती थी सरकारी खरीद के लिए, उसको बंद करके और गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस की शुरुआत जो है 9 अगस्त 2016 को हुई, और ये अपने तरह का विश्व स्तरीय डिजिटल इनिशिएटिव है।
1: तो ये जो पारंपरिक खरीद प्रणाली थी उससे काफी अलग है, और एक पारदर्शिता, जो सबसे बड़ी एक लोगों में संदेह रहता था पारदर्शिता का, वो लेकर आया है।
0: पारदर्शिता लेकर आया है और कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटाइजेशन है, तो किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक छोटे व्यापारी हैं तो आप पोर्टल पे जाइए, देखिए, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम आपके लिए, पूरी पंजीकरण जो है वो पोर्टल के माध्यम से कम्प्लीटली हो जाती है, किसी से बातचीत नहीं करने की आवश्यकता है। उसी तरह से खरीदारी के लिए भी आप पोर्टल पे जाइए, आपको जो सामान दिखता है आप वो ले लें। कहते हैं कि अपने में कम्प्लीट सॉल्यूशन देना और ह्यूमन इंटरफेस को हटा देना, जिससे कि शिकायतें आती हैं
1: जी,
0: तो उन शिकायतों को बिल्कुल खत्म कर दिया है।
1: पंजीकरण की बात हुई, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण कराना चाहता है जेम पोर्टल पर, तो क्या व्यवस्था है और इसके अलावा क्या क्या चीजें चाहिए और क्या सेवाएं उपलब्ध कराता है जेम पोर्टल, और नई क्या सेवाएं शुरुआत करने की योजनाएं हैं?
0: पहले मैं बताऊं कि जो कोई भी जो सेलर है, व्यापारी है, वो रजिस्टर करने के लिए जेम पोर्टल पे जाएगा तो उसको वहां पे बहुत सारी लर्निंग वीडियोस भी है जो ये बताएगी कि भाई अगर आप एक विक्रेता हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप रजिस्टर करेंगे, उसकी सारी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जो है वहां पे बताई गई है, जिससे कि आप उस पे जुड़े। इसमें ये भी है कि हमारी काफी इंटीग्रेशन है बहुत सारे सरकारी की डाटाबेसेस से, जैसे आपका आधार है, अब आपके आधार की इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं, आपने व्यापारी ने बताया, हम उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर आपका पैन नंबर है, अगर आप आईटी रिटर्न भरते हैं, वो भी ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं। आपका GSTN है, उसको ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं। मतलब आपको जितना सरलीकरण तरीके से किसी को ऑनबोर्ड किया जा सकता है वो हम करते हैं। और जहां तक किस तरह के अपॉर्चुनिटी हैं, तो करीब 10,000 से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ, और 350 करीब सर्विसेज की कैटेगरीज हैं। तो एक बहुत ही बड़ा बुके ऑफ ऑफरिंग है सरकार की तरफ से, जिससे कि व्यापारी उद्यमी जुड़ सकते हैं।
1: जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी सर्विसेज हैं, तो उसको बढ़ावा देने में जेम की क्या भूमिका है, और छोटे व्यवसाय, हम MSME की बात करते हैं, तो उनको किस तरह से लाभ हुआ है?
0: देखिए, पहले तो एक जगह पे आपको पता लग रहा है कि क्या क्या सरकार खरीदारी करती है, तो एक तो अवसर आपको मिला जानने का कि भाई क्या क्या मौके हैं। दूसरी ये भी है कि उसके साथ आपको ये हम बताते हैं कि सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है वो क्या है, तो वो भी आप वहीं पे देख ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप जुड़ सकते हैं। और ये कम्प्लीटली हर एक स्टेप पे सारी की सारी जानकारी आपको जो है पोर्टल पे मुहैया होती है। मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना है, मैं एक सरकारी संस्था हूँ, तो मेरी टेंडर लगी तो टेंडर की इन्फॉर्मेशन है, वो सभी लोगों को दिखता है, प्लस नोटिफिकेशन जाता है लोगों को कि भाई ये सरकार का टेंडर आया है। तो पहले जो होता था कि भाई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, जिसको इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई कुछ लोगों को पता कुछ लोगों को नहीं, वो कम्प्लीटली खत्म कर दिया, पारदर्शिता कम्प्लीटली आ गई है। तो इससे हुआ क्या है कि धीरे धीरे जो व्यापारी छोटे हैं उन लोगों को पता लगने लगा, वो जुड़ने लगे, और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 24 लाख सेलर्स हैं जिन्होंने हमसे जुड़ने की अपनी प्रक्रिया पूरी करी है, और उसमें से करीब 4 लाख व्यापारी जो है एक्टिव है
1: जी। तो जो जेम है, MSME के बारे में आपने बताया, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, SC ST उद्यमियों को भी किस प्रकार से सहायता दे रहा है?
0: एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी नीति ये है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज है, जो लघु और सूक्ष्म व्यापारी हैं, उनको करीब सरकारी खरीद में 25% का मिलना चाहिए। हमारे पोर्टल पे वो 45% से ऊपर है, तो हमारे पोर्टल पे सूक्ष्म और लघु व्यापारी जो है बहुत एक्टिव है
1: जी।
0: एक तो वो बहुत बड़ा सशक्तिकरण। उसके अलावा अगर हम महिला उद्यमियों को देखें, तो महिला उद्यमियों ने जब हमारे साथ जुड़ी तो करीब 8 करोड़ का बिजनेस किया, आज 80,000 करोड़ से ऊपर का व्यापार कर रही हैं। जो स्टार्टअप हैं, जब वो जुड़े तो 2 करोड़ का उनका व्यापार हमारे साथ शुरू हुआ।

0: हुआ 2016 में, आज की तारीख में 50,000 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का व्यापार वो कर चुके हैं। तो ये जो अवसर मिला है और इस अवसर को लोगों ने लिया है हाथों हाथ, तो ये अपने में दर्शाता है कि व्यापार करना सरकार के साथ जो है बहुत सरल हुआ है।
1: अगर आपको कोई याद हो ऐसा उदाहरण जो आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहें, ऐसी किसी सेलर का या बायर का जो बहुत ही अच्छा हो और रचनात्मक और जो बाकी सभी प्रेरित हो, तो आप प्लीज हमारे साथ इसको बांटिए।
0: जैसे कि एक झारखंड की महिलाओं ने एक बार बिड किया दिल्ली MCD के किसी बिड के लिए सर्विसेज देने के लिए, तो झारखंड के रांची के आसपास की एक महिला उद्यमी, उनको दिल्ली का एक ऑर्डर मिला। तो ये दर्शाता है कि कहाँ तक जो है अवसर मिल सकता है और कहाँ आदमी पहुंच सकता है। उसी तरह से आज जो है ऐसे कई उदाहरण हैं। स्टार्टअप में महिला बैंगलोर की, उन्होंने जो है डिफेंस में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी और महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं।
1: प्रधानमंत्री ने अगर बात करें तो लगातार स्थानीय उत्पादों और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बात कही है, तो उसमें जेम किस तरह से सहयोग कर रहा है?
0: हमारे पोर्टल पे हमने कुछ डेडिकेटेड स्टोर्स बनाए हैं वोकल फॉर लोकल को दिखाने के लिए, महिला उद्यमों को जो वो कर रही हैं, जो वो करना चाहती हैं, वो शोकेस करने के लिए। तो वो उन स्टोर्स के थ्रू जो पोर्टल से जो भी जुड़ता होगा उसे एक तो वो नजर आता है, दूसरा इसके अलावा हमारी कई संस्थाओं के साथ हमारा चलता रहता है कार्यक्रम, जिससे कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको बताते हैं कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास अवसर हैं, और भारत सरकार की जो नीति है जैसे ODOP प्रोडक्ट्स हो उसको शोकेस करने का, टेक्सटाइल की कुछ हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं, इम्पोरियम के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारा जो है हम अपने यहाँ शोकेस करते हैं और उनके साथ फिर उनको बताते हैं अवसरों के बारे में जो हमारे पोर्टल के थ्रू हो सकता है।
1: जी, जैसे आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो जो जेम का प्रभाव है केवल खरीद तक सीमित नहीं है, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, जनसेवा जैसे क्षेत्रों में जेम का जो योगदान है वो किस प्रकार है?
0: सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है उसमें बहुत अहम बात होती है कि जो सामान आ रहा है वो समय से आए और वो जिस पर्पस के लिए आ रहा है वो पर्पस को फुलफिल कर दे। तो हम लोगों ने बातचीत करके दवाइयों की खरीद, वैक्सीन की खरीद, स्कूल के सामान की किट की खरीद, पोषण अभियान में ट्रैकर के सामान की खरीद, तो तमाम जितनी वेलफेयर इनिशिएटिव्स है सरकार की, जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं जिसके लिए खरीदारी की जाती है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने यहाँ बनाया और उनको हमारी जो कि पारदर्शी प्रक्रिया है उसमें हम लोगों ने इनको काफी एफिशिएंटली इनको करने का भी मौका दिया। जो चीज करीब खरीदारी में मान लीजिए कि पहले 5 से 6 महीने लग जाते थे, अब हम लोगों ने उसको जो है घटा के करीब 2 महीने में कर डाला है। तो सामान सही समय पे आना और लोगों को मुहैया करा देना, ये हमारा जो है उद्देश्य रहा है।
1: अगर प्रौद्योगिकी की बात करें मिहिर जी, तो जेम के विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब एक नया प्रचलन में आ रहा है और डेटा आधारित नवाचारों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी?
0: इसमें मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि ये डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम है तो इसके पास शुरू से ही ये कैपेबिलिटी भी रही कि यहाँ पे आप एनालिटिक्स जो कहते हैं कि जिस चीज को आप मीमांसा कर सकते हैं, उस मीमांसा की ताकत इसमें शुरू से ही रही, ये इस तरह से बना ही, इसकी कल्पना ही इस तरह से की गई। तो हम लोगों ने क्या किया है कि AI ML की यूज केसेस जो पार्लेंस होती है, जो भाषा होती है AI प्रौद्योगिकी की, उसके हिसाब से हम लोगों ने यूज केसेस डिप्लॉय करी हैं अपने पोर्टल पे, जिससे हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, हमारे यहाँ एक टूल है प्राइस गैप एनालिसिस टूल, PGA टूल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई व्यापारी अगर हमारे यहाँ ऐसा प्रोडक्ट डालना चाह रहा है जिसका कि सामान का जो कीमत है वो हमारे हिसाब से उचित नहीं है, तो हम उनको आने नहीं देते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है वो ये है कि आप एक विश्वास के साथ चलेंगे, ट्रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म, तो मैं दोनों के साथ विश्वास रखता हूँ, हमारे जितने व्यापारी हमारे साथ जुड़ते हैं और जो हमारे खरीदार करने वाले जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, तो दोनों को विश्वास। तो इस विश्वास को बनाए रखने में कई बार इस लक्ष्मण रेखा को लोग न क्रॉस कर लें, उसके लिए हम लोगों ने AI ML से ये कोशिश करी है कि हम आपको बताएं कि क्या आप कर सकते हैं और कहां ये लक्ष्मण रेखा अगर आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जन कल्याण के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हर विभाग आगे ऐसे ही बढ़ रहा है। कई लोग ये सोचते हैं जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं कि जो जेम है वो केवल बड़े व्यवसायों के लिए है, तो जो छोटे उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप्स हैं और या पहली बार भाग लेने वाले विक्रेता हैं, उनके लिए जेम क्या अवसर देता है?

0: देखिए, जो सरकारी खरीद की जो मूलभूत नीति होती है उसमें हमें ये कहा जाता है और हम उसको अपने यहाँ ढाल के रखे हैं कि भाई सभी को हमें बराबरी का हक देना है। तो कोई छोटा व्यापारी ये ना समझे कि मैं छोटा हूँ तो मुझे ये अवसर कम मिलेगा। तो पहले तो है इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर, जो कहते हैं बिल्कुल मूलभूत नीति होती है, वो हमारे यहाँ रूल इंजन में ही डाला हुआ है। तो उससे ये नहीं हो सकता कि कहीं कोई भी उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो हमारा लगातार रहा, हमारे यहाँ स्टार्टअप के लिए एक स्टार्टअप रनवे, एक शोकेस भी है, प्लस स्टार्टअप के साथ बहुत सारी संस्थाओं के साथ हमारी बातचीत होती रहती है। तो नए जो उनके प्रयास हैं उनके बारे में लोगों को बताना, उनको हमारे पोर्टल पे अवसर देना आने के लिए, इस तरह से हम उनको जोड़ना चाहते हैं। बड़े व्यापारियों के बराबर ही हम हक देते हैं।
1: विकसित भारत के लक्ष्य की बात करें, जो 2047 तक लक्ष्य रखा गया है, उसकी दिशा में आगे बढ़ते हुए आप सुशासन, आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में जो जेम की भूमिका है उसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: राष्ट्र निर्माण की जो अभी हमारे विकसित भारत की 2047 की जो पहल है, उसमें बहुत आवश्यक है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जिसमें मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ी नीति है, दूसरी नीति ये है कि आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बराबर का हक देंगे, उसको हम लोग हमेशा लेके चल रहे हैं। और हमने ये भी सोचा हुआ है कि धीरे धीरे हमारी पहल ये है कि हम राज्यों तक भी पहुंच रहे हैं, केवल केंद्र के बायर ही नहीं, राज्य के बायर, राज्य के भी जो खरीदार हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। जिससे क्या हो कि ये जो नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, ये तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदारी हो रही है उसको सरकार को उसमें सेविंग्स दिलाए, उसमें करप्शन फ्री रखे और उसको सभी लोगों को, जिसको हम कहते हैं ना कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट, उसकी तरफ लेके जाए। तो ये हमारी प्रयास रहेगा और बहुत बड़ा जो इसमें रोल है वो गवर्नमेंट मार्केटप्लेस इसको बढ़ाने में रहेगा।
1: बिल्कुल। और अंत में यही जानना चाहूंगी कि आप उन उद्यमियों, स्टार्टअप्स और जो महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को और जो युवा जो भाग लेना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जेम पोर्टल एक बहुत ही बड़ी पहल है सरकार की, अवसरों का द्वार है। और मेरी यही गुजारिश है सभी लोगों से, यही विनती है, यही संदेश है हमारी तरफ से कि आप ये न सोचें कि सरकार के साथ काम करना कठिन है, सरकार के साथ काम करना बहुत आसान है। मेरी यही गुजारिश होगी लोगों से, पहल करें, आए और जेम के साथ जुड़ें और अपना व्यापार बढ़ाएं।
1: जी हाँ, निसंदेह श्रोताओं, डिजिटल क्रांति के इस दौर में सरकारी खरीद व्यवस्था को पारदर्शी, तेज और सुगम बनाने में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ऐसे ही ये और भी नई सेवाएं और सहूलियत उपलब्ध कराता रहेगा। मिहिर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे ढेर सारी चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: अभी आप सुन रहे थे पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
3: मंथन।
4: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, रात्रि के 10 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं गूंजे झारखंड। आज का ये कार्यक्रम स्वच्छता पर आधारित है, प्रस्तुति है प्रदीप कुमार की।

स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई, पवित्रता और शुद्धता। यह न केवल हमारे शरीर और घर तक सीमित है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण, समाज और पूरे देश से भी जुड़ी हुई है। स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह हमें स्वस्थ और सुखी रहने में सहायता करती है। कहा जाता है कि स्वच्छता ही आधा स्वास्थ्य है, अर्थात यदि हम साफ सफाई का ध्यान रखें तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। श्रोताओं, गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आज सुनिए स्वच्छता से संबंधित कुछ लोकगीत। सबसे पहले हमें व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। रोज स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, दांत साफ करना और हाथ धोना।

बहुत ही आवश्यक है। इससे हम कीटाणुओं से बच सकते हैं और बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। विशेष रूप से खाना खाने से पहले और शौच के बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है।

यदि हम अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते तो हम स्वयं भी बीमार पड़ सकते हैं और दूसरों को भी बीमार कर सकते हैं। इसके अलावा घर की स्वच्छता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और उसे सही जगह पर डालना चाहिए। रसोई घर को साफ रखना बहुत जरूरी है क्योंकि गंदगी से खाने में कीटाणु फैल सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। घर के आसपास गंदगी होने से मच्छर और मक्खियाँ पनपती हैं जो कई खतरनाक बीमारियां फैलाती हैं, जैसे डेंगू मलेरिया आदि।

सामाजिक स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना चाहिए। सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सार्वजनिक स्थान भी हमारे ही हैं, इसलिए उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। यदि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और साफ सफाई का ध्यान रखे तो हमारा समाज और देश स्वच्छ और सुंदर बन सकता है। स्वच्छता का महत्व केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व और संस्कृति को भी दर्शाता है। एक स्वच्छ वातावरण में रहने से मन प्रसन्न रहता है और काम करने की ऊर्जा बढ़ती है।

स्वच्छता से हमारे देश की छवि भी बेहतर होती है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। इसलिए स्वच्छता को अपनाना हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। यह अभियान तभी सफल हो सकता है जब हर नागरिक इसमें अपना योगदान दे। ये कहा जा सकता है कि स्वच्छता हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। हमें इसे केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी के रूप में अपनाना चाहिए। यदि हम सभी मिलकर स्वच्छता का पालन करें तो हम एक स्वस्थ, सुंदर और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम स्वयं भी स्वच्छ रहेंगे और अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे।

पेड़ पौधे और जंगल प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं और वन्य जीवों को आश्रय देते हैं। ये हमें खुशियाँ देते हैं। प्रदूषण, वनों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने, पानी बचाने और प्लास्टिक का उपयोग कम करके प्रकृति की रक्षा में अपना सहयोग देना चाहिए।

श्रोताओं, गूंजे झारखंड कार्यक्रम में आज आपने सुना स्वच्छता संबंधी कुछ लोकगीत। कलाकार थे उराव में रायसन उराव और साथी, मुंडारी में छोटराय मुंडा और साथी, सोमरा लोहरा और साथी, खोरठा में करुणा देवी और साथी, नागपुरी में रूना देवी और साथी। वाचन स्वर था संध्या नीलिमा तोपनो का और प्रस्तुति थी प्रदीप कुमार की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गूंजे झारखंड। आज का ये कार्यक्रम स्वच्छता पर आधारित था। प्रस्तुति थी प्रदीप कुमार की। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। शास्त्रीय संगीत के आयोजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिराम पाठक से राग बहार में आलाप और धमार गायन। तबले पर संगत कर रहे हैं संदीप चटर्जी। हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती।

शास्त्रीय संगीत के आयोजन में अभी आप सुन रहे थे अविराम पाठक से राग बहार में आलाप और धमार गायन। तबले पर संगत कर रहे थे संदीप चटर्जी, हारमोनियम पर गायत्री चक्रवर्ती। इसी के साथ आज का हमारा शास्त्रीय संगीत का ये आयोजन यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।